0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या धर्मकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्या त्वाम स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तं दर्प्रतसेवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कांतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ का महत्व मैं आज आपको प्रस्तुत करूँगा। यहाँ पर श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ का महत्व, श्रावण मास भगवान शिव की उपासना के लिए आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में माना जाता है। इस माह में रुद्र महायज्ञ करने या उसमें भाग लेने का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। मुख्यत्व भगवान शिव की विशेष कृपा, मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रुद्र महायज्ञ से उनकी कृपा प्राप्त होती है, पापों का क्षय, वेदों और शिव पुराण की परंपरा के अनुसार रुद्र सूक्त के मंत्रों के से किया गया यज्ञ पापों का नाश करने और मन को शुद्ध करने वाला माना जाता है। स्वास्थ्य और सुख समृद्धि रुद्र नारायण महायज्ञ परिवार के स्वास्थ्य, दीर्घायु, धन धान्य और सुख शांति की कामना से किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का निवारण धार्मिक मान्यता के अनुसार रुद्र हवन और मंत्र उच्चार से वातावरण पवित्र होता है तथा नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति ओम नमः शिवाय और श्री महारुद्राय नमः के मंत्रों का जप मन को एकाग्र करता है और शिव भक्ति को दृढ़ बनाता है। विशेषतः रुद्र यज्ञ का महत्व है कि विश्व कल्याण की भावना रुद्र महायज्ञ के केवल व्यक्तिगत के लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए है, विश्व के लाभ के लिए है, नहीं बल्कि समाज प्रवृत्ति और समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से ये रुद्र महायज्ञ किया जाता है। श्रावण मास में रुद्र महायज्ञ के साथ किए जाने वाले प्रमुख कार्य शिवलिंग का रुद्राभिषेक,

0: बिल्व पत्र धतुरा आदि अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र जप करना, श्री रुद्राय नमः या तो रुद्राष्टकम का पाठ करना, हवन दान और ब्राह्मणों को भोजन, व्रत एवं शिव नाम का जप ये महारुद्र यज्ञ का एक प्रयोग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और विधि विधान से श्रावण मास में किया गया रुद्र महायज्ञ भगवान शिव की कृपा अनुकंपा होती है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। सुख दुखंदो न बाध्यस्मिन् यत स्वकृतं भूकं पुमान। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, पुरुष एवं अपने किए हुए कर्म का फल भुगता है। मितम ददाते जनको मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य महिम ददातरम भ्राता पूजात्मना। माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरित हितम सुखम देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति को सदैव सेवा पूजा करें। साधन्याम जननी लोके साधन्यो जनक पिता धन्य सह चह पतिचर्यते गृहे देवी पतिव्रता। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके धर्म में देवी रूपा पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। न गंगायाम तथा वेदोयाम नारी पति देवता उमा शिवा सोम्यम साक्षात तस्मातम पूज्यते बुध। गंगा तथा पतिव्रत स्त्री में कोई भेद नहीं है, वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य है, अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति या तस्य वै पृथ्वी जियते हे फलम भवते निश्चित। माता पिता का पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए

0: सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलिभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 7 अगस्त के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, कल हम लोगों ने विराम दिया और पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिव ने बहुत समझाया फिर भी सती जी के मन में उनके बात नहीं बैठा। मुस्कुरा करके भगवान शंकर मायापति विष्णु जी को स्मरण करते हुए कहते हैं

भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बर की चाह में बैठा रहूं। जय।

0: भाई।
1: जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब क्या करूं, कैसी परीक्षा लूं। यहां से अब सती माता श्री राम की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। शिव जी के बात पे विश्वास ना करके सती माता स्वयं अपने से राम की परीक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं। सती माता कैसी परीक्षा लेते हैं राम जी का, वो हम लोग कल पाठ करेंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम, श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र, प्रस्तोता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। प्रिय श्रोताओं, ये ईशोपनिषद का छठा मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य सब प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखता है, अपने आत्मा के तुल्य देखता है, अनुभव करता है, सर्वभूतेषु और सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है, इसलिए ततः न विचिकित्सति, वो किसी प्रकार का संशय संदेह नहीं रह जाता उसको, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह कोई निंदित कर्म नहीं करता। प्रिय श्रोताओं, ये बहुत ही प्यारा मंत्र है। हम संसार में प्राणी मात्र को अपना समझे, इसलिए तो वेद कहता है ना, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं संसार के सारे प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखूं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में फिर ऊंच नीच की भावना कहाँ रह जाती है, द्वेष का भाव नहीं रहता। सबको द्वेष रहित मित्र की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो हमारे जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। प्राणी मात्र में वही है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। जो सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होता है, घृणा नहीं करता, वह सबका मित्र होता है, वह दयालु होता है, ममता और अहंकार से रहित होता है, सुख दुख में सम रहता है, बराबर रहता है। प्रिय श्रोताओं, इस संसार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये तो छोटे लोगों की भावनाएं होती हैं। संस्कृत के कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे, जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो सारा संसार कैसा है, एक परिवार के जैसे होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, हम प्राणी मात्र को अपना समझें, किसी को हम ये न समझें कि ये पराया है, ये दूसरा है। हम सब उस अमृत ईश्वर के पुत्र हैं। ततो न विचिकित्सति, जब ऐसी भावना हमारे मन में आएगी तो हम किसी से कोई घृणा नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते, और हम उसको सर्वत्र मान लेते हैं। अणु अणु में, कण कण में उस ईश्वर की सत्ता को जब समझने लगते हैं तो हमें सब जगह प्रभु दिखाई देते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हमारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम त्वं स्त्री त्वं पुमानसि।

न वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख। जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है, वैसे ही जीवात्मा में चिन्ह नहीं है। वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है और शत्रुओं का दमन करके सब ओर दृष्टि करता हुआ धर्मात्मा होकर स्तुति और कीर्ति योग्य है। ओम उतै अशां पितो तवा पुत्र ईशा मुतेषां ज्येष्ठ उतवा कनिष्ठ एको हदेवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात्स उगर्भे अन्त। नित्य जीवात्मा शरीर के संबंध से पिता पुत्रादि कहता है। इस जीवात्मा से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक है। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम पूर्णेनसिच्यते उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते। यह संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी परब्रह्म की उपासना सब लोग करें।

地，谁给哪给那米沙道为家的महान शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक और सर्व प्रकाशक होकर अपने भक्तों की बढ़ती करता है और समस्त संसार में सधी रखता है। ओम अविर्वै नाम देवतर्।

हरिता हरित स्रज। ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वरक्षक प्रसिद्ध हैं, उसी की दया से यह हरे हरे वृक्ष आदि प्राणियों को फल आदि से सुखदायक होते हैं। ओम शांति।

0: ब्रीहिरयवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रो अमर्त्यै।
1: अश्वत्थः अर्थात पीपल का वृक्ष जो प्राण वायु

और सबको शीतलता प्रदान करता है। इस वृक्ष के सभी अंगों में पौष्टिक तत्व विद्यमान रहता है। दर्भः अर्थात पुष्पवित्री एवं घास का तिनका जो दुख का विदारक है, चोट लगने पर उपयोग में लाया जाता है। विरुधाम राजा, औषधियों का राजा, सोम अमृतम, सोमलता, गिलोई आदि औषधियां जो साक्षात अमृत के समान बलदायक हैं। हवि भेषजौ, रोगनाशक, भय निवारक, ग्राह्य द्रव्य जो यज्ञों में हवि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ब्रीही यवह च, चावल, जौ आदि पुष्टिकारक अन्न जो हमारे जीवन को मृत्यु से बचाते हैं और हमें बल प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि पीपल, दर्भ, सोमलता, चावल, जौ आदि प्राकृतिक पदार्थों के गुणों को जानकर उनका सही उपयोग करें।

0: पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे जितने भी औषधियाँ हैं और जिस प्रकार की औषधियाँ हैं, चाहे गिलोय हो या तुलसी, ये सब औषधियाँ अलग अलग गुण वाले और प्रभाव वाले होती हैं। ये औषधियाँ हजारों पोषण शक्तियों से युक्त हैं। पौधे, लताएं, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ हमें आलस्य, प्रमाद, कष्ट और मृत्यु से दूर रखें। इनके उचित सेवन से स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्न, कंद, जड़ी बूटी आदि स्वास्थ्यवर्धक औषधियों एवं पोषक तत्वों से बल बढ़ाकर सुखी जीवन व्यतीत करें।
1: ओम जीवालाम नघारीशम जीवंतिम औषधिम अहम अरुधंतिम उन्दयन्तिम पुष्पं मधुमतिम इह हवेस्मा अरिष्ठातये।
0: इस मंत्र में जीवंती, अघना और मधुमती जैसी कल्याणकारी औषधियों का वर्णन है। यह मंत्र कहता है कि कभी भी हानि न पहुंचाने वाली, नव जीवन देने वाली, रोगों को दूर रखने वाली और मधुर रस से युक्त वनस्पतियां हमारे शरीर के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। अतः मनुष्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक परीक्षण के साथ उत्तम से उत्तम प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जीवनदायी मधुरता से युक्त पाप नाशक अन्न आदि औषधि एवं जड़ी बूटियां इस धरती में सदैव विराजमान रहें और इनसे सबका कल्याण हो।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की साइक्लिस्ट किमले को पिनो ने टूर डे फ्रांस फार्म के छठे चरण में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच लिया। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरी मॉरिशस में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। गणराज्य के राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 73 के तहत सांसद चेतन आनंद बाबूलाल को कल 6 अगस्त को विपक्ष नेता नियुक्त किया। कल राष्ट्रपति ने विपक्ष नेता के पद से जूलियन जोगाओ के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। वहीं अद्रियन जुवाल ने भी ओपोजिशन व्हिप तथा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रोजिल की आजसू में कल सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। उनके वकील शाफिक चतुर के अनुसार उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। और विदेश में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने गुरुवार को मेटा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर पूर्व की ओर से आने वाली तेज और अस्थिर हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, लेकिन दिन के दौरान धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। ऊंचाइयों पर हल्की बारिश हो सकती है, अन्यत्र मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर 50 तक हो सकती हैं। पूर्वी प्रांत में दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त होगा 5:54 पर।
2: RM3 Radio.

मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने कुरान मुबीन की तिलावत समात फरमाई। सन 1852 में हज़रत पीर ज़हूर शाह रहमतुल्लाह अली की विलादत बासादत हिंदुस्तान में हुई। कम उम्री ही में आप रहमतुल्लाह अली ने एक ऐसा सफ़र अख्तियार किया जो सिर्फ जगह की तब्दीली न थी बल्कि एक रूहानी मिशन का आगाज़ था। 18 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह अली ने हिजरत करके सरजमीन मॉरिशस में कदम रखा। ये सफ़र सब्र, इस्तकामत और अज़्म की एक रोशन मिसाल था। बिलयकीन औलिया कराम वो नुकूस कुदसिया होते हैं जिनके दिल दुनिया की चमक दमक से बेनियाज और इश्क़ इलाही से मुनव्वर होते हैं।

सामईन कराम, बुजुर्गी सिर्फ करामात का नाम नहीं बल्कि असल बुजुर्गी इंसान के अखलाक, आजजी और मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत में पोशीदा होती हैं। हजरत पीर जहूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़िंदगी सादगी, मेहनत और तकवा के उसूलों के साथ गुजारी। मॉरिशस में कदम रखने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़गार के लिए मेहनत की, रोजबेल शुगर फैक्ट्री में काम किया और अपना कारोबार कायम किया। दुनियावी मसरूफियात के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह का दिल हमेशा याद

0: इलाही से आबाद रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरदार, हुस्न अखलाक और रूहानी कमालात से लोगों के दिलों में ऐसा मकाम पैदा किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत, इखलास और रूहानियत की एक पहचान बन गए।
1: सही।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत पीर ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी नेमतों से नवाजा था। आप रहमतुल्लाह अलैह कादरिया और चिश्तिया दोनों सलासिले तसव्वुफ़ से वाबस्ता एक अजीम रूहानी शख्सियत थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में इल्म, इश्क और हिकमत का एक हसीन इम्तिज़ाज

नजर आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल, अपने अखलाक और अपनी पाकीज़ा जिंदगी से असबाक देते थे। औलिया कराम की यही शान होती है कि वो दिलों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करते हैं और इंसान को इंसानियत का रास्ता दिखाते हैं। हजरत पीर ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी भी इसी पैगाम मोहब्बत की एक रोशन तस्वीर थी।

सामईन कराम, अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को ऐसी रूहानी ताकतें अता फरमाता है जो आम इंसानी फहम से बुलंदोबाला होती हैं। हजरत पीर जहूर शाह कादरी रहमतुल्लाही की जिंदगी से भी कई ऐसे वाकयात मंसूब हैं जो उनके बुलंद रूहानी मकाम की अकासी करते हैं। उन वाकयात में सबसे नुमाया आप रहमतुल्लाही की अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल, इबादत और रियाजत और रूहानी बसीरत का जिक्र मिलता है। पीर जहूर शाह कादरी रहमतुल्लाही ने अपनी ज़िंदगी से ये सबक दिया कि जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हो जाए तो इंसान की ज़ात दूसरों के लिए रहमत और सुकून का ज़रिया बन जाती है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हर ज़ीरो को एक न एक दिन अपने खालिक़ हकीकी की बारगाह में हाजिर होना है। हज़रत पीर ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 22 तारीख को इस दार-ए-फ़ानी से पर्दा फरमाया और अपने महबूब हकीकी से जा मिले। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तकरीबन 86 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद पोटली में अदा फरमाई। हज़रत पीर ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार गिश्तिया के कब्रिस्तान में अकीदत व एहतराम से ज़ियारतगाह बना हुआ है। बिलयक़ीन आप रहमतुल्लाह अलैह उन खुशनसीब हस्तियों में से हैं जिनका नाम आज भी अकीदत, अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की महफिल में चंद लम्हात गुजारने के बाद दिल को सुकून मिलता है? दरअसल ये उन पाकीज़ा सोहबतों की बरकत होती है जहां अल्लाह ताला की याद, हुस्न अखलाक और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी होती है। बुजुर्गान दीन की सोहबत और उनके नक्शे कदम पर चलना दिलों की

हौसला और किरदार की तामीर का बेहतरीन जरिया है। जिस तरह खुशबू फरोश के पास बैठने वाला खुद भी महक उठता है, उसी तरह नेक लोगों की सोहबत इंसान के बातिन को नूरे ईमान से मुनव्वर कर देती है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। ये महफिल तो ख़त्म हो रही है मगर अल्लाह वालों का तज़किरा कभी ख़त्म नहीं होता। उनके ज़िक्र की खुशबू वक्त की हदों में क़ैद नहीं रहती बल्कि सदियों के काफ़िले तय करके भी दिलों को मुअत्तर करती रहती है। सामईन, आज हमने अजीम वली कामिल हज़रत पीर ज़हूर शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के चंद गोशों पर नज़र डाली। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए, आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ता क़यामत अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बनाए और हमें आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

प्रणाम श्रोतागण, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, अपने कर्मों के अनुसार हमें जन्म भी मिलते हैं और साथ साथ हमें अपने कर्मों के अनुसार फल भी मिलते हैं। इसलिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने से पहले हमेशा एक डर परमात्मा का होना चाहिए। मनुष्य सोचता है कि उसका कर्म कोई नहीं देख रहा, परंतु ऊपर बैठा

परमात्मा हर आपके कर्म को देखते भी हैं परखते भी हैं और उसका फल भी मिलता है समय अनुसार इसलिए सत्कर्म से अपनी जीवन को सार्थक बनाएं आइए इसी के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से

श्रोताओं, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी हम सभी श्रावण माह के पावन महीने पर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और व्रत भी हम सभी भक्त धारण भी कर रहे हैं। कहते हैं श्रावण माह एक ऐसी माह है जहां पर अज्ञानता दूर होती है, और जब अज्ञानता दूर होता है तो मनुष्य की हर एक कुविकार भी मिट जाते हैं। कहते हैं हर अंधकार के बाद सूर्य अवश्य उगता है, उसी भांति हमारे जीवन का भी जो भी अंत हुआ है उसका आरंभ भी होगा, और जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी होगा, यह निश्चित है। इसीलिए किसी चीज का भी घमंड ना कीजिए, जो आज है कल नहीं होगा। इस संसार में कोई किसी चीज का या मोह से हम सभी बंधे हैं, इस मोह को त्याग कर जीवन की सच्चाई को अपनाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह अगर आपने शिव नाम का जाप कर लिया तो भोले भंडारी आपके सब जो कुविकार हैं, अज्ञानता हैं, वो दूर कर लेते हैं। तभी संसार उन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं।

श्रोताओं कहा जाता है हमारा मन दर्पण है और हमारे मन हमारे कर्मों से अज्ञात नहीं है। जो भी हम करते हैं हम जानते हैं। इसलिए कहा जाता है इस माह में बड़े श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ एक लोटा जल लाप अवश्य चढ़ाएं और भक्ति और आस्था के साथ एक बेल व पत्र भी चढ़ाने से मन की सभी दुविधाएं दूर हो जाते हैं। दूसरों को कष्ट देने से पहले हजार बार लाखों बार आप सोच विचार कीजिए। मन साफ हो तो परमात्मा मिल ही जाते हैं। मन साफ ना हो तो लाख आप प्रार्थना आराधना भी कर लें, फल तो वही मिलेगा जो आपने बोया है। परमात्मा दिखावे से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं, साफ मन वालों से प्रसन्न होते हैं। यूं ही संसार उन्हें भोलेनाथ नहीं कहते। इतने भोले हैं कि हर किसी के कर्मों को माफ कर लेते हैं, परंतु मन सच्चा होना चाहिए। मन सच्चा हो तो परमात्मा माफ करके क्षमा करके आपको सभी मनवांछित फल भी देते हैं। इसलिए दूसरों को रुलाने से पहले आप हजार बार सोचिए, विचार कीजिए। आइए इसी के साथ एक और सुंदर भजन को हम श्रवण करते हैं इस माह

श्रोताओं, पीड़ा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पीड़ा ना हो तो हम जीवन को कभी नहीं समझ पाएंगे। और जब कोई भी मनुष्य अपने जो पीड़ा है, दुख है, सुनाता है, तो श्रावण माह का अर्थ ही है श्रवण करना। तो श्रवण कीजिए, उसको सुनना। जब हम किसी को सुनते हैं, मान लीजिए उनका दर्द हम बांट रहे हैं, दर्द बांटने से पूरा दर्द समाप्त नहीं होता है, परंतु थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है। और पीड़ा को वही समझ सकता है जो पीड़ा से गुजरता है।

इसलिए कहा जाता है जिस पर बीतता है वही जानता है। जब संसार ग्रसित थे संसार में विष, समुद्र में विष निकला था, हलाहल निकला था, तो स्वयं परमात्मा ने ही, देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर संसार को बचाया था। इस प्रकार बचाया कि स्वयं को पीड़ा मिला और संसार को कष्ट से दूर किया।

मनुष्य को ही सिखाया गया है कि इस संसार में हर चीज नश्वर है, पीड़ा भी उसका भी एक समाप्त होगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये पीड़ा भी समाप्त होगा। जिस प्रकार ने देवों के देव महादेव ने संसार को समझा, तो मनुष्य को भी मनुष्य को समझना चाहिए। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। और इसी हलाहल पीने से, अपने कंठ में धारण करने से उन्हें नीलकंठ बाबा कहा गया। इस माह में ही श्रवण करना और अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करना ही पूजा कहते हैं, आराधना कहते हैं। मान लीजिए आपने आपकी सभी जो व्रत हैं पूर्ण हो गए हैं और आपको अच्छे फल भी मिलते हैं, आइए प्रेम से बोलिए नीलकंठ बाबा की जय।

चारों ओर शिवमय शिवमय वातावरण ही है। शिव नाम लेते ही हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, उसी भांति जिस प्रकार वो हैं। कहते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या फिर आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं जिस आराध्य को, हम उन्हीं के सम्मान हो जाते हैं। सरल भाव और भोले, उन्हीं से ये संसार है और ये संसार भी उन्हीं से है। आइए एक और भजन की को हम श्रवण करते हैं।

शक्ति। श्रोताओं आइए इसी के साथ हम मां भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद और आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, सभी को हमारा नमस्कार। आज सुबह रिफॉर्म पार्टी ने एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की सदस्य सिल्विया एडवो ने सवाल उठाया कि वेरोनिक लेगोविंद अब भी सांसद के पद पर क्यों बनी हुई हैं। वेरोनिक लेगोविंद ने अपने घर कास्नो अयाल से कथित तौर पर गांजे के चार पौधे मिलने के बाद कला एवं संस्कृति जूनियर मंत्री तथा नुवो डेमोक्रेट की अध्यक्षा पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले शुक्रवार को उनके घर पर हुई तलाशी के बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिल्विया एडवो का कहना है कि मॉरिशस में राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मतदाता किसी सांसद को उसके कार्यकाल के दौरान वापस बुलाकर पद से हटा सके। देश में रक्त भंडार पर अभी भी दबाव बना हुआ है और खासकर निगेटिव ब्लड ग्रुप की तुरंत आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन 30 अगस्त को बॉम्बू विलेज हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित करेगी। इसके बाद 4 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पूरे मॉरिशस में कई स्थानों पर रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन ने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की अपील की। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव किया है क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक की जाएगी। पोर्ट लुइस में जल की आपूर्ति का समय सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत हर रोज़ पानी की आपूर्ति की अवधि में 2 घंटे की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी और साथ ही 17 जून से प्लेन विलियम समोका तथा रिवियनवा के कुछ हिस्सों में लागू जल आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगी। और विदेश खबरों में, थाईलैंड के नोटनबरी प्रांत के एक स्कूल में आज हुई गोलीबारी में एक शिक्षक और छात्रों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। हमलावर छात्र ने घटना के बाद आत्महत्या कर ली। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM3 Radio.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आसपास होता है, मुझे तो पता है कि कोई हो ना हो हमारे लिसनर्स रेडियो मनोरंजन पे हमेशा हमारे पास होते हैं, हमारे दिल में होते हैं। चलिए स्वागत करते हैं हम आप सबों का हमारे इस प्रोग्राम में जहां पर पुराने गाने लहराने के लिए बेकरार हैं। आज है 7 अगस्त और अभी घड़ी बजे घड़ी इशारा करिए 12:07 हुए हैं। सो स्वागत है आप सबों का, हम साथ साथ होने वाले हैं। कब तक हम साथ होंगे? बिल्कुल 2 बजे तक। और चलिए यहाँ पर हम ट्रैवल का वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। टिकटॉक के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुल्ताना कंदाय और यहाँ पर सुल्ताना कहती हैं क्या गाना है, वाह। चले जी कहते हैं हेलो विदिता रानी, मैं आसपास होता हूँ जी, मुझे पता है आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। तरुण राम आपका हम वेलकम करते हैं। उत्तम नमस्ते। दिनेश गोपी कैसे हैं जी। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा लवली वाइफ नाजलीन के लिए, ये है जैद की तरफ से। और वहीं पर हमारे साथ संध्या जुड़ी हुई हैं, तनवीर खालिद है हमारे साथ और साथ में है रेखा गोपोल। वैसे तरुण थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए इसी के साथ बाकी जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमारे टिकटॉक पे लाइव, तो वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ में रंभा जी का हम कहेंगे रंभा हो रंभा संभा, जितने भी लोग हैं हम सबका वेलकम करते हैं। थैंक यू।

0: सो मच. और अनीजा अहमद, आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में.
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: चलिए माधुरी भी एक दो तीन करते हुए आ गई है. वहीं पे हमारे जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी संभाल के चलाएगा.

0: खाना सफर खाना सफर
1: 12:12 अब 13 भी हो गया स्वागत है आपका। वो मैं कहती हूँ ना हमेशा, अब 13 क्या होगा कालिया, तो चलिए आपका कुछ नहीं होगा, बस आपका एंटरटेनमेंट होगा क्योंकि आप लोग वेदिता के साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर। तो यहाँ पर गाना होगा वेदना के लिए जो कैच बोन से हैं, और नेक्स्ट गाना आपके सभी दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे। एंड जस्ट थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड कहते हैं कि भाई गाने सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दूर हैं अपने मॉरिशस से। सो जयेश जो है वो यूके से हमें सुन रहे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर संध्यान मिस्टर नुरेदीन है फ्रॉम फ्रांस, एंड वी हैव आसिया बुदू फ्रॉम इटली, सुचिता कुलुमत हमारे साथ है, मेरी ग्रेस, सुनन, वीना सुदू फ्रॉम रामोगी, एंड यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से निकल कर आते हैं ना सभी, अनिल राजन कुजन आपका हम स्वागत करते हैं, नमस्कार। और चलिए यहाँ पर हम गाना जो है डेडिकेट करेंगे आप

ये आपने जो सितारा मांगा है हम देखते हैं, अगर मिला तो दिखा देंगे, चमका देंगे। यहाँ पर काजल कविता लाचा हमारे साथ है, नमस्कार, स्वागत आपका। गाना कौन सा होगा भाई? या गाना तो वही होगा जो हर एक पत्नी शाम को, आज शाम को घर पर खाना वाना बना कर, सारी साफ सफाई कर कर सज धज के बैठी होंगी, तो यही गाना होगा ना कि सजना है मुझे सजना के लिए। शाम को काम से आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे और नहीं तो रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम सुनेंगे, है ना। आनंद जी नमस्कार, हमारे प्रोग्राम का आनंद लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।

0: खाना सफर।
1: चलिए सजना सवरना अच्छा लगता है अगर आपको तो ये गाना आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो गाना हम चला रहे हैं ये गाना हम नज़र करना चाहेंगे राजा शिवशंकर को जो साथ दे रहे हमारे सुचिता भगरती जो कि है फ्रॉम लंदन। क्या बात है लंदन वालों, आज बड़े प्यार से हमारे साथ दे रहे हो। यहाँ पर किरण पुरी है फ्रॉम वैंकूवर, ये है कनाडा में। कहते हैं भाई गाना सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। चलो अच्छा है, अब नींद उड़ गई थी, अभी हम होश उड़ा रहे हैं हमारे गीतों के साथ। नेक्स्ट गाना राधिका बाचू के लिए, सरोज अनीता जो पीछे काफ़े से हैं, धर्म सरस्वती मालिनी विश्राम हर्ष और आ गई हमारी प्यारी सी परी हमारी माधुरी के साथ। कहते हैं बाण छोड़ दो, हाँ अभी चलाना है बाण, एक के बाद एक चलाएंगे, सबके दिल को करेंगे घायल।
2: ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।
1: नर्मदा जी का बर्थडे है तो चलिए उनको भी हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। दीप्ति गंदौरी का स्वागत।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: लाल नीला पीला हरा रंग कोई भी हो भाई, रंग का क्या है, कोई भी रंग हो छूट जाता है। प्यार ही वो सच्चा रंग होता है जो एक बार चढ़ गया ना तो ज़िंदगी भर नहीं उतरता। ऐसे ही प्यार के साथ आपको हम रंगने आए हैं हमारे खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सुहाना सफ़र रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूँ वेदिता और आप हमारे साथ सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम। दुनिया के किस किस कोने से हमारे दोस्त नहीं आते हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या मिलता है यहाँ पे आप पूछोगे, आखिर मिलता है क्या है? प्यार मिलता है, प्यार मिलता है इन पुराने गीतों के साथ, प्यार मिलता है हमारे उन दोस्तों के साथ, प्यार मिलता है, सुकून मिलता है इन गीतों के साथ, है ना। तो चलिए यहाँ पर रोजीदा दर्शन, संध्या, वीमा स्वरूप, पल्लवी लिस्टिंग फ्रॉम ब्रिस्टल और साथ में है अनुष्का, वी हैव राव, रेशमा, मोहिनी दीनू और विमला साथ में यहाँ पर। नमस्ते विमला जी, कैसे हो आप? कल्याणी हरी, शिमला बिजादर एंड यही गाना हम अजहर के नाम डेडिकेट करेंगे। यहाँ पर गाना जो होगा हम बृंदा सोहन के नाम चला रहे हैं। और हाँ भाई, आज सब कुछ सुहाना हो गया, आज सब कुछ खूबसूरत हो गया और स्माइल करेंगे तो लाइफ भी खूबसूरत हो जाएगी। तो डोंट फॉरगेट कि आप कितना भी सजले सवरले अगर चेहरे पे मुस्कान ना हो ना तो बात नहीं बनती। चलिए गाना हम एक ही के नाम डेडिकेट करते हैं और बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं सब आ जाओ मेरे शो में। यू आर मोस्ट वेलकम।

0: यही है वो सांझ और सवेरा जी बिल्कुल, और यही है वो 12 और 2 बजे का जो प्रोग्राम होता है सुहाना सफर, जहां हम और आप मिलते हैं। आदाब जी, आपका भी हम वेलकम करते हैं। नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, ये है रहाना फ्रॉम फिनिक्स, जलीला और जियाद जो कि अब्रोड पे हैं और अभी उनकी याद आ रही है, तो चलिए नेक्स्ट गाना उनके नाम नज़र करते हैं हम बड़े प्यार से।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर,
0: और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं किरणपुरी के लिए। जी जी, लाल नरेंद्र कुमार नंदी और काला राम कारीगर जो कि भी वैंकूवर कनाडा में हमें सुन रहे हैं। वैसे किरणपुरी अकेले सुनते थे, फिर बोला भाई ये प्रोग्राम छोड़ नहीं सकते, मैं क्यों अकेले सुन सुन के खुश हो जाऊं, मैं अपने दोस्तों को भी खुश करूंगा। तो सबके लिए उन्होंने गाने की फरमाइश की है। नेक्स्ट गाना मैं खास आप लोगों के नाम डेडिकेट करने जा रही हूं, साथ में बिंता और लता, रेखा गोपाल, ये सभी दोस्त हमारे हैं। राम, आपका हम स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एजे, कैसे हो ब्रो? सब बढ़िया, सब ठीक? चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा, और साथ में ये गाना खास हम साहिल के नाम डेडिकेट करते हैं और उनके बॉस अनिल के लिए जो रोज़ हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं। एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रिया फ्रॉम यूके, एंड चलिए इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं आपके लिए।
2: चंचल
3: शी

0: सुहाना सफर।
1: हैप्पी फ्राइडे आप सभी को। थैंक यू श्री राम, आपको भी हैप्पी फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट गाना होगा सभी दोस्तों के लिए, रोशनी, देवीना, चिरंजीत, अमिताभ, बरखा और शमा, साथ में है नीला, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे सभी दोस्तों के लिए जो इस समय गंगा तालाब में काम कर रहे हैं। और मोहिनी यहाँ पर हमारे साथ हैं, आप हैं फ्रॉम फिजी आइलैंड्स। हाय रोशन, नमस्ते, कैसे हैं आप? चलिए जी, गाना होगा हमारे इन तमाम दोस्तों के लिए। हमारे साथ हैं संजय बुधवा, गीता सीयू, रिशान, प्रिया प्रसाद, वर्षा, तीशा, मोहिनी, आफरी, नदीवा गर्ल, नीलिमा, पूजा जबल, गंगाराम, सनीचर फैमिली के लिए जो इस समय हमारे गीतों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अभी के लिए जो गाना है, आम शो, दिल थाम लीजिए। अगर आप किशोर दा के फ़ैन हैं और साथ में अगर आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, तो आपका दिल चोरी होने वाला है। चलिए यही गाना साल की तरफ से उनके सभी प्यारे प्यारे सिस्टर्स के लिए, जिनको बहुत प्यार करते हैं और रोज़ उनको याद करते हैं। और यहाँ पर सैंडो हमारे साथ हैं, क्या बात है।

0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। इशारा तो मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है कि कितने सारे दोस्त बाहर से हमें सुन रहे हैं, एंटरटेन करने की हमारी कोशिश पुराने गीतों के साथ। दुर्गा, किरण, उनके सभी दोस्तों के लिए, क्लैरिस एंड रेणुका, वे हैव एक्सेलेंस एक्सपोर्ट, जो सभी स्टाफ हैं उनके लिए, फॉर हिमाक्षी एंड हिमांशी, वी हैव शर्मिली, मिस्टर संजीव जो गंगा तालाब में काम कर रहे हैं, प्रवीण है फ्रॉम होलैंड।
1: RM3 Radio.
0: गाना हम मोहिन लता आपके नाम डेडिकेट करते हैं। हाय कर्सी, कैसे हो आप? चले शैलेंद्र की आवाज़ में गाना होगा, तो शैलेंद्र आ गई हैं आपके लिए।

0: का सफर
1: कहां अपनी आवाज मिला दूं मेरी आवाज से मैंने आवाज मिलाई और गाना ही बंद हो गया चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो गाना है डेडिकेट करते हैं फॉर दीपक एंड यस वो भी वो जीना ज्वेलरी में काम कर रहे हैं रोजिल में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं नमस्कार स्वागत है आप सबका ठीक है हैंसले के लिए गाना होगा विश्वानी अमर सिंह साकुन सुभाष कटवाल हमारे साथ हैं बेफिक्रे बॉयज कहते हैं राधे राधे आपको भी राधे राधे चलिए करुणा राम अमिता मुहाबिर श्यामा महराली उनकी पोती याति यजना और कुशीता के लिए वहीं पर शेफ अविनाश लच्छन हमें सुन रहे हैं क्या बात है हेलो जी कैसे हो आप यहाँ पर हम यही गाना डेडिकेट करते हैं फॉर नम्रता एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग एंड इंदिरा जी साथ में है अकीम को हम हेलो कहेंगे वहीं पे नेक्स्ट गाना होगा फॉर माय फ्रेंड मीता गाना होगा आपके लिए इंदिरा जी राजेश उगर और प्रकाश के नाम साथ में यहाँ पर शेफ अविनाश कहते हैं भाई ऑलवेज बिजी हाँ काम ही है आपका लेकिन शेफ हो तो बिजी तो रहना पड़ेगा चलो आपके आते ही पता नहीं क्यों हमें भूख लगने लगी नेक्स्ट गाना आपके लिए देव आपके लिए थैंक यू सो मच कहते हैं कि आपका ही वेट कर रहे थे अब तो हम हैं यहाँ पर बस गाने एंजॉय करें और मूड बनाते चले
2: RM3 रेडियो रेडियो, रेडियो.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: हमारा अगला गाना रेणुका जग्गू श्रीनिवासन सुमोगम और साथ में उन्होंने सबको मॉरिशस में हेलो कहा है सलीमा मालिनी बेबू क्रिश की तरफ से त्रिष्टिका के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम और ये गाना जाएगा आपके लिए जिन्हें आप बहुत मिस करो क्रिश लक्ष्य के लिए जीतन दुलवा कविता अनु और डैनी हमारे साथ हैं तो चलिए यहाँ पर उन सब के लिए हम गाना डेडिकेट करते हैं रोहित

0: रोहित फ्रॉम सुरीनाम, हाय। रोहित को बस रितम आता है इसलिए बेचारा बस वही भेजता है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, सो इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप हमारे साथ, हमारे रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम सृजेश कुमार बंधन के नाम डेडिकेट करेंगे, लेकिन उन्होंने धुरंधर का गाना मांगा है। भाई हमारे यहाँ सिर्फ पुराने गाने चलते हैं, नए गाने नहीं चलाते, वरना मैं नए गाने ही चलाती ना। ज्योति जी नमस्ते, स्वागत है आपको। आयशा ज्वाइन कर चुकी हैं, वेलकम आयशा। चलो तो यहाँ पर आयशा के लिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं, और साथ में हम गुचीना के नाम भी डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: यहाँ पर दीपक जी कहते हैं प्लीज हमारे सभी दोस्तों के लिए जो अभी जो है ना ज्वेलरी में काम कर रहे हैं, आप डेडिकेट कर देंगे ना नेक्स्ट गाना उनके लिए। और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे अश्मिता चांद के नाम। रोहित ने अभी नया नया वर्ड सुना है, उन्होंने लर्न किया है मेसी मीन्स थैंक यू। वो मेसी प्लेयर है फुटबॉल का और ये मेसी होता है, लेकिन अच्छा है उसी तरह से प्रोनाउंस कर।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे भी धीमा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह रिफॉर्म पार्टी ने बेन केहनेस पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी की सदस्य सिल्विया एडवा ने वेरोनिक ले गोविन के सांसद पद पर बने रहने पर सवाल उठाया है। कास नोयाल स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर गांजे के चार पौधे मिलने के बाद वेरोनिक ले गोविन ने जूनियर मिनिस्टर के पद के साथ साथ नुवो डेमोक्रेट के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले शुक्रवार को तलाशी अभियान के बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिल्विया एडवा के अनुसार मॉरिशस में मतदाताओं को किसी सांसद को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए राइट टू रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। वकील शफिक चतर के अनुसार कई घंटों की पूछताछ के बाद कल वेरोनिक ले गोविन को रोज हिल स्थित आजसू के कार्यालय से जाने की अनुमति दे दी गई। इस स्तर पर सांसद के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से उनके नाम पर पंजीकृत एक वाहन के बारे में पूछताछ की, जिसमें कैनाबिस के निशान पाए जाने का संदेह है। उनसे रेनियन की उनकी यात्राओं के बारे में भी पूछताछ की गई। आजसू और रेनियन की पुलिस संयुक्त रूप से रेनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे के कथित तस्करी मामले की जांच कर रही है। इकोलॉजिस्ट डेविड सुवाज ने वेटलैंड्स बिल में संशोधन की मांग की है। उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में एक कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका ये भी दावा है कि 2009 के ईएसए स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। डेविड सुवाज ने पाठ में प्रस्तावित गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है और उनका मानना है कि नागरिकों की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है। खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बॉम्बू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे द्वीप में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीवानंद हुसैन ने आम जनता से रक्तदान करने की अपील की है। और विदेश में थाईलैंड में एक किशोर लड़के द्वारा कथित तौर पर अपने दादा दादी और स्कूल के शिक्षकों को गोली मारने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। संदिग्ध हमलावर जो 14 वर्षीय छात्र हैं वो भी मृत पाया गया है। बताया जा रहा है कि उस लड़के ने राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर पर अपने दादा दादी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो अपने स्कूल गया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। You're listening to RM3 Radio, Mana.

दिन के 1:10 हुए हैं, 7 अगस्त, और हम साथ साथ हैं। चलिए नेक्स्ट गाना, सरिता, कविता, उमेश जयपोल, रोशनी, शर्मिला बुधन साथ में, अनिष्ठा, राम तोहल, श्यामा, राधे राधे आपको, अरुणा है मोंटेनेग्रो से, उनके बच्चों के लिए आरव, ज्ञाना, देवनाथ जो मॉरिशस में, अभी उनके लिए गाना होगा, रेखा के भाई विनय, उनका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको, फतिमा, सिमी, वैदेही, केविन, गगरू साथ में, राज, मोइन, हबलाल हमारे साथ हैं, वी हैव सीपी फ्रॉम ग्याना एंड सपना, सरिता, चतन, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। सोच रही हूँ नेक्स्ट अगर गाना चलाऊं तो कुछ ऐसा होना चाहिए। वैसे हबल मोइन हमारे साथ सुविनाम से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आफरीन, आपके लिए गाना, एंड साथ ही साथ ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए जी, साथ दे रहे हैं आप हमारे, और किसी ने हमें कहा है कि मैसी, तो हम मैसी ही हैं, वही है, चलो अच्छा है आपने सीख लिया। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो गाना है हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए, रोहित और बबीता, आपके नाम।

0: चलिए जी, बबीता सुनीता शांता संजनी सुरेश कुमार रघु करवर सुरेखा आनंद जी हमें नमस्कार कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच।
1: RM3 Radio.

चलिए जी, गाना सुचिता प्रेमिला अश्विन रामबन के नाम डेडिकेट करेंगे और साथ ही साथ ये गाना हम चला रहे हैं फॉर सिद्धू। हेलो जी, कैसे हो जी? डिस्को डिस्को डांस करना है तो चलो हमारे साथ जुड़ जाओ।

0: चलिए जी ज्योति बिप्ता का हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारी लोगों को हमारी गानियाँ अच्छी लग रही हैं। यश का हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कहते हैं कि भाई आप तो जापान हो लेकिन विदाउट पी, यानी कि जान बना दिया सबने, थैंक यू सो मच। एंड चलिए यहाँ पर मधु नारायण हमारे साथ, रीमा उनका स्वागत है, और साथ में हम उन तमाम दोस्तों को कहेंगे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपको।
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
0: चलिए रागिनी जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए गाना होगा, और देसी के लिए जो मेलरोज से साथ दे रही हैं।

रात प्यार की, वैसे तो शाम ढलते ढलते ढली रही है, लेकिन चलिए यहाँ पर परी को बहुत मज़ा आया। कहते हैं कि हाँ भाई, जया का जो एंट्री है बहुत मज़ा आ गया। ज्योति, लकी, सुनील और अंदनी हमारे साथ हैं। चलिए अगला गाना आप एंजॉय करेंगे।

भाई हमने तो ये काम किया है, हमने सबके नाम नोट कर लिया है विकास जी के लिए जो अभी अभी हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ये गाना हम गीता जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। मनोज पिरतिया हमारे साथ हैं, कहते हैं नमस्ते वेदी जी, मैं हूँ लेसर फ्रॉम सेबास्तोपोल, उनके लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे बड़े प्यार से। एंड साथ ही साथ यहाँ पर रजनी, वैसे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है मूड ही बदल गया है, और अभी क्या है ना कि हम लोग थोड़ा गाने जो है ना थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं ताकि सबकी जो मूड है वो अभी बने रहे, क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे में गाने ऐसे होने चाहिए जो सारा स्ट्रेस दूर कर दे और लाइफ को खूबसूरत कर दे। तो चलिए हम भी चलते हैं लहरों के साथ, जो लोग इस समय जुड़े हुए हमारे या प्रोग्राम के साथ और समंदर किनारे हमें सुन रहे हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, समंदर के आसपास हो, चलिए एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा गाना।

चलिए लहरों के से उसके साथ बादलों के साथ हम भी चलते हैं और यहाँ पर पूजा की तरफ से गाना होगा उनके निव्यू नक्श मुथिया के लिए सभी सिस्टर्स की तरफ से सोनाली बेटी विदांशी और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर कृषि प्रतिमा गंग

एंड साथ में है हमारी वीना, जी हाँ वीना फ्रॉम नुवेल फ्रांस, गाना आपके लिए आपकी फैमिली के लिए। और ये है रेडियो मनोरंजन, तो रेडियो मनोरंजन के सभी लिसनर्स के लिए रोहन टिंकी की तरफ से मामू दायोन के लिए, और वो कहती हैं कि जो उनके मामा जी हैं वो ठीक नहीं हैं, तो गेट वेल सून। और साथ में बबीता पूजा और वानेसा आपके लिए भी ये गाना हम डेडिकेट करते हैं बड़े प्यार से। इस समय आप लोग रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। अभी के लिए जो हमारा अगला गाना है, चलिए इसको सुनते हैं, और नेक्स्ट गाना जो होगा हंसवी के नाम डेडिकेट करते हैं।

0: तुम सा एक नहीं, हम सा एक नहीं, भाई हम तो हम ही हैं और हम तो आ ही जाते हैं। यहाँ पर आंटी कमला के लिए गाना होगा। कृषि ने हमें जॉइन किया है, हमारे सिंगर भाई, हमारे स्थानीय कलाकार, उनका स्वागत। रिया, शिवम, अशोक सब साथ में हैं। भारती, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चलिए यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे सभी दोस्तों के लिए। यहाँ पर दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। मयूरी, बहुत सारा प्यार आपके लिए और बहुत सारी जादू की झप्पियाँ आपके लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना होगा फॉर मामा उमिला, पापा सुरेश, सुकन और साथ में ये है सलूजा की तरफ से, और रेहा यानी कि रेशमा के लिए होगा ये प्यारा सा गाना। तो चलिए हमारे भी जाने का टाइम हो रहा है। गाना हम एसके के नाम डेडिकेट करेंगे और ये होगा उनकी बेटी सुधा के लिए। और अब आपसे मुलाकात करेंगे हम। कहते हैं कि CWA सैंपल के जितने भी लोग अभी इस समय काम कर रहे हैं उनको हम गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, तो ठीक है यही गाना उनके नाम।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मिथुनदा के फैन उनके लिए, मनोज कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए ये गाना आपके लिए और इसी के साथ जाने का समय हो गया। माधुरी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सिलेक्शन। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम मंडे को। भूलिए नहीं हमारा प्रोग्राम जो आप सुनते हैं 12 से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि सुहाना सफर।

0: में है दिजा, तुम भी कहो।
1: 2 बजे है। सुनते हैं एक बार फिर से देश विदेश की खबरें। आपसे भी धीमा नमस्कार।
2: नमस्कार नीतूषा, सभी को नमस्कार। इकोलॉजिस्ट दाविद सुभाष ने वेटलैंड्स बिल में संशोधन की मांग की है। उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका ये भी दावा है कि 2009 में ईएसई स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दाविद सुभाष ने पाठ में प्रस्तावित गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है और उनका मानना है कि नागरिकों की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है। इस शुक्रवार बेन केहने सिपॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। मादक पदार्थों की तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। होशीबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बोंबू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष में एक अभियान के तहत पूरे द्वीप में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितंबर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीवानंद हुसैन ने आम जनता से रक्तदान करने की अपील की है। और विदेश में न्यू मेक्सिको अमेरिका में एक न्यायाधीश ने मेटा को जनता को उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने के लिए $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। बाल सुरक्षा को लेकर कंपनी के खिलाफ अब ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे भले चंगे होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज गीत नृत्य और परंपरा में किस अतिथि का स्वागत करेंगे। तो श्रावण मास में हम पवन कुमार जी को कैसे भुला सकते हैं। हमारे साथ है आचार्य पवन तिवारी जी अतिथि के रूप में। हम आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। श्रोता जो हमें सुन रहे हैं और दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप सबका भी हृदय की गहराई से स्वागत करती है अंजू। और हमारी टीम में है उरुसा जी और साथ ही भाई निज़ाम प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं और अपर्णा आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रही हैं। पूरी टीम आपका स्वागत करते हुए हम आचार्य पवन जी से जानना चाहेंगे कि श्रावण मास जो कि वर्ष का पांचवा हिंदू पंचांग के उससे पांचवा माह माना जाता है, श्रावण से पहले श्रुति आता है और श्रुति श्रावण के साथ हमें यही होता है कि ध्यान लगाकर सुनना जो भी, क्योंकि जुलाई का महीना भारत में जो होता है वो वर्षा ऋतु होती है, मॉनसून होता है। तो सभी आचार्य पंडित ज्ञानी लोग कहीं ना कहीं स्थिर होके परिवारों के साथ बैठ के अपनी कथा सुनाते हैं और ज्ञान की बातें एक दूसरे को बांटते हैं। तो आपका क्या कहना है श्रावण मास के लिए?
2: वागर्थ युव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो जगत के माता पिता, पिता स्वरूप शिव शंकर जी और माता स्वरूप माता पार्वती हैं, उनको वंदन अभिवंदन करते हुए रेडियो मॉरिशस के द्वारा आयोजित नृत्य गीत परंपरा में संचालन कर रही अंजू जी और सहयोगी टीम जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और श्रोता बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र समय चल रहा है। संपूर्ण मॉरिशस शिवमय वातावरण में प्रतिदिन अपने परिवार के साथ मंदिर जा करके भगवान का भजन गा करके भगवान का पूजन कर और अनेक प्रकार से उनको स्तुति कर आत्मकल्याण में लगे हुए हैं। तो प्रश्न का प्रारंभ ही हुआ कि श्रावण मास क्यों इतना महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में समय समय पर अनेक पर्व त्यौहार आते रहते हैं और हम सभी सनातनी बंधु बड़े धूमधाम से हर पर्वों को मनाते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि पांचवा महीना हिंदू पंचांग के अनुसार, तो हमारा नया वर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होता है और आज देखें तो श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रावण का अर्थ ही होता है सुनना, जैसा कि आपने श्रुति कहा
1: जी।
2: और हमारे यहाँ जब पूजन या अन्य कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त, यानी कि जो कुछ भी पहले कहा गया सुना गया

0: हम उसको जो पवित्र समय है उसमें सुने जाने और उसको स्वयं में अनुभव करें। तो श्रावण मास संस्कृत में श्रावण कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे सावन भी कहते हैं।
1: जी,
0: बहुत लोग कहते हैं कि सावन मास चल रहा है,
1: सावन मास चल रहा है,
0: लेकिन श्रावण का तात्पर्य समझते हैं। जब हम ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में श्रावण दिया हुआ है। श्रावण का एक तो यह भाव है कि सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? तो वेद मंत्रों को सुनना चाहिए, रामायण गीता उपनिषद को सुनना चाहिए, भजन कीर्तन सुनना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा इस मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। अब इसके साथ साथ यह जानना चाहिए कि सावन और श्रावण क्यों इतना हम सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि बाकी समयों में ना सुने और इस महीने में सुने। तो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे ज्योतिष में, उन 27 नक्षत्रों में जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा समापन होता है उसके आसपास आकाश में श्रवण नक्षत्र होता है। श्रवण का अर्थ ही होता है सुनना, और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक ही सभी मंदिरों में, यूं तो कहें कि घर घर में वेद मंत्रों का गुंजायमान होता रहता है, और उस वेद मंत्र से अनेक प्रकार के हम लोग अपने जीवन में सीखने का प्रयास करते हैं। जीवन को अनुशासन में ले जा करके भगवान के समीप बैठ करके पूजा पाठ करते हैं। जैसे आपके कार्यक्रम का नाम भी है नृत्य गीत और परंपरा,
1: तो श्रावण मास से इसका क्या संबंध पाते हैं?
0: जी जी, तो हम उस अंतिम शब्द को लेते हैं, परंपरा को। यह हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा रही है कि जब कोई पर्व त्यौहार हो और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे गुरु संत जन ऋषिगण जो हमें उपदेश दिया, जो सिखाया, या पुस्तक के माध्यम से या गुरु वाक्य के द्वारा या उपदेश के द्वारा, उनको हम आज भी जीवंत रखे हुए हैं, पालन करते हैं,
1: पालन करते
0: आ रहे हैं, यह हमारी परंपरा हो गई। तो श्रावण मास से पूर्व जो आषाढ़ मास होता है, भारत में बहुत ही गर्मी का समय होता है और गर्मी की तपिश से और सूर्य के अत्यधिक प्रचंड ताप से जहाँ धरती जो है चारों ओर
1: तपी होती है
0: उस परिस्थिति में जैसे श्रावण का बारिश के रूप में धरती पर आना, यानी कि बारिश का जो फुहारें होती हैं वह धरती पर जब वह वर्षा के रूप में आती है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोग का मन आनंदित हो जाता है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है
1: जी।
0: और वैसे में श्रावण मास कहा गया कि यह शिवजी को समर्पित है
1: जी, शिव को बहुत प्रिय है।
0: जी जी, शिव को बहुत प्रिय है। अब इस श्रावण मास में उन पुरानी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि श्रावण मास में श्रावण प्रारंभ होते ही कांवर यात्रा शुरू हो जाती है
1: जी।
0: कांवर यात्रा के साथ साथ सावन की जब चर्चा हो और वहाँ हमारे जो पुरानी परंपरा है जहाँ कजरी का चर्चा ना हो, विशेषकर जो कजरी एक प्रकार से क्षेत्रीय गीत है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े ही भाव से और हर्षोल्लास के साथ गाया जाता है, यह कजरी लोग काम करते हुए भी, चाहे वह खेतों में काम करते हों या घर में भी या सामूहिक रूप से भी घर घर में कजरी का गीत आयोजित किया जाता है और सभी लोग मिल करके इस श्रावण मास में कजरी गाते हैं। अब कहा गया कि जब तीज त्यौहार का दिन हो उनमें सावन का कोई गीत ना हो और कोई कजरी का गीत ना हो, सावन का झूला ना हो जी, और इसके साथ साथ सावन में लोग अनेक प्रकार से महिलाएं सामूहिक रूप से उपस्थित होकर के नृत्य भी करती हैं और साथ साथ झूमर भी करती हैं, गोलाकार हाथ पकड़ करके एक झूमते हुए
1: जी।
0: और उस समय कोई वो बड़ी गीतकार नहीं होती है, ना कोई रचनाकार होती हैं, स्वतः उनके मन से वह गीत जो है फूट पड़ता है सावन मास को लेकर के,
1: जिसे लोग गीत कहते हैं
0: जी, जिसे हम गीत कहते हैं। और आपके कार्यक्रम का नाम भी गीत भी नृत्य भी और परंपरा भी है
1: जी।
0: तो वह नाचते हुए गाते हुए और अपनी परंपरा को निभाते हुए,
1: और मैं सोचती हूँ कि भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी ऐसा त्यौहार, कोई भी ऐसा

0: अंतर नहीं होता है जहाँ पर गीत ना गाए जाए
1: जी जी
0: या नृत्य ना किया जाए।
1: जी जी जी
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यह हमें सावन संदेश देता है कि जब आप इस मास में आप प्रवेश करें तो बारिश की फुहारों के साथ कृषक अपने खेत में रुपाई करते हुए, बुवाई करते हुए, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वह स्वतः गीत गाते हुए जो बीज है उसका रोपण करती हैं। और इंद्रदेव से, अब ये हमारे संस्कृत में इस महीना के श्रावण मास के जो देव हैं इंद्रदेव हैं
0: जी,
1: और इंद्रदेव की पूजा से बारिश होती है, तो उनको भी उस गीत के द्वारा वे प्रसन्न करती हैं कि
0: आवाहन करती हैं
1: कि आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इंद्रदेव वर्षा के द्वारा या अनेक प्रकार से श्रावण में जो काली काली घटाएं होती हैं उन घटाओं को देख करके, उन बारिश को देख करके
0: कितने गीत बने हुए हैं,
1: बहुत सारे गीत बने हुए हैं, और इस प्रकार से गाते हुए लोग जो हैं यह श्रावण मास बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं।
0: आपने कहा कि ये मास शिव को बहुत प्रिय है
1: जी,
0: और शिव का जो नृत्य है वे तांडव है
1: जी,
0: तांडव
1: जी।
0: दो प्रकार के होते हैं, एक आनंद तांडव है
1: जी, जी।
0: और एक रौद्र तांडव है
1: जी, जी।
0: तो इस पर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अपने विचार दे
1: जी,
0: ताकि
1: जी।
0: वे इन दोनों भेद नृत्यों के बीच में जो भेद है कि एक तो आनंदित होते हैं शिव तो तांडव करते हैं
1: जी, जी।
0: और एक जब गुस्सा होता है तो हम अपने घर में भी बातचीत करते हैं तो कहते हैं तांडव नहीं करना
1: जी, जी।
0: उसके लिए हमें रौद्र रूप
1: जी, जी,
0: हमेशा
1: जी।
0: दे। और जो उनका पूजन भी होता है नटराज के रूप में
1: जी,
0: होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: इस पर थोड़ी सी जानकारी हमारे
1: तो भारतीय संस्कृति में शिव को नटराज कहा गया है
0: जी,
1: यानी जो नृत्य के राजा हो, नृत्य के देवता हो, या यू कहें कि सभी कलाओं में जो पारंगत हो वैसे नटराज। और एक स्तुति में भी कहा गया है सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमा, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमा। यानी शिव नटराज के साथ साथ हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में नृत्य भी हो, गीत भी हो और भक्ति भी हो। इसका सबसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं शिव तांडव के द्वारा। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण जब कैलाश पर्वत उठाने लगा अपने अभिमान में आ करके, भगवान ने अपने अंगूठे से जैसे ही उस कैलाश पर्वत को दबाया। रावण पीड़ा से छटपटा उठा
0: जी,
1: और असह्य पीड़ा के कारण उन्होंने उस शिव तांडव की रचना की। ऐसे शिव तांडव जिसमें लय भी है, छंद भी हैं और अनेक प्रकार से ऊर्जा भी भरा हुआ है। और जब उन्होंने गाया जटा गटाह संभ्रमम ब्रह्मन निलिम्पनिर झरी, और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करते हुए, भगवान उनके गीत को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। तो तांडव का जो आपने कहा कि आनंद तांडव और दूसरा है लास्य तांडव, या दो प्रकार के यहाँ बताया गया,
0: एक आनंद तांडव और एक रौद्र रूप में जो तांडव होता है।
1: तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं, जैसे हम इसे प्रकृति से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि जब सावन का मास आता है, बारिश होता है और बारिश में चारों ओर हरियाली छा जाता है, सभी लोग जितने सारे प्रकृति के जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं,
0: वो आनंदित हो जाते हैं।
1: तो भगवान जब तांडव करते हैं तो एक तो आनंद तांडव आनंदित होकर के
0: करते
1: तो
0: हैं।
1: वैसा ही जब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा भाव होता है तो हम लोग उस भाव को अनुभव करते हुए बड़ा ही आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी नाचना प्रारंभ कर देता है
0: जी,
1: क्योंकि उनके अंदर आनंद की सीमा नहीं रही। और वही जब दूसरे रूप में क्रोध आ जाता है तो आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बोलना प्रारंभ करते हैं तांडव मत मचाओ, जैसा हाँ, आपने अभी कहा।
0: बिल्कुल।
1: तो भगवान सब शिव जब क्रोधित होते हैं तो उस तांडव के द्वारा सृष्टि का संहार करते हैं। आनंद तांडव के द्वारा जहाँ वह सृजन करते हैं, सृष्टि को सृजन करते हैं, वहीं
0: संहार के लिए
1: जी क्रोध के द्वारा तांडव। इसका एक उदाहरण मिलता है कि जब माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के अपने आप को जब उस यज्ञाग्नि में समाहित कर लेती हैं तो भगवान शिव सुन करके बड़ा ही क्रोधित होते हैं और अपने जटा से एक बाल निकाल कर पत्थर पर दे मारते हैं। वहाँ वीरभद्र

0: की उत्पत्ति होती है। और उन्होंने क्रोध के भाव से लेकर के अत्यंत क्रोधित होकर के वहाँ तांडव किया और वह तांडव से पूरे प्रकृति पूरे संसार का संहार होना प्रारंभ किया। तब देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान शिव तांडव के द्वारा जहाँ सृष्टि
1: वो अपना गुस्सा
0: जी जी पालन भी और संहार भी तीनों करते हैं
1: जी।
0: तो जब यह रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाकर के शिव जी को प्रसन्न किया कि भगवान आप प्रसन्न हो, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए जब हम लोग श्रावण मास में या श्रावण मास के अलावा भी अन्य मास जो भी हैं जब हम शिव जी की आराधना करते हैं तो अंत में कहा गया कि स्तुति के बाद प्रार्थना के बाद आप शिव तांडव भगवान शिव को सुनाते हैं तो बड़ा ही आप अत्यंत उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वह भाव ही ऐसा है कि उस शिव तांडव के द्वारा उसमें लय भी है, छंद भी है और अनेक ऊर्जा से भरा हुआ है। और यह सीधा घटित होता है आपके कार्यक्रम नृत्य गीत और परंपरा के द्वारा।
1: बिल्कुल, तो क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ
0: जी
1: है।
0: जी जी, ज़्यादातर आजकल के हम यह सोचते हैं कि हमारी संस्कृति में व्रत उपवास पूजन पाठ कथा ये सब सुनते रहो, नृत्य और गीत से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब शिव तांडव की चर्चा करते हैं और शिव जी के स्वरूप को समझते हैं तो उसमें नृत्य भी है, नृत्य साधना, गीत साधना और भक्ति साधना। ज़्यादातर आप देखें कि जब नटराज की स्तुति हम करते हैं तो जितने भी हमारे सनातन संस्कृति में जो शास्त्रीय संगीत को पालन करती हैं, शास्त्रीय संगीत सीखती हैं या जो पुरुष सीखते हैं, चाहे भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, ये सभी लोग आद्य गुरु के रूप में नटराज जी को पूजते हैं। और ये वही नटराज हैं जो भगवान शिव जी को हम तांडव भी सुनाते हैं। और नटराज जी की जो प्रतिमा है वह प्रतिमा सभी कलाकारों के लिए, जो चाहते हैं कलाकार कि नहीं हम अपनी साधना में पारंगत हों, उन्हें नटराज जी की अवश्य पूजा करनी
1: आवश्यक है
0: जी, अवश्य करनी चाहिए। आप देखें कि नटराज जी का जो स्वरूप है या जो शास्त्रीय संगीत के द्वारा जो नृत्य करते हों या गायन करते हों, वह सभी शिव जी को ही पूजते हैं। इसका बड़ा ही प्रामाणिक
1: महत्व है
0: जी, और प्रामाणिक महत्व है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही जब भगवान ने डमरू बजाया, शिव जी ने जब डमरू बजाया तो उस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, 14 प्रकार की। और उन्हीं 14 ध्वनियों से व्याकरण के जो 14 सूत्र हैं आयुन से लेकर के हल तक
1: जी,
0: महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना की। और उन्हीं डमरू के नाद से नाद ब्रह्म की रचना हुई और उन्हीं से संगीत का जो स्वर है अनेक प्रकार से बना। जहाँ भगवान नृत्य करते हैं उसे नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जितने प्रकार के यहाँ शास्त्रीय संगीत हो या पारंपरिक नृत्य हो, सब उन्हीं को मान करके अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: बहुत सारी जानकारी आपने श्रावण मास और भगवान शिव के तांडव पर दी। श्रोताओं, आप इसका आनंद उठा रहे हैं। चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी पवन तिवारी जी के साथ।

0: संगीत, नृत्य और परंपरा।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है श्रोताओं, दर्शकगण, आप सब श्रावण मास पर चर्चा सुन रहे हैं। हमारे अतिथि हैं आज के आचार्य पवन तिवारी जी। तो बात हो रही थी श्रावण मास में गीत नृत्य तांडव की, तो कहीं बात रह जाती है कि भजन कीर्तन। इस माह में भजन कीर्तन बहुत होते हैं, बहुत पूजाएं होती हैं, सोमवार का व्रत रखा जाता है, इस पर हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विचार दें
2: जी। तो पुनः महादेव जी को प्रणाम करते हुए, सावन का शिव भगवान भोलेनाथ जी को यह समर्पित है। श्रोता बंधु, आप सब भी रेडियो मॉरिशस की तरफ से बहुत ही सुंदर संदेश को सुन रहे हैं, और जो बातें यहाँ हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर श्रावण में भजन कीर्तन व्रत उपवास का क्या महत्व है,
1: हमारी संस्कृति का भाग है
2: जी
1: सब।
2: तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस सनातन के परंपरा को मानने वाले हैं जिसका न आदि और न अंत है, और ऐसे में हम लोग मिल करके पूरे मास गांव-गांव में, हर शिवाला में, घर घर में भी शिव जी का भजन, शिव जी का स्तुति, शिव जी का मंत्र, प्रतिदिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, और यूँ कहें तो घर घर में हर व्यक्ति के मन में यह भाव जग गया है कि हमें श्रावण मास में कुछ न कुछ करना चाहिए। आप देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में एक परंपरा शब्द भी जुड़ा हुआ है। बहुत पहले मॉरिशस में कोई नहीं जानता था कि श्रावण मास को कैसे मनाया जाए, किस प्रकार से हम लोग एकत्र होकर के इसको मनाएं। कांवर की यात्रा भी श्रावण मास में पहले नहीं होती रही, लेकिन अब देखिए कि झुंड बना बना करके गंगा तालाब जाते हैं, श्रावण सोमवार का विशेष वहाँ भी कार्यक्रम होता है, रविवार के दिन टेम्पल फेडरेशन हो या हिंदू हाउस हो, अन्य संगठन मिल करके भी लोगों के स्वागत के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं
1: जी।
2: तो यह हम उस परंपरा को धन्यवाद देना चाहिए जो परंपरा हम लोग, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने और बड़े लोगों ने बताया, जो आज फेसबुक के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है। आप देखिए कि श्रावण का जो प्रारंभ में ही बताया कि सुनना चाहिए, तो प्रतिदिन मंदिर में जब सब एकत्र होते हैं, जहां घंटी की ध्वनि, डमरू का डम डम डम डम आवाज़, और भजन कीर्तन के साथ एक साथ मिल करके, चाहे शिव जी का दोहन हो, शिव जी का स्तुति हो, जब मिल कर आते हैं तो जो दूसरा भी भजन कीर्तन से दूर होता है वह भी उससे प्रभावित हो जाता है कि चलो हम भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाएं, लिंगाष्टकम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम गाएं, या अन्य भी जो धुन है उस धुन को हम अपने मन में गुनगुनाएं। तो हमारे यहाँ पूजा की अनेक विधि बतलाई गई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर उनको सीधे तौर पर बताया जाए कि आपको व्रत करना है, उपवास करना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, प्रतिदिन दर्शन करना है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि मुझसे इतना नहीं हो पाएगा। तो दूसरे रूप में उन्हें जोड़ें कि चलिए आपको भजन करना है, तो थोड़ा उनसे वह प्रभावित होते हैं। विशेष करके हमारे जो युवा हैं, नौजवान साथी हैं, भजन के द्वारा भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। भोजन में नमक न हो तो भोजन बेकार हो जाता है, वैसे ही यदि हमारे पूजा में भजन न हो तो हमारा मन भी उतना नहीं लग पाता है। तो भजन के द्वारा, जैसे कि अनेक प्रकार के हमारे यहाँ भजन बताए गए हैं, वो भी जब यहाँ हम परंपरा की चर्चा कर रहे हैं तो शास्त्रीय परंपरा होनी चाहिए,
1: ताल से
2: सुर ताल के साथ, संगीत के जो सात स्वर बताए गए हैं उनके अनुसार, जो वाद्य यंत्र बताए गए हैं उनके अनुसार हमको हमारे संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जैसे ढोलक है, झाल है, मंजीरा है, मृदंग है, तानपुरा है, हारमोनियम है, इस प्रकार से जो हमारा प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, ना कि जो मॉडर्न आजकल जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर के अनुसार जो हमारे म्यूजिकल हैं उस प्रकार से प्रयोग नहीं।

0: हिलाना चाहिए,
1: उसका प्रारूप ना बदले।
0: क्यों? जैसे शिवजी की चर्चा कर रहे हैं तो जब शिवजी का ढमरू बजा तो उनसे अनेक प्रकार के सुर ताल निकले
1: जी,
0: अनेक प्रकार के। अब संगीत की चर्चा में भी कहा गया कि जो सामवेद हैं, सामवेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा बाद में जो संगीत के सात स्वर हैं वह बने
1: जी,
0: और शिव जी के जो डमरू हैं उनके नाद से। तो नृत्य के द्वारा जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, समन्वय करके देखते हैं, तो नृत्य के द्वारा शरीर की साधना हो जाती है। आप देखिए जो नृत्य करते हैं, कोई भरतनाट्यम, तो उनका भाव होता है कि हम नृत्य करते हुए कैसे भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पण करें, कैसे भगवान जी के भाव भंगिमा को प्रदर्शित करें। जब कोई शिवतांडव करता है तो तांडव जैसा स्वरूप अपने शरीर पर उतार लेता है, शिव जी जैसा भाव वह अपने कला के द्वारा लोगों को दिखाता है, और उस कला के द्वारा हम अपने अंदर भी उस ऊर्जा को, यानी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उन ऊर्जा को हम अपने अंदर समाहित करके हमारे मन में भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति जो विश्वास होता है वह जागृत हो जाता है। अब संगीत हुआ, संगीत और भजन, जब आप सुरताल में संगीत को भजन से जोड़ेंगे तो उन भजन को गा करके भी आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। नवधा भक्ति में कहा गया कि भगवान का कीर्तन भी संकीर्तन भी करिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी भयो तार उपारा। यदि आप विशेष मंत्र नहीं जान रहे हैं, विशेष पूजन पद्धति को नहीं जान रहे हैं, तो आप भगवान का भजन ही करिए। भजन कीर्तन करते करते एक दिन आप स्वयं जो है आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी, और भगवान के कीर्तन संकीर्तन में आप लग जाएंगे, भक्ति में जुड़ जाएंगे। और जब आप संगीत करेंगे, आप जब भजन गाएंगे, तो वही जो है संगीत और गीत के द्वारा आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। तो यह श्रावण मास में यह
1: विशेष रूप से
0: जी विशेष रूप से करना चाहिए,
1: भजन कीर्तन करना चाहिए
0: जी। भजन कीर्तन यदि आप किसी आचार्य के निर्देशन में कर रहे हैं तो उनको पूजा का फॉलो करना चाहिए
1: जी।
0: उसके बाद जो बीच में है आप भजन कीर्तन, यदि आप किसी पूजन पद्धति में न जा रहे हो, किसी शिवालय में न जा रहे हो, तो सामूहिक रूप से एकत्र होकर के, जैसे हमारी जो परंपरा रही है भारतीय परंपरा, विशेष करके जो श्रावण मास में बिहार और उत्तर प्रदेश में, इस श्रावण मास में अनेक पर्व त्यौहार होते हैं जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं।
1: हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आता
0: जी,
1: है,
0: नाग पंचमी है। तो श्रावण मास जल का
1: श्रृंगार से भी जोड़ता है
0: जी जी जी जी। उसी पक्ष को मैं यहाँ रख रहा हूँ कि श्रावण मास, जब हरियाली तीज की आप चर्चा की तो प्रारंभ में मैंने कहा कि जब धरती पर बारिश की जब फुहारें पड़ती हैं तो उस बारिश के द्वारा चारों ओर हरियाली छा जाती
1: जी।
0: है। तो हरियाली का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में भी उस हरियाली को,
1: प्रसन्नता
0: को लेकर आएं और हमारा जीवन भी हरा भरा हो। तो कैसे हरा भरा होगा? कि आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और मन में जो राग द्वेष क्लेश हो उसको आप दूर करें।
1: तो एक नई ऊर्जा के लिए महिलाएं मेहंदी लगाती हैं
0: जी, जी, जी।
1: चूड़ियां खरीदी जाती हैं हरे रंग की
0: जी, जी। तो हरियाली तीज का जो महत्व है कि विशेष करके कि हरियाली तीज में महिलाएं हरी साड़ियां, हरी चूड़ियां, मेहंदी और जो 16 प्रकार के श्रृंगार बताए गए हैं
1: जी,
0: उन सबसे विभूषित तो होकर के एकत्र होकर के सामूहिक रूप से पारंपरिक गीत गाते हुए, जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मॉरिशस में भी सावन महीने की हरी हरी डाली, डाली पे झूला डाल, झूला झूले भवानी।
1: हाँ।
0: और इस प्रकार से गाँव में जहाँ देवी माँ का मंदिर होता है वहाँ नीम का पेड़ होता है
1: जी,
0: तो महिलाएं, ये महिलाओं के द्वारा पारंपरिक गीत है, कोई बड़ा सिंगर नहीं बना है, लेकिन गाँव में आज भी बुजुर्ग महिलाएं निमिया के दाढ़ मैया लावेली झूले ओवा की झूली झूली ना, मैया गावेली गीतिया की झूली झूली ना। तो ये सीधे कार्यक्रम से आपका मिल रहा है गीत से, तो ये गीत आज भी पारंपरिक रूप से, जिसे हम पचरा बोलते हैं अपने ग्रामीण भाषा में या देहाती भाषा में जो गीत महिलाएं गाती हैं, तो ये सब एकत्र हो करके प्रकृति के
1: जो
0: प्रति
1: वो महसूस करती हैं उसी को
0: जी जी
1: प्रकृति भावों में
0: जी
1: ढालती
0: गरजते हुए मेघ को लेकर के, चमकते हुए बिजली को लेकर के, और इस प्रकार से प्रकृति के प्रति सम्मान के भाव को लेकर के सारी महिलाएं मिल करके गाती हैं। और जब उन गीतों को नवयुवतियाँ यानी नौजवान लड़के

0: हो या लड़की हो, जब देखते हैं तो प्रभावित होकर से उसी परंपरा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी चाची इस परंपरा को निभाई है, तो श्रावण मास में हम भी संतुलित जीवन, मर्यादित जीवन जीते हुए अपनी उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, न कि वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाएंगे
1: जी।
0: हमारे जो पारंपरिक परंपरा है उसमें मेहंदी लगाना, चूड़ी बिंदी और जो साड़ी पहनना,
1: परिधान
0: जो होता है, पारंपरिक परिधान जो होता है, इसको पहनते हुए वे सारे लोग श्रावण मास को बड़े ही उमंग के साथ मनाते हैं। अब इसमें हरियाली तीज के बाद जो होता है नाग पंचमी, आप देखिए श्रावण मास में हम लोग जल का सम्मान करते हैं। जल का सम्मान कहाँ हुआ कि आप देखें कि कांवर यात्रा जो है मॉरिशस में हम लोग महाशिवरात्रि पर मनाते हैं
1: जी,
0: लेकिन भारत में श्रावण मास में पूरे मास कांवर यात्रा करते हैं। और जब सभी कांवरियाँ एकत्र होकर के एक वेशभूषा में, गेरुआ यानी सैफ्रोन कलर में एक वेशभूषा में पहन करके और जल कंधे पर उठाते हैं
1: हाँ।
0: और जहाँ जहाँ जो सिद्ध शिवालय हो या ज्योतिर्लिंग हो या अन्य जगह पर भी वह सामूहिक हो करके, सामूहिक रूप से एक साथ मिल करके वह जल जा करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कांवरिया जितने सारे होते हैं, और वो सारे कांवरिया एक साथ हर हर महादेव का जय घोष करते हुए, ओम नमः शिवाय का गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: सामूहिक भजन कीर्तन करना, प्रार्थना करना एक विशेष महत्व होता होगा
0: जी,
1: उस सामूहिक तका, ताकि वे आगे और बढ़ पाए।
0: जी जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और जो भी श्रोता सुन रहे हैं कि आखिर सामूहिक रूप से हम क्यों करते हैं
1: जी,
0: अकेले क्यों
1: ना अकेले बैठ
0: जी, अकेले क्यों नहीं करते हैं,
1: अकेले कर ले।
0: तो कहा गया कि अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप समूह में जाते हैं और सामूहिक इकट्ठा होते हैं, एकत्रित तो होते हैं, वहाँ कोई
1: भजन
0: कीर्तन करते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है
1: जी,
0: अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं है, तो यह सामाजिक एकता को पिरोता है, यानी यूनिटी को दिखाता है। सामूहिक भाव यह होता है, और इसे कह सकते हैं कि नहीं, इससे हमारा जो समाज है और समृद्ध और विकसित होता है कि सामूहिक रूप में चलो हमने पूजा किया, सामूहिक रूप में भजन कीर्तन किया,
1: सब भेदभाव भूल जाते हैं,
0: सब भेदभाव मिट जाते हैं,
1: आपसी झगड़े भी समाप्त हो सकते
0: जी जी है। और यह इसका श्रेय जाता है हमारे इस श्रावण मास में, मास पर्यंत जो चलने वाले पूजन पाठ, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, इसका श्रेय जाता है। तो ये सारे मिल करके जब हम लोग कांवरिया ओम नमः शिवाय का या हर हर महादेव या कोई भी कांवर का गीत हो गाते हुए लंबी दूरी और परिश्रम करते हुए अनुशासन में, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य होता है कि श्रावण मास में हम भोले जी पर जल चढ़ाएंगे, भोले जी के
1: भोलेनाथ को
0: प्रसन्न करेंगे। बारिश का मौसम होता है, भीगते हुए भी होते हैं, लेकिन इसका न प्रवाह करते हैं, तो एक ही भाव होता है कि नहीं, हम आराध्य देव के प्रति समर्पित भाव से अपने कर्म को पूर्ण करें। तो यह श्रावण मास हम सभी के लिए भी, मॉरिशस में भी जितने सारे लोग हैं, गांव-गांव में देखिए सभी लोग श्रावण मास आयोजित किए हुए हैं,
1: वेद पाठ हो रहे हैं,
0: हर मंदिर
1: भजन
0: में
1: कीर्तन हो रहा है,
0: भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक, रुद्र मंत्रों का पाठ हो रहा है, और अनेक
1: सामूहिक जुटाव हो रहे
0: जी जी, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं कहीं मंदिर में आप देखें मास पारायण, रामायण का जो मास पारायण होता है मानस का
1: जी,
0: किसी किसी मंदिर में मास पर्यंत मास पारायण का कार्यक्रम रखा गया है। तो यह अवसर देता है कि हम इस मास में अपने आप में परिवर्तन करें, और शिव जी का जो तांडव है, जो नृत्य है, जो गीत है, यह हर व्यक्ति के प्रति यह सिखाता है कि आप मन की साधना, तन की साधना और ज्ञान की साधना, तीनों को आप शिव पूजन से प्राप्त कर सकते हैं, शिव के द्वारा
1: आदि गुरु को प्रसन्न
0: आदि गुरु को प्रसन्न करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें कि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, ज्ञान गंगा है, और त्रिशूल है जो समन्वित रूप है, हमारे अंदर जो तीन गुण होते हैं सत्व रज तम, तो तीनों को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए, और तब जाकर के हमारा जीवन भी यह

0: संतुलित हो जाता है।
1: श्रावण मास में व्रत का बहुत महत्व है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए।
0: श्रावण मास के अलावा हर पूजन पाठ में, हर मास में जब जो कोई विशेष पर्व त्यौहार होता है तो व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आम दिनों में जब आप व्रत करेंगे तो कोई उसका विशेष महत्व नहीं होगा, लेकिन जब विशेष दिनों में हम व्रत करते हैं तो आपके मन में ऐसा भाव जागृत होता है कि नहीं, हम श्रावण मास का व्रत रखे हैं। और जब व्रत रखे हैं तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे और उनका नाम जाप करेंगे। यह तभी संभव हो पाता है जब आप संकल्प लेकर के उस कार्य को करते हैं। और वह संकल्प क्या होता है?
1: जब हम कहते हैं तो प्रभु के साथ वास।
0: जी जी,
1: ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। कि आप अन्य विचारों को छोड़कर प्रभु के समीप होते
0: जी हैं। जी जी, तो जब आपने व्रत लिया तो अब व्रत का कैसे हम इसको प्रारंभ करें, तब दूसरा शब्द उपवास आता है
1: जी।
0: जैसे आपने सोमवार का व्रत किया, आप एक प्रश्न भी किए कि सोमवार का, तो वैसे तो श्रावण मास प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, विशेष है और आत्मकल्याण के लिए हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन उसमें विशेष जो दिन होते हैं, श्रावण सोमवार, श्रावण सोमवार का महत्व यह है, जैसे एक तो ज्योतिषीय अनुसार सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और सोम
1: भगवान शिव का
0: और शिव जी का
1: माना जाता
0: और
1: है।
0: उस दिन सभी रूपों में माता पार्वती के साथ शिव जी विराजमान होते हैं
1: जी।
0: और सोमवार का व्रत करने का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाए, जैसे महाशिवरात्रि का व्रत जो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सोमवार का भी व्रत करने से हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है
1: जी।
0: और उसमें और भी विशेष विशेष है, जैसे सोमवार है, नाग पंचमी है, श्रावण मास, एक तो प्रकृति का सम्मान करना, जल का सम्मान करना, कांवरियों के द्वारा यह संदेश जाता है कि नहीं, मनुष्य अपने जीवन को भी मर्यादित रखो, डिसिप्लिन लाइफ का पालन करो। और भजन कीर्तन की जब चर्चा होती है तो वैसे भजन कीर्तन भगवान को गा करके प्रसन्न करें कि जो हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर दे। कैसा परिवर्तित? ताकि हमारा कल्याण हो। और इसके साथ साथ पेड़ पौधों की भी, श्रावण मास में पेड़ पौधों की पूजन का भी विधान बताया गया, जैसे श्रावण मास में हम बिल्व वृक्ष का बिल्वपत्र भगवान पर चढ़ाते हैं, तो बिल्व वृक्ष की सेवा, पीपल वृक्ष की सेवा या तुलसी वृक्ष की सेवा। इसके साथ साथ आप देखें पेड़ पौधों से लेकर के नदियों से लेकर के, अब ये नाग देवता, नाग पंचमी, आप देखें कि हमारे यहाँ नाग देवता को भी गले का हार है, उनको भी पूजन का विधान बताया गया कि नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता की पूजन करें। इसके बाद अंत में श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्मा और संस्कृत दिवस के रूप में यह श्रावण मास समाप्त होता है। और इसके
1: तो
0: पूर्व
1: तो रिश्तों को ही
0: जी जी इतना
1: समर्पित है।
0: जी जी सुंदर, इतना भाई बहन का रक्षाबंधन त्यौहार, तो यूँ कहें कि श्रावण मास हम सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी मास हैं। और जितने दिन बीत गए और जितने दिन आने वाले हैं, उन दिनों में जो श्रोता बंधु आप रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने स्वयं को बदलें, बच्चों में परिवर्तन कराएं, परिवार में मिल करके आप संकल्प लेकर के नहीं, बाकी शेष दिनों में हम अपने सनातन परंपरा को जीवंत रखेंगे और अपने आप का कल्याण करेंगे। इस प्रकार से भाव लेकर के अन्य दिनों में भी आप जो शेष हैं भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं।
1: यहाँ पर श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के बिल्कुल करीब रहता है
0: जी जी,
1: जैसा सुना है हमने
0: जी जी,
1: तो इसका कोई विशेष प्रभाव होता है व्यक्ति पर?
0: विशेष प्रभाव यह है कि चंद्रमा और श्रवण, श्रवण का जैसे प्रारंभ में ही अर्थ बताए सुनना
1: जी,
0: तो चंद्रमा और सूर्य सारी जो घटनाएं घटित होती हैं चंद्रमा और सूर्य के आधार पर ही। जब हम पंचांग देखते हैं तो पंचांग चंद्रमा पर आधारित होता है
1: जी।
0: और नक्षत्र तो प्रतिदिन खगोलीय घटनाएं घटते रहती हैं आकाश में, जिस प्रकार से जिसका जो नक्षत्र होगा
1: जी,
0: तो श्रवण नक्षत्र में विशेष करके जो उस नक्षत्र के जो देवता इंद्र हैं, तो इसमें वर्षा का मौसम होता है। और चंद्रमा तो मन को शीतलता प्रदान करते हैं, मन को शांत रखते हैं
1: बिल्कुल।

0: और शिव जी के भी मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो उनके पूजन करने से यानी कि शिव जी के पूजन करने से एक तो चंद्रदेव भी प्रसन्न होंगे और श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं वह भी प्रसन्न होंगे। और हर व्यक्ति का जन्म 27 नक्षत्र होते हैं, उन्हीं नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में जन्म होता है
1: जी।
0: अगर जो व्यक्ति श्रवण नक्षत्र में जन्म है तो उनके अनुसार भगवान शिव की पूजा करें, सभी का कल्याण हो सकता है, मात्र एक का नहीं सभी का। जैसे मैंने सप्ताह पूरे मास में बताया कि जब से श्रावण मास प्रारंभ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार करें, अन्य दिनों में पूजन न करें, आप किसी भी दिन पूजन करते हैं आपका कल्याण होगा। विशेष करके सोमवार का दिन, विशेष करके सोमवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यह भाव रख करके कि भगवान शिव का हम पूजन करें, शिव परिवार के साथ उनका पूजन करें, हमारा कल्याण अवश्य होगा।
2: माफी चाहती
0: हूँ। जी।
1: अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं
0: जी।
1: तो जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या विचार देंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी रहे, हमारी परंपराओं को संजोती रहे, इसके लिए एक विशेष विचार आपका?
0: तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देखें, जब हम अपनी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को लेकर चलते हैं तो ऐसा नहीं कि पूजन पाठ और अन्य धार्मिक कार्य करें, नृत्य और संगीत का कोई महत्व नहीं है, हमारे जीवन में उसका ही बड़ा महत्व है। संगीत के द्वारा जुड़ करके आप सुर लय और ताल के द्वारा, भजन के द्वारा और भगवान को आप अनेक प्रकार से चिंतन मनन करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सभी अभिभावक जो माता पिता सुन रहे हैं, अब अपने बच्चों को यह शिक्षा दें कि आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, कम से कम उनको हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाएं, एक लोटा जल चढ़वाएं, न भी जा पा रहे हो तो घर में कम से कम आप उनको बताएं कि यह श्रावण मास बड़ा ही पवित्र मास है, हम इस मास में व्रत उपवास करते हुए भगवान का पूजन करेंगे और उससे हमारे सभी परिवार का कल्याण होगा।
1: एक विशेष महत्व रखता है ये मास, तो इस हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा है हमारे, और इसमें इतने त्यौहार आते हैं। तीज का त्यौहार यहाँ पे बहुत कम लोग मनाते हैं, पर अब शुरू हो चुका है तीज का त्यौहार भी, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो ऐसे ऐसे त्यौहार जो हैं हमारे रिश्तों को और सुदृढ़ बनाते हैं
0: जी।
1: तो आज की युवा पीढ़ी जो रिश्तों से दूर हट रही है, अपने माता पिता की ओर ही बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कई माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो रिश्तों को संजोने का भी एक जरिया है।
0: जी बिल्कुल
1: इस पर आप
0: तो
1: जोड़ेंगे?
0: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि आप शिव परिवार को देखें
1: जी।
0: अगर आप रिश्तों को समझना है तो आप देखें कि गणेश जी भी विराजमान है, कार्तिकेय जी भी हैं, माता पार्वती भी हैं और शिव जी भी हैं। अब उनके वाहन को देखेंगे तो सब एक दूसरे के विरोधी हैं, चाहे बैल हो, वृषभ हो या शेर हो, सिंह हो या मोर हो या सांप हो या मूषक हो, लेकिन शिव परिवार ही एक ऐसा परिवार है जहां सभी सामंजस्य बैठाते हुए बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम भी अपने परिवार में कभी आप कभी परेशान हो सकते हैं अपने परेशानियों से, कभी अच्छा समय नहीं होता है, फिर भी परिवार को एक सूत्र में बांध करके शिव परिवार से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में उतार हो चढ़ाव हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, लेकिन हम परिवार को एकत्र संगठित करते हुए हम अपने जीवन को आगे ले जाएंगे, वहीं प्रेम बना रहेगा, वहीं आप आगे विकास कर सकते हैं। यह श्रावण मास भी हमें संदेश देता है कि आप देखें, श्रावण मास के महत्व को समझें, शिव जी से शिव के परिवार के द्वारा समझें और अपने परिवार को उस स्वरूप को उतारने का
1: प्रयास
0: करें।
1: बहुत सारे अच्छे विचार आपसे हमने सुने आज युवा पीढ़ी के लिए भी, और श्रावण मास का जो महत्व है आप सब के साथ आपने साझा किया, बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हम आज के कार्यक्रम में, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं आपको और धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी टीम को भी जिन्होंने ये कार्यक्रम

कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का प्रबंध किया। आज रेडियो मॉरिशियस के RM3 से इतना ही। एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। अंजू को आज्ञा दे, शुभ संध्या।

की मांग की है। उनके अनुसार अपने वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक मॉरिशस में वेटलैंड्स के संरक्षण में एक कमजोरी का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका ये भी दावा है कि 2009 में ईएसई स्टडी में सूचीबद्ध 200 से अधिक वेटलैंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज बेन के हेनेसी पॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान

0: चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। खून की कमी अभी भी पाई जा रही है और निगेटिव ब्लड ग्रुप की विशेष रूप से भारी आवश्यकता है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा 30 अगस्त को बॉम्बू के विलेज हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान के तहत पूरे देश में कई रक्तदान शिविरों के साथ एक अन्य आयोजन 4 सितम्बर को निर्धारित है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आम जनता से रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और तेहरान अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अमरीका ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अस्थायी समझौते के करीब पहुंच रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 3 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: More music in the RM3 Radio.

0: सभी श्रोताओं को एक बार फिर विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आपको पता है कि आज हम बात करेंगे उन कानूनी बातों के बारे में जिससे शायद नहीं जानते हैं, जिसके बारे में शायद आप बहुत सारे सवाल अपने मन में रखे हुए हैं। आज का वैसे हमारा शीर्षक है अडॉप्शन, किसी को गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना। अब अडॉप्शन क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, ये सब जानने के लिए चलिए हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का हमारे स्टूडियो में, हमारे वकील कपिल देव रघुवंदन जी। कपिल देव जी नमस्ते
1: जी,
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत पा।
1: शुक्रिया।
0: तो आज के जो कार्यक्रम बाकर में हमने शीर्षक रख ले हैं जा अडॉप्शन।
1: हाँ जी,
0: कैसे बोल जाए लड़का गोद लेवल जला, हमने के अडॉप्शन यही है एगो लड़का के गोद लेवे की।
1: हाँ, ओकर नमो है अदुप्शों गोद लई के हैं। हमने के देखिला सा बहुत सा रीजों है एगो आदमी के ओकरा गोद लेवेला एगो लईका के। तीन कार जो हमने के सोसाइटी बा रहल आज तक बा, दूसर देश से भी आवेलन सन, हमेशा एगो लईका ही के अदुप्ति करे खोजेलन सन। बड़ा आदमी के भी देखब सा कैसे सगबा दुप्ति करे।
0: हाँ, सवाल आज हमने करब जा कि खाली लईका जब होइला बोलीला जा अदुप्शों, तो अदुप्शों वा जोन है पहला तो उकर जोन शब्द बा अदुप्शों गोद लेवे की, एकर मतलब कुछ है अपन नाम दे के, एगो घर देके, ओकर जिम्मेदारी उठाए के, कुंची आवेला ई अदुप्शों
1: आले। अभी थारेल देखब सब पहला स्प्लिके करब सब कुंच अदुप्शों में और कर रीजों काहे आदमी अदुप्ते करे, तब देखब सब तू कैसे बोलता काहे गो अदुप्ते करेला एगो आदमी। जब अदुप्ते करेला कैसे ओकर नाम मिलेला, जोन आदमिया अदुप्ते कर ले बा ओकर ओकर नाम, बस ओकर बाप के दूसर नाम रहल, कब अदुप्ते वेला सखी ओकर नाम सहजे करे या उही नमुआ सखी रखे, कैसे उ मेम की दूसर लड़का के जन्म ले ले बा, ई जोन आदमिया के अदुप्ते करी कैसे कैसे सब चीज धन दौलत सिक्सेशियों माटी घर सब में पैसा में कैसे एगो जेगचिए बनेला, एकरा सब देखब सा मैं अभी के लिए
0: पोसेजिया है ओकर
1: पोसेजिया देखब सा ओकर पोसेजिया एगो आदमी के काल होय हमनी के भाई या बहन के मन है कि मजे एगो अदुप्ते करे के एगो लड़का कौन सी करे के चाहेला, ओके कौन कौन पापिए चाहेला, कहाँ जाए के चाहेला, ओकर कौन डिमांड है, ओकर एकरे नाम एगो पोसेजिया जो अदुप्शों करल जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी के देखिला सा कौन रीजों है अभी कौन मजे एगो है आदमी अदुप्ते करेला एगो लड़का के, या एगो खूब अदुप्ते करे एगो लड़का के छोकरा हो या छोकरी। हाल जोन एगो है एगो खूब है एगो है शादी कर ले वंशन बहुत बरिस से होल बा, कोनो के दे पाँच छः सात बरिस हो गल बा, दसों बरिस हो गल बा, देखबा उ ओके लड़का नहीं होता। अब मेम की देख अभी के लिए है बा हमने के सब काली थी मजे मुदेन साइंटिफिक बा एगो आदमी के मन बा लड़का हो के कैसे मजे दिमासूस करे लन सन आके जाके बस ओके फर्टिलाइजेशन कम बोते हैं जाके वो देख आदमिया ओके मजे को लड़का
0: सके IVF हुएला आजकल देर कुछ हुएला।
1: हाली तो हमने देखी ना सा बहुत सीखी कुमा जब बरिसन चल जला एगो आदमी के कुमा जे लड़का नहीं हुएला, लड़का मजे काहे ओकर बायोलॉजिक में आर ओकर लाज उ आदमिया आवांसे हो गल बा, बस एगो सेतन लाज हो जाला तो एगो आदमी के देखब एगो सेतु गो मैडम के ओके लड़को

0: नहीं हुए ला बस कि एक बार आदमी तो बोले लाख मजा पहले तो रह लेगो जमाना कैसे 50 बरिस हो गए एगो आदमी के ऊपर तो कि मुश्किल हुए एगो लड़का हो के मैं अभी के बा कोनो के तभी एगो मिश्य के भाई एगो बोले हंसन पर के मजे कैसे सुसंत हो जाला बोले ओकर को मजे सांस हो के बाद बड़ी जीवी सिलवा कोनो के देख भी सुशांत सैंक में हमके दही ले कही देख लिया सुशांत जी सा के एगो मैडम ओ ओके लड़का हो गए मिसिल में हम देखते हैं से आदोपशो के आदोपशो में देखब बियोलॉजिक में शरीर के लिए ओ मैडम नहीं सकेला को मजे एगो लड़का पैदा करे बस ये लाज आवा से हो गल बा अब हमने देखेला सर मालगे ट्रीटमेंट बा मेजिकल ओ में भी आदमिया के मजे कभी नहीं होवेला ओके कुमजे नहीं क्यों मजा गाँची है हम एक बार मैडम कुमज का बतिया लेन इन्हें उन्हें कर आदोषों के विषय में तो अभी सकता कुमज अभी तो आजकल बहुत सा सब भगवान एक मजे मिजिकाल स्वीप करे एगो लड़का हो के बोले ना ये सही कर ली भैया मिसिल में कुछ नहीं मिलता तो उसन आदमिया के ओके मन बा एगो लड़का आदोपते करे के तो देखे ल हियाँ मेम की बियोलॉजी मेम के ओकर ट्रीटमेंट बा जोन मिजिकाल वो सब बा देख हुआ ओके लड़का नहीं हुए ला मिशे और मैडम कौनसीव कौनसीव जैसे हमने बोला सर नहीं होता हिंदी में ओके देख बन नहीं है हुए ला पुते को पे फुल्ली कुमा जे लासंते सब उब्लिमन से बा तो वो आदमिया के लड़का नहीं हुए ला जब लड़का नहीं हुए ला तो उसे उकरो दे इच्छा है कुनो के ते देखब से देखर तारे घर बा धन बा दौलत बस ओके भगवान सभी चीज दे ले बा
1: छोड़ के जाके कर खाती
0: हाँ की कर खाती ना सोचेला अरे ये मरी गो बिचारी देखब सब कैसे वो देखी है
1: और के नाम आगे बढ़ाई खाती
0: हाँ और दूसरा देखब का होला एगो आदोपते करेला एक बान आदमी ओकर लासंते नहीं बा जोन है जोन आदमियों के आदोपते करता ओकर लासंते एगो हो गल बा एगो या फिजिक में एकपासिते बा या ओकर शरीर कोरेक नहीं बा या ओकर खून उन बा या ओकर माला दूध या कौन लासंते हो फिजिक में मेजिकल में जैसे मैंने बोलिया सर ओकर लासंते खातिर ओ देखब स्त्रिया के लड़का नहीं सकेला हुई तो ओकर खमेस पूछेला अरे कब हम एगो ओकर सपना हो कब हम के कुमा जो ओके कुमा जे एगो लड़का हुई आर तो देखब बहुत के जोन पोष बा परिवार में बा भाई बहन बा तो ऊ देखब बहनिया के सी बुझो लड़का नहीं होता तो एगो लड़का बा ऊ भैया या बहनिया के दूसरा के
1: दे देवेला
0: हाँ नहीं ओके का से ऐसन प्यार बतावेला ऊ लड़का या ऊ बतावेला ऐसन प्यार ओके रहेला लीमन से कौन देख लेवेला देखभाल करेला तो सोचेला ये लड़का के हम काहे नहीं आदोपते कर देला हमरे लड़का कुमा जे हो बापस हमर त लड़का नहीं बा
1: हाँ।
0: देख ला मैं अभी देखब सो कर कौन सतमा कैसे आवेल है नहीं कि सकबत थोड़ा मन भाई लड़का के आदोपते करे के आलो अनमन कुमा जे ऐसने आदोपते कर ले ओकर एगो पोसे जे वो अभी देखब सर तो हियाँ पहले रहा इसे है देखब कुमा जे एगो है फूफू रही या एगो मौसी रही तो वो मौसी रही बोली मजा है काजी हम जाने मर त लड़का नहीं बा तोर त लड़का बा उतना त लड़का बा पाँच गो बा देखभाल नहीं तू सकबे करे सबे के काहे ना हम के एगो आ दे देते हम आदोपते करे तो अब बोले कहानी लड़का लोग मानी कि नहीं मानी बस गो लाज अभी देखब सभी तो हुआ अब लड़का के कब हो मैं छोटा रही तो उ बोली नहीं जान ले हमके बड़ी प्यार बतावेला हमके बड़ी मोहब्बत बा ओकर संगे हम खुशी रहती काल जे हम मर जाते तो उ लड़का को मजा आ रहा ओकर नाम देखब सभी कैसे हो तो हियाँ देखब जोन ओकर परिवार में एगो लड़का बा उ लड़का के आदोपते करेला बस कि ओकर माँ बाप ओके पेमिशवा देवेला जैसे हमने बोले ना कोनो बहुत बा एगो बहन
1: भाई बहन के बीच
0: भाई बहन हाँ। में ओके देखा था वो आदोपते करता ओकर नेवे के या ओकर नियस के ओके मन
1: घर के लड़का घर में रही
0: घर के लड़का घर में रही तो हियाँ सोचा था कैमे बड़ा हुई तो चल जाए फिर नहीं
1: हाँ।
0: मैं अभी के लिए तो वो सोचा था कि ये हमर मजा घर के है खंबा है चाहे ला एक दिन बड़ा हो हमके देखी और हमने के देखी ला सब पहले के हमने के रहल दादा दादी
1: हाँ।
0: दादा दादी के मजा कोई नहीं बुरा हो गल वंशन तब बोले काहे न मजा है कभी हो जला ओकर मजा माँ या बाप गुजर जला तब बोले तो अकेले कैसे जिए कोई का करी मैं तो कर माँ बाप के नमुआ में रहल ना और से तो कर बाप के नमुआ में रही तो हियाँ बोली नहीं देख तो नाम दूसर बा हमार नाम दूसर बा अभी तो हमार बेटी रहल सिपाका रहल गुजर गल हम आदोपते कर देला हमार नाम में देला ओकर नाम में मतलब ओकर पति के नाम में अब आई तो देख ला इहो हुए ला जहाँ हमने की दादा दादी वो लोग भी आदोपते करेला एगो लड़का के जो परिवार
1: में लेकिन कपिल देव जी एगो एगो सवाल बा अभी हमने बताया थी जगह से आगे के जमाने में लड़का के आदोपते करता था तो वो आदोपशो वो पापी वो नहीं हुआ था जैसे

0: मान ला एगो घर में आगे तो धीरे धीरे लड़का होता है दस बारह गो लड़का होता है तो मान ला जब कोई के लड़का नहीं बा दस गो बारह गो लड़का बा ओकर में से एगो लड़का जोन बा कोई संगे आबिची हो जाला तो संगे रहते रहते रहते दुलार करते करते करते लड़का चल जाला हुए रहे तब सब कोई जाने ला कि हाँ इधर हमने के लड़का है लेकिन फिर भी उ लड़का के छोटा से पोसले होवन कोई मान लगो को दादी पोसले बा तो लड़का छोटा से जाने ला कि वो कर बा हाँ लेकिन लड़का हुए बड़ा होला ओकर नाम अलग रहेला सब कुछ अलग रहेला वो खाली हुआ जाने ला ओकर माँ हा बाद में जब बड़ा होके जाने लन जा कि जब लीगल जब देखीला जा हमनी कानूनी तौर पे तब पता चलेला कि है लड़का जोन बा ओकर माँ बाप हुआ बा और उसके आदोपते भर ले बा कोई और तो आगे में इस सब आदोपों के पापियों नहीं रहत हल उतना
1: तो जाने ला काहे हमनी के कानून जिजवित सा हुई से बा आज से नहीं हमने के कुछ सिविल मोशिया जोन रखल तो हमने ला फ्रांसे को मजे हई अनले हई से ई देशवा में मैं आमेजिया कब आल बा संसे होते गल बा तो पितार अदोप्शन कब आल तो जाने लो एक बान आदमी जैसे रहल हमने के हई माँ पर हई रहल दादी या नानी सब रहल तो उतना लेकुल उल्लेकुल नहीं कर रहल सन तो अपन कानून नहीं जान रहल सन खाऊ ले कोई की कौन दिमाश करे के चाहेला कौन लेफे है कौन ची करे अरे कैसे तो अभी प्रोग्राम तो ऐसे करत नहीं एक बार भाई बहन लोग नहीं जानत हुई कौन ची कैसे करे कौन पोसेजे है एगो कुमार
0: शादी कर लेना घर में रहता तो बाद में पता चलल कि उकर असली माँ की हमके पता चलल कि जहाँ पर रहलन उकर माँ माँ माँ बोलत रह बाद में पता चलल कि मती तो हई चचवा के उकर उकर उकर जो चेहरा बा एगो दूसर दादी से मिलल जुलता था तब उकर बहिन सब कोई परिवार में तब बाद में पता चलल कि लड़का जोन रहल उ दूसर जना के रहल मैसलमा उकर नाम जोन बा उकर हवे नाम बा जोन माँ बाप दे लेबा और बाद में बहुत साल के बाद तब दादीवा जाके लीगल जोन काम रहल अपन जितना घर ओकर नाम नहीं पर नाम में दिखला के नहीं कर घर द्वार ओकर नाम करलन नाम ओकर हवे रहल जोन रहल मैं समा घर द्वार उनकर नाम करलन लेकिन छोटा से उनकरे मामा ना तलन
1: हाँ हाँ खूब बोल है तो पहले कब नहीं रहते ओकर नाम में नहीं डाले खाली जाके को मजे सब चीज जोन रहल ओकर नमुआ में डाली कि कम कौन जगह लड़कवा में मैं सिलमा हई मऊआ जो ना डूबते कर ले या दादी हो या कोई भी ओकर नाम जी फिर बा लड़कवा से
0: हाँ।
1: खाली ओकर रगल बा सिलमा हम देखब से ओकर एप्लीकेशन कौन सी है कभी गो एगो आदमी के आदोपते करब तो कैसे ओकर हक दे के चाहे
0: अभी तो अलग बा अभी तो सब कुछ कागज से होला
1: ना यार अभी तो सिर्फ ई भी नहीं हमने के देख का हुआ था हमने के कानून अभी हमने के मिनिस्टर दे ला फार्म है एन एगालिटे ला लुआ ना था है आदोपशो में नया नया चीज आ हुआ था अरे वो बोली के वो भी है नहीं बा हमने दूसर प्रोग्राम में आपसे यही में बता आपसे वो लंबा प्रोग्राम है तब कैसे अभी के हमने के मिनिस्टर के है जुन बा अरे पहला चीज अभी वो लड़का के तोरा मन बा आदोपते करे के कहाँ जाइ बोले क्वा के खोजे एगो चीज है खोजे के बोले का हमने के नहीं बा एगो हजिस अनमन की कुमार लिखल बा जाने रे हई घरवा में आउ तू एगो लालिश बा उ लड़का के तो मन हो आदोपते करे के हाँ हमने के बा शेल्टर हमने के बा क्रश तो कैसे भी कानून नया आना था कौन कौन प्रोसीजर करे के चला कैसे आदोपशो सगब करे और कौन ओकर हक था जोन लड़का हुआ बा मैं हमने के लालिश आज तक नहीं बा आका तू एगो आदमी के ओकरे खोजे के एगो लड़का जोनो के मन बा आदोपते करे के फासिल नहीं है फासिल नहीं है कहाँ बा उ लड़कुआ ओके जोन मन बा ओके आदोपते करे के
0: चाहना जाके लड़कुआ के खोजे के कैसे खोजब चा
1: अरे कैसे खोजब एगो लड़का
0: एक जना के एगो लड़का चाहला हो सकेला उ लड़कुआ में कुछ चीज खोजता जैसे कि खोजता कि लड़कुआ के जोन ओकर ओकर ओकर ओकर शक्ल सूरत बा वो लोग से मिलल जुलल रही ऐसे ऐसे भी रहला ढेर कोई छोकड़ी खोजेला ढेर कोई छोकड़ा खोजेला तो ये सब ढेर कुछ है
1: हाँ नहीं यार जैसे हम तो बोलिए पहला चीज एगो लड़का खोजे के आदोपशन करे के फासिल नहीं है बस की पहला चीज यही हमने के कानून में है कहाँ बा लड़कुआ यार एगो आदमी तो इसने खाली थे लड़का नहीं खोजे ना
0: हम तो बड़े पूछते कहाँ वाले को
1: हाँ कहाँ वाले को तो तब ना ओके आदोपते करी तो बड़ी मुश्किल हुएला यही से देख बा तीन कार जो आदमी के मजा आदोपते करे वो लड़का अपने के परिवार में मैं दूसरा चीज हम नहीं देखब सब पोगवा में आज नहीं कब एगो आदमी दूसर देश से बा दूसर देश से आके हिया आदोपते करत हो सन एगो लड़का जो मवेशिया बा
0: ज्यादातर औदेओ से आके ही लड़का के आदोपते करे लन जा
1: हाँ आदोपते कर तो वो लोग आवे लन सन तो पहला चीज लोग के यही मुश्किल है कहाँ जाइन सन खोजे एगो लड़का लालिश तो नहीं बाजी सुन तो।

0: बोली कि हियाँ जेनसन जी परिवार में एगो मिली तो ओके तक मजे हई हई मजे आदोपते करी। अभी दूसरा आदोपियों के देख आवेला हियाँ रहेला माँ हई माँ बाप शादी कर ले रहा सिबुजो मॉरिशस में। अब का हो गल एगो चल गल हई दूसर देश में या दोनों चल गल देश में वहाँ जाके एगो लड़का हो गल। अब एगो लड़का हो गल आर एगो बोली के बपोए मर गल। अब सिबुजो अनंग लेतीर में वनसन माँ बाप रहल लड़का रहल बपुआ मर गल तो लड़कुआ के आदोपते करे के या रहे के या देखभाल करे के या माफ करिए दोनों ही मर गल बपो मऊआ तो लड़कुआ तो वहाँ कहाँ जाई।
1: हाँ
0: भागुवेन माँ हुआ ओके कुमाजा उसे लड़का के लेवे ला कुमाजा है ओकर लागो दिखला खश में डाल दी हेने उन्हें डाल दी पर हुए ला तब एक बड़ा हुई सिबा कैसे हुई मैं एक बार बाहिया ओकर दादा दादी ओकर परिवार बोलिए जाने ला मर लड़का बेटा है पतु पत्नी रहल दोनों सिबोजो हुआ मर गल। अब एगो लड़का रहल हम के मन बा उ लड़कुआ के हिया से ओके आदोपते करे के ऊ जो हुआ सिबोजो अनंग ले तेर में बा आदोपियों नहीं एगो चीज खाली हमने बोलते एक आदोपते कर ले या नहीं। अब ओकन ओकर पोसे जिया कौन चीज कैसे चला कौन मेकानिज्म बोलता बा कौन ओकर पोसे शिष बा ओके चाहे ला को मजे उ लैकवा के भई करे के आदोपते करे के यो एगो चीज फासिल नहीं है। आलू तो देखिए ना सर जब एगो आदमी आदोपते करेला एगो लड़का के ओकर आंथे छिया के ओकर खाए पिए के सोचेला एक दिन कब ऊ बड़ा होई तब ऊ लड़कुआ ओके देखी ऊ लड़कुआ देखी ओके खाए पियाए के सब देखे के बस ओकर माँ नियर है मेम की बियोलॉजिक मन के मजे नहीं बा ओकर लड़का नहीं है मैं ऊ लड़कुआ के ई खातिन बोले अरे जाने ले एक दिन हम पर गईली मलाद हो गईली तो के हमके देखी तो ऊ लैकुआ के सोच ले बा जोन के एलवे कर ले बा देखभाल कर ले बा खियाइले बा लेकोल भेज ले बा सिबा बड़का आदमी बन गल बा पड़ बड़का बड़का देख गए हो के तो ऊ लैकुआ ओके देखी मैं कोनो गाँव हाँची नहीं बा आजकल के लैको में देख बा ये सब नहीं मैं सोच ऐसा है कि मजे ऊ लैकुआ ओ आदमिया के जोनो के आदोपते कर ले बा ऊ लैकुआ ओके देखी तो हियाँ देखे ला एगो मुआए है आदोपशो करे के एगो लैका के एलवे करे के एगो लड़का के गोद में लेके ओकर देखे के चाहला। अरे दूसरा हम नहीं देखेला सर जोन प्यार जैसे हमने बोला लामू उबा है के कुमा जे दोनों में मावा में बपुआ के भूल ले ला सर एक तो खूब तार देखो मावा के लैकुआ के ओकर कुमा जे देख बा कौन है बा है ओकर लामू जब ई देख बा मावा अपन हौ लैकुआ के सेगे करेला ओकर गोद में जैसे हमने बोले गोद लेवे लन सर और आदोपशन तो गोदवे है ओके कुमा जा कितना प्यार से अभी तुम्ही एगो है अपन एगो परिवार के एगो मैडम के सेगे करत हो ओकर से तो ओकर दिल से जोन बा ओकर प्यार जोन बा कुमा जे ओकर से लैकुआ के बतावत हो के बेटा हमर तो बेटा ही नहीं हुए कुमा जे जन्म से मैं आज तू तुम्हारे बेटा से ज्यादा हुए तो दिख ला उस सीरे करी ओकर लैकुआ के इतना प्यार बताई इतना मोहब्बत बताई कि उ लैकुआ अपन एगो एगो लैका एगो माँ के ओकर है लामू देवता ओकर है प्यार देवता कितना ऊ मऊआ ओके खुशी हुई आर ऐसा प्यार जो ऊ मऊआ आर है लैकुआ में कभी नहीं भुलाई। एगो आदमी सोची लिमन से तो उजुन ओके आदोपते कर ले बा अरे हमर माँ के तो बहुत लड़का रहल नहीं लोकाशन लक देखे के
1: गले लगाए के प्यार करे के
0: हाँ हाँ हा, नहीं वाले बोलो तो हिया देखा करो का हुआ था मऊआ कितना प्यार मोहद्दे होता जहाँ जाता वो ओकरे हई करी तो हिया देख
1: लाड दुलार में से बजाए माँ के ममता जन रहे ला एगो लड़का आवेला था वो अपने आप वो छलक जाला।
0: हाँ और दूसरा दिखे ला सर का हुए ला आदोपशन सिर्फ परिवार ही में नहीं रहे ला कि ओकर लड़कुआ के लिए एक बार आदमी का करेला ओकर एगो लड़का दिखेला ओकर बाप आर माँ जैसे बोली से तरेल जो नेतांसी में बा वो गुजर गल बा अब कहाँ जाई ऊ लैकुआ अत जाने अभी के दुनिया में जो आदमी जो था वो तो नहीं खोच ले खोजी कि अरे कहाँ हमारे तो लैका बा कहाँ हम जाके एक माँ जे आदोपते करब दूसर लैका के देखब मे बा जो उनके माँ बाप नहीं बा लैका नहीं बा ओकर परिवार में ऊ माँ बापुआ जाने ला ऊ लैकुआ के तो बोले नहीं हम ओके आदोपते कर दे लिया काहे हमार लैका तो नहीं बा बस वो गोली मन परिवार से आवेला एगो देखे ये सब भी आवेला बोले देखे लन सन कौन कालती परिवार में कुमा जे ऊ लैकुआ के जोन आदोपते कर ले वो नाबीनी तो नहीं सक बने आदमी के आदोपते करे तो ई देखेला सर हम नहीं बोल रहा अरे पहला बात कर दिली

0: तत्वर से अब एगो लैका आदुप्ति हो गलबा आदुप्सियों हो गलबा तो वो लैकवा के नाम होएला जोन आदमियों के आदुप्ते कर लेबा आदुप्त जैसे मने बोली ला
1: यानी कि मान ला हम कोई के आदुप्ति करत हैं गो लैका के तो लैकवा के कोनो नाम रही जब हम आदुप्ते कर ली तो लैकवा के जोन कर सियानो हा वो बदल जाए लेकिन उकर जो बर्थ सर्टिफिकेट बा ना जन्म पत्री उकर में उकर हवो नाम बा जे उकर माँ बाप जो जन्म दिले बा
0: नहीं अभी पहला चीज जो चीज कब हमने देखा सर अदॉप्शन के पोषण जिया जे मैं रिपोर्ट कर दिला सर अभी ये वो कुमार जे है अरे हमें को लेखा के कुमार जे अदॉप्टे करते हैं लेकिन तो हमर नहीं है ना मैं उस दूसर नाम में पैदा हो रहा हूँ उकर कुमार जे आगे ने सांस दूसर नाम में बा जब हम पोषण जिया कर लियो के अदॉप्टे करे के तो ओके दुआ मिले के अमर नाम सिर भी करे के अब सकी रघुनंदन के हो जाए सुबह सुखमा जा राम खेलावन के लड़का रहल अब हम आदुप्ते करते हैं ओके तो उ तो है हो दा अब रघुनंदन बन गल बा सब अब हुआ लेता सिविल सब बा देख अब सब पोषे जो में तो कैसे सोजे करेला उकर कुमा जे उकर नम हुआ तब उ लड़का देख ला अब आज से हमर लड़के ही अरे बियोलॉजी नहीं हमारे लड़का नहीं सब कोई जानी कोई पूछी ना ओके एक दिन नहीं जानी तो उकमा जा दुपशी हो बा तो पूछी तो नाम कौन छिया तू तो बोलबे करी रघुनंदन बोली हाँ तुर बापुआ की जानी लहू एंते लह रह रघुनंदन तो नहीं बोली ना आदुप्ते कर ली रे मर वो कहाँ कहाँ नहीं हमें जाए तो नाम मिली वो जो है लड़का के जो आदुप्त रहल हाली तो हमने देखी ना सर जब वो लड़का आदुप्ते हो गल बा नमुआ तो हो गल बा हमर नमुआ में अब सब चीज जोन बा हमर मेम की यार लड़का बा हमर है एगो बोली के अकेले रही तो धन दौलत के विषय में आवत है
1: अच्छा
0: ओके देख बा सब चीज जोन हमर रखल
1: लैकवा के हुई
0: लैकवा हुई घर हुई जमीन हुई पैसा हुई एक दिन मरियो गईली तो लाबंक में जो पैसा हुई तो उकरे ही हुई बस कुत्ता ने मुंह हमर नाम में कुमा जे सब लैकवा हो गल बा सब हो गल बा और जब उ कुमा जे हाई हो गल बा उ पस के जीविचे हो जाला हमारे को जीविचे दला पस ही हमर नाम में बा मेम की हमर दस गो लैका बा और ओके मा दुपते कर लई जब हमर नमुआ ले ले ले बा तो उ एगो जीविचे होला हमर अभी तारेल देख हम सोकर बफो बगल से मिली का हुई जहाँ से आलबा बियोलॉजी के यहाँ देख ला ओके लैकवा के ओकर सांस हो गल पैसा कुछ मिले के एगिचे बने के हमर तेगो लैका का बात उठे कर देव तो तोहर जिगिचे बन जाए मेम की तोहर ई लैका नहीं है आलू तो ई देखिला सर लैक माँ बाप जो ना दुपते करेला है गुलाई का वो ज्यादा नहीं सोचेला कर जमीन बा कि के देव सी पापा ये सब नहीं सोचेला एक एक वो चीज अरे ये लैकवा कब बड़ा हो
1: हम के देखी
0: हम है बोल देला तू
1: हमका ख्याल रखी हम के देखी काल के हम के जरूरत पड़ी
0: वो रेत रेते हुई मतलब कुमा जो लाज हो जाए रेत रेते तो कुमा जो आदमी काम करते बा तब लेक जीते ही बा आले तो देख ला यहाँ उ सोचेला कब एक दिन कमुआ छोड़ उड़ दे तो उ लैकवा ओके देखभाल करी ओके खाई पियाई के देखी काल एगो बोली के कुमा जे लुपिताल जाए के चाहें या कहूँ जाए के चाहें दुखतेर के देखे देखभाल करे के कोनो तो होम में डाल दे एगो है बा कोई ओके देखे के आर ओकर लासते के या कुछ के यही सबसे बड़ा चीज कब एगो आदमी देखेला कब आदुप्ते करेला एगो लड़का नहीं सोचला कि अरे हमारे धन दौलत बाके मिली नहीं कि एक दिन काजनी हम मजे मलाद गिर गईली कोई नहीं रही आजकल तो के तोरा देखा था मलाद
1: नहीं वैसे जब कोई आदुप्ते वो करेला तो उनका यहाँ इतना कुछ रहेला सोचल हम काल पर सुमर जब सा कोई नहीं बा दिखे के कोई नहीं बा कोई के नाम करे के देखर से तो अच्छा भाई को लैका आदुप्ते कर लो अब सा लैकवा हमने के नाम से चली हमने के नाम भी चली और जितना कुछ बा लैकवा के हो जाए
0: हाँ देखभाल करी हमने के
1: बिल्कुल
0: देखला आदुप्सों के मजा है मतलब का हो रहा ओकर ओकर मजा लोब्जे ऑब्जेक्ट कौन सी है एगो आदमी
1: अभी अभी ये बतिया आप जाके एगो लैका के कौन लाज से कौन लाज रहा आदुप्ते कर के बात में
0: कौन थी नहीं अभी आप सभी
1: अच्छा
0: जैसे हम के भाई सुनत हुई तभी जानते काहे पहला एगो लैका है अब देखिला सब बात कर ली सर ये सब कौन रीजन है एगो आदमी आदुप्ते करेला एगो लैका के में कितना खा लीते आदुप्शों बा आदुप्शों में भी देखिला सा कितना खा लीते आदुप्शों बा एगो आदमी खाली आदुप्ते कर देला था तो ओकर से पूछी भी कौन करती आप आदुप्शन कर ले बोले नहीं नहीं जानी ला हम हम तो क्या अडॉप्ट कर लें।

0: अरे जानी ला हमें हम माँ बाप सिपाही कहूँ से सीखले बा अदोपते गोल ले ले हुए ते ही बने खाली
1: हमर होगल हमर नाम बा हमर नाम दे दिली
0: यही
1: जाने हमर संगे रही।
0: हाँ एकर से ज्यादा नहीं जाने ला आलो तो हमने के कानून में हमने के कुछ सिविल में लिखल बा तीन कालिते अदोप्शन बा
1: तीन
0: कालिते पहला एगो बोली ला सा अदोप्शन सैप जैसे तरलवा बोल रहा कि ये जाने ला मजा माँ बाप पहले के मजा अदोपते करते ले गुजाफे अदोपते मैं भी सिर्फ यहाँ नहीं फिनी बोला है मैं एगो अदोपते अदोप्शन सैंप बा दूसरा बा एगो अदोप्शन प्लेनियर प्लेनियर वो भी देखब से एक्सप्लिके करब से ही फ्रांसे के है हमने के तो कुछ सिविल फ्रांसे ही है जो मन हुई तोरा देखे के तो खाली अभी हमने के एगो चीज हमने के एगो लिवे नहीं बा हमने के कुछ सिविल बा मैं एगो लिव नहीं बा जो कोई आवो का हो या कोई भी हो आ वो लिख ले बा हम के दुआ सिविल मोशन नहीं बा ये खातिर में सेलमा तोरा खाली कुछ सिविल देखे के चला उमे मैं उनमें तो नहीं एक्सप्लिके करेला सब आँची होकर पोसे जो तक आ वो सब करेला तो यहाँ देख ला अडॉप्शन सैंप बा अडॉप्शन प्लेनियर बा आज लेजिटिमेशन पर अडॉप्शन कैसे एगो आदमी अभी जैसे हो लैकवा के हम ले लेली तो हमार लैका नहीं हो गल लेजिटिम हमार लैका तभी देख ये अभी तीन गो ऊपर ऊपर बतैली सर हमने अब एक्सप्लिके करब सब पहला शुरू करेला सर एगो अडॉप्शन जो सैंप अडॉप्शन सैंप ये बड़ी कुआं है मॉरिशस में तीन कार भाई बहन जे लैका गोद में ले हुए खोजा था तो वो तो करी एगो अडॉप्शन सैंप में बा कौजिशों कौन कौन चीज चाहे ला एगो अडॉप्शन सैंप में ये अब पहला दिक्कत है सर अडॉप्शन ये तेरे लो हम के वो क्वेश्चन पूछ ले हाँ। कौन लाल साही कई ना उकर भरी
1: हाँ एगो लैका के जब बोले से एगो लैका के अडॉप्ट कर ले वंचा हाँ। तो लैकवा के लाज कितना ले सकी रहे बस की एगो एगो लैका जब 18 बरिस के हो गल तब तमाशे हो गल ना
0: हाँ तमाशे की भी सकबा अडॉप्ट करी है
1: हाँ तो हाँ। तो बोलते तो एगो लैका जब अडॉप्ट कर पा तो कितना बरिस के लैकवा चखना रहे के
0: पहला चीज एगो अडॉप्शन जब एगो आदमी मांगी हम मांगत हैं हौ लैकवा के अडॉप्टे करे के सिपोजों तो चाहेला हर आदमी जोन अडॉप्टे करे को जता एगो लैका के ओके चाहेला थौंता नहीं रही आले कैसे हमके थौंता बा तब सकब हम एगो लैका के अडॉप्टे करे मैं सिपोजों हमार बा 25 ans सिपा मुएस हुए हो थौंके तब हम नहीं सकब मैं बा एक्सेप्शन अभी देखब सकुन हा मिस हर आदमी के जेनेरल में जोन अडॉप्टे करे खोजता तो के चाहला थौंता अब 30 बरिस के होई तो चलो वो सकी एगो क्वालिफिकेशन फुलफिल करी रिक्वायरमेंट हुआ
1: यानी कि 30 बरिस होगा तो सकबा को लेका के अडॉप्ट करे
0: हाँ आलू मैं ई लाजुआ 30 ans लिनै एग्जिजे ह नहीं नेसेसर चाहे जब देखब वो आदमिया जो मांग करता हो अडॉप्टे करे के लैकवा पति पत्नी नियर रहत वंशन संगी पति पत्नी से बुझो हम
1: एगो कपल
0: एगो कपल वंशन लैका तो नहीं हुआ था ना जब वो कुमा जे मांग करे खोजता तो नहीं नेसेसर बा के तीसरे बरिस होई के तब वो लैकवा के मांग करे के
1: सखी को लैका अडॉप्टे करे
0: सबकी
1: एगो पत्नी काम करता संगे होवन स घर द्वार बा सब कुछ बा सखी जे एगो लैका के रिस्पांसिबिलिटी ले त सखी छ लैकवा के अडॉप्टे करे
0: जोली है ओकरे नाम नो सेपरेशन दु को सभी पति पत्नी नियर संगे वंशन तो वो देख ओ सकी मेम की 30 ans नहीं होल बाऊ के ओ सकी कुमा जे मोएस की 30 ans अडॉप्टे करे ओ लई क्वा के आली एगो खूब जो शादी कर ले बा ओके चाहेला मिनिमम पति पत्नी नियर कब शादी कर ले हवनसन कुपवा जो अडॉप्टे करता ओके 15 ans दे मोयास 15 बरिस चाहेला
1: हो जाए के
0: रहे के ओ लई क्वा से ज्यादा जो शादी कर ले बात ऐसे बोली सर कुमार यहाँ शादी कर ले वंशन कुमार जी को खूब शादी कर ले वंशन
1: 15 बरिस होगल बा लेका नहीं होलबा
0: हाँ हाँ नहीं होलबा तब उस सकी 15 बरिस की शादी के कुमार जी होवल उ लैकवा के अडॉप्टे करे पहले तो बोली सर 30 ans ना जब भाई कुमार रहल तो उ हिया एगो खूब वंशन शादी कर ले वंशन एगो लैका के सदी में कुमा जे 15 बरिस हो गल उ लोग के लैका नहीं होल हाँ सखियन सन अब कुमा जे एगो लैका खोजे ओके कुमा जे अडॉप्टे करे के एगो चीज बड़ी

0: ये जब उके मन होई प्रपोजे करे की मैं देखा कानून कितना उका डिफरेंस मैं इलाज के डिफरेंस वा रेजुई हो जाला
1: अच्छा
0: सब आर रेजुए करे तांतां से कैंजों से अब दस बरिस से
1: अच्छा यानी एगो एगो एगो कुप जेकर शादी के दस बरिस हो गल बाल एकाओ नहीं बाद उपते सकी करे
0: हाँ अब लई कुमा जे ओ अदमिया जो उके मन बाई करे के डिफरेंस वा लजवा में सके पहला तो दिखले सब शादी कर ले हो वंशन तो पंद्रह बरिस के कुमा जे चाहला होई हो जाए सदिया रहे के मैं सके ई डिफरेंस वा लजवा में रिड्यूए करे दस बरिस तक जे ए एगो लईकुआ जो आदोपते हुआ था वो या एगो पति के हो या पत्नी आके अरे फिर से बोली ना पति पत्नी तो शादी कर ले हो अंसन
1: हाँ।
0: मैं एगो उलो के अपन लैकवा नहीं होलबा
1: हाँ।
0: मैं कभी हो जाला या मैं सेवा शादी कर ले लागे
1: हाँ।
0: या कुमा जो है मदमुआ शादी कर ले रहल
1: ओकर लैका
0: एगो लैका बा नमुआ तो नहीं बना मैं सेवा के नमुआ में लैकवा अब उ लैकवा जाए कहाँ अब तो यहाँ तो शादी कर ले मदमुआ सी बुझो उलैकवा तक मजे नहीं अब ओके मन बा आदुपते करे के उलैकवा के पसी लैकवा के काली कब ने हो रहल तो ओकर नाम से बुझो माँ के नाम में बा या बाप के नाम में बा अब ओके मन बा गोड ले के उलैकवा के बपुआ पसी बोले अरे कुमा जे केकर यहाँ हमरो तो नहीं हो तो से तो लैका नहीं होल मैं हूँ तो शादी कर ले रले एगो लैका हो गल बा दूसर में सेवा से तो उलैकवा के कुमा जे अब तो तोरे नाम में रही मैं सिलमा नाम मामजेल में रहल ना अब तो हमारे से शादी करके था तू तो हई मिशे के नाम हो गल तोर
1: और सकी लेकवा क्या दुपते करी
0: आदुपते करी मिशेवा ओके हौ लेकवा के जुन मदमुआ के हो रहल मेम की जीजा मायज हुआ जीजा के मजे रहल तो ये देख ला बड़ी बड़ी मजे हई आदुपशों के ओकर लाज मजे तो हमारे से पुटले रहल कौन सी था कैजा जीजा होल बा हालूस हमने देखी ला सर आ सकेला जहाँ ओकेर कुमाजे ओकर कुमाजे लैकवा बा मिसिलम ऊ कब कुमाजे है ओके कुमाजे आदुपते करता तो मिशेवा ओके कुमाजे चाहे ओकर कुसंतमा दे के कि ऊ लैकवा के आदुपते करी नहीं एक्सेप्ट हुई कुसंतमा नहीं दे तो कुसंतमा में तो नहीं बा पसी काहे सके मदमुआ जो नौकर संगे रहा था ओकर पत्नी से बोले ना तो गे और फिर सोचा थी मोवे चीज में शिवा के कि नहीं हम नहीं चाहते हमार लड़का तू आदुपते करके तोर नाम में डाले एक बान बा ये है एक बान भी है बा हमने के खेस तक है लाकोड में तो हाँ से हमने सीखीला सर ऐसने न जोन जोन का आवेला लकुरुआ में तो यहाँ देख हई बपुआ ओकरो कुसंतमा दे के चला मदमुआ के दे के चला ओकर कुसंतमा हुआ कि हाँ ओके हमके ओके भिक्षा नहीं बा तू हमार लड़का के आदुपते कर रहे तू हम में अमर नाम दे ता हलो हमने बोली ला सर आदोपशों करे के हाउ जोन बुगुआ के आदोपत एगो आदमी के जोन एगो लड़का के आदोपते करता कोनो लाज रही हो लाज नहीं देखल जाला आदोपत के समझला लड़का के लजुआ में डिफरेंस हुआ देखी ला सर कैसे आवेला हम पंद्रह बरिस दस बरिस आवेला एगो चीज बड़ी है एपोत हम अब जे लैकवा एगो बोली के सब आदोपते करे एगो लैका के बता रहे देखो सर कितना लाज तक मैं ऊ लैकवा जोन बा आदोपते करे खोजत हो ऊ चाहे ओके पंद्रह बरिस बा
1: लैकवा के
0: हाँ सी बुझो पंद्रह बरिस बा या ज्यादा बा एगो बोली के
1: अच्छा
0: अरे पति पत्नी हवन सन अब देखलन सन एगो है अरे कहाँ दूर जाब सर बोले जब दे रहा सर जब बोलब तो जन बतू मिशे मैडम शादी कर ला
1: हाँ।
0: काहुल एगो लैका ओकर संगे जीलन सन पसी नहीं रहल लैका मिशे मैडम के लैका नहीं हुए
1: हाँ।
0: एगो लैका जो ओकर बहिन के रहल ऊ
1: हाँ।
0: लैकवा से ऊ कुमाजा गोद में ले लेलक अभी कुछ नहीं कर ले वंशन है कुमाजा खाली ओकर संगे जियता खाता पियता ई दोनों देवता कुमाजा खाई पियाई के तो ऊ लैकवा बा न मजे हई संगे जीते होल बा बड़ा होलते बा ओकर से
1: ओकर लिए ओकर माँ बाप एलोगे हो मन
0: ओकर लिए माँ में सिनेमा कब देख ला रहे हो रल पपीवा में तलाक देने सांस में ओकर माँ
1: के माँ बाप के बाप
0: का अब का होल पतिया मरगल पतिया मरगल तो अब सोचा थोई अरे मवा मजे जोन पत्निया तो रगल बा और लैकवा बोथ ए माँ आज तक कुमा जो हमके आदुपते नहीं कर ले हुए तुर नाम मितन

0: नहीं है, खाली नाम के तू कुमा जे है होवे। मैं हमर लाज जाता दिन दिन तक जाता, 15 बरिस से ज्यादा आई, एगो 20 बरिस हुई वैंसैका हुई एगो बोली के। तो ऐसा कवा में मवा अब ओके मनबा आदुपते करे के हौ लैकुआ के, तो नहीं ने से शेर कभी भूल जा सा कि खाली एगो लैकुए के सक बतुआ दुपते करे मेम क्यों कर लाई का के 15 बरिस के ऊपर बा उस सक बा आदुपते करे उ लैकुआ के। मिसलमा उ लैकुआ के ओके चाहेला ओकर कंसेंटमेंट दे के कि एक्सेप्टे बा या नहीं एक्सेप्टे बा कि ई मामा से जोन कुमा जा बड़ा होल बा खियाईले पिएले बा लेकुल भेटले बा ओक एक्सेप्टे कुमा जा उकी ई ओकर माँ बनी ओकर माँ मतलब बनी के अब कुमा जा दिखलारे करी पापिये में ऑफिशियल इकरे नाम ओके दिखलारे करी। जब तब लेक ओ कंसेंटमेंट वा नहीं दे 15 बरिस के बाद जे बा बड़ा हो गल बा कैंसर से ऊपर तब लिख नहीं दे हयो मऊआ मेम के ओकरे संगे रहल बा या कुछ होल बा नहीं सके कुमा जा ओके कुमा जा हे करे आ दुपते करे के ये देख ल हाली ई त देख ले ली सर कंसेंटमेंट मा में। मैं बा हमने के जीज ई सब लजुआ में देखे के 15 बरिसवा के ओकर कंसेंटमेंट मा दे के मैं सकी उ जीज कभी को किस सुने ला लैंतेरे ऊ लई क्वा के सकी रेजुए कर दे 15 जौवा से ऊपर का नीचे ओके बाऊ पची देखा था मऊआ बपुआ दिखले बा खूब कुमा जा ओकरे से बड़ा होल बा आलू के कहाँ अभी पंगार ही मर जाए मऊआ
1: हाँ
0: तो का हुई तो सोची एगो किस कब कर ले बा हुआ लकुरुआ में अधुप्षों के नहीं बोला था जिजुआ कब कंसीडरे करी कि ए रेजों वालिद बा जहाँ ई लैंतेरे लैकुआ में के कंसेंट मऊआ के लजुआ रेजुए करे के
1: हाँ
0: लैकुआ के ओकर लाज रेजुए है कर दिलक बे आलो तो उसकी कुमा जे आदुपते करे ई मामा आदुपते कर दे बपुआ तो मर गल बा
1: यानी कि लैकुआ के जुन बा ओकर ओकर माँ के जो नाम बा ओकर नाम लैकुआ सकी ले ले और अब जैसे बोला पिता तो नहीं हवन मामा अपन नाम पर ले ले
0: हाँ आले अब देखी ला सर तरिलवास पूछ ला तलो मर से कौन लिफे है एगो आदुप्शों सैप में कौन लिफे का हुए ला कभी एगो आदमी के एगो लड़का के से तू बहुत आदमी है ओके कुमा जे तू आदुपते कर ले हुआ ओकर लिफे का है पहला चीज शुरुआत से बोलते गल हुआ हमके कि ओकर पहला चीज ओ जोन आदमी ओके आदुपते कर ले बा ओकर नाम मिलेला ओके कर लो ये
1: यहाँ
0: आदुपतवा के ओकर नाम मिलेला मैं सिलमा जी सकी जी सकी वो जे सीधे करी कि जो नमुआ एक मिले के चाहेला उकर माँ बपुआ जो नोके है करे था उकर नाम नहीं डाल उकर नाम नहीं डाले के नहीं कुमा जो उकर नमुआ है करे के है रखे के समझ लो का बोल लिया तो सकी कुमा जो हम आज किसी बोलनी कब आदुपते होल तो हमर नमुआ होलो के ना
1: हाँ।
0: तो नहीं नेसेसर ओके कुमा जा हमर नमुआ अब है ओके ले एगो नाम सकी कुमा जे दूसर नाम जीज बोली नहीं हम नहीं चाहते हैं कि कुमा जे आदुपते कर ले
1: यानी कि जरूरी नहीं बात कि आज कोई के आदुपते कर ला तो हर नाम छहरा के देखी
0: हां इजी से मत दिखला गई करे ना नॉर्मल मां का हुए ला वो तो मिलबे करियो कर नमो जो मां बाप जो नो के आदुपते कर ले वो करे ना मैं मिली मैं जे रीजन रही वैलिड इजी जो डिसाइड करे ला जिस रीजन ओकर वो देखेला कब की सुआ आवेला और मांग कर ले होई कि मऊआ ओकर नमुआ में दही करे के लैकुआ के है डाले के तो देखता कुंजिशों सब चीज बा तो सकी बोले नहीं इकावा में है लैकुआ ओकर नाम नहीं चाहेला सी बुजो जैसे थरुआ बोली हमारे नाम रघुनंदन में डाले के हम ओके आदुपते करते सकी जी बोले नहीं एकर नमुआ में नहीं ओ दे सीधे करी से ओके मन हो वही नमुआ रखे के जोन ओकर माँ बाप ओके दिले रल बायोलॉजिकल मदर और फादर ओकर नमुहे रखे के
1: नहीं तो आदुप्शों में ऐसे होला ना कि एगो एगो जोन कुप हवा अपन अपन नाम लेकवा के देवेला
0: हाँ ई देवा था ई मिलेला मैं नहीं कि कुमार जी स्ट्रिक रूल है एक्सेप्शन है
1: यानी कि आदुप्शों में खाली नाम नहीं देवल चला
0: हाँ
1: सगबा नाम नहीं देके लैकवा के औसने देखे जैसे तो हर लैका
0: हाँ ओकरे देखबा अन मन नहीं नेसेसरी जोन आदमी आदुपते करी ओकरे नाम में रही जैसे तेरवा बोला ना शुरुआत में तू भी बोला कि कब आदमी आदुपते वेला तो उ नाम ले वेला जोन आदमी आ जोनो के आदुपते कर लेबा तो नहीं नहीं नेसेसरी नहीं हा जीज दे सीधे करी ओके नमुआ एस की जोन आदुपते करता ओकर नमुआ में होई या

0: उन्हें नमुआ में जून रही।
1: अच्छा तो जीज दे सीधे करेला,
0: जीज दे सीधे करेला जब एको रीजन रही वैलिड। अब किसी एक मजे
1: अब मान लो एको लड़का बड़ा हो गल बा, एको छोटा लड़का रही पांच बरिस के दस बरिस के तो अलग बात बा, अब एको लड़का अठारह से ज्यादा हो गल बा और वो बोला था कि हम चाहते हैं कि हमारे बाप के जो नाम बा वो हमके मिली, तब यहाँ पर तो ज्यूस के रिक्वेस्ट कर बोली ने हमार मन बा कि हम अपन बाप के नाम रखब,
0: हाँ।
1: यानी कि जो आदुप्ते कर ले बा
0: ओके मन बा
1: ओकर नाम में जाब, तो ज्यूस के ओकर दुआ है कि लइकवा जो बोले बा उ ओकर पर
0: भाई के एक्सेप्ट हुई के, हाँ।
1: तो यहाँ पर ज्यूस नहीं सके बोले कि नहीं नहीं हम चाहते कि तू अपन जो माँ बाप तुके पैदा कर ले बा ओकर नाम रखेंगे, नेसेसरी है। लइकवा बोली नहीं हमारे अठारह साल होकर बाद बीस साल के हो गए, हमार मन बा कि है जो माँ बाप हमके छोटा से देख ले बा बड़ा कर ले बा हम पालन पोषण कर ले बा हम बड़ा हो गए हम तो काम सब करत है, हमार मन बा कि आप आदुपशो में हमार जो नाम बा वो हमके चाहता कि जो हमके देखभाल कर ले बा ओकर नाम लेब, तो एक मैं जूस कुछ नहीं सके करे ओके चाहे ना उबड़ी से बा देखे
0: ऐसा का में दे रीजन जस्टिफिए नहीं बा ना कि वो कुमा जे जोन हौ जोन आदुपते कर ले बा ओके बड़ा से एक छोटा से ओकरे संग जियता में ओकर माँ बायोलॉजिक दूसर ह, तो ईद जीज हुआ ऐसा कुछ नहीं करी तो पा फिर नो कि देबे करी जो आदुपते करता ओकर नाम में जी रीजन जस्टिफिए बा गुड रीजन जैसे हमने बा कि वो लड़का बोलता नहीं हम हमरे हमर माँ बाप जो पैदा कर ले रहा ओकर नाम में रह नाम ओकरे माँ बाप वे के नमुआ में रखे के नई नेसेसर बा जो आदुपते करता ओकर नाम में डाले के
1: बढ़िया,
0: हाँ ना यही सब देखकर कानून के से आली। अब एगो लड़का उ तो आदुपते रहल एगो दूसर परिवार से, हियाँ तो बा एगो दूसर परिवार ओके आदुपते करता समझल ना, अब वो लड़कुआ ओकर माँ बाप जो पैदा कर ले रहल जैसे हमने बोल सब पागं बियोलॉजिक जो जन्म दिले रखल और कुमा जे खई है लइकवा के मेम कि ई दोनों अब कुमा जे ओके आदुपते कर ले बा ओ कुमा जे कोचिने करी लइकवा ओकरो परिवार के नाता रखे के ओकर हसीन जोन बा माँ बपुआ जोनों के जन्म दिले बा ओ कभी है हसीन हुआ ओ टूटी वो कुछ नहीं ओ रही कुमा जे हुआ ओकर माँ बपुआ बगल के दोनों के ओ फोम पची जैसे हमने बोलिया सा पारं बियोलॉजिक और ओ एगो लिया रखेला नहीं फिनी होएला नहीं कि मतलब ही आदुपते कर देलक हमके तो हो कुमा जे हमार माँ जोन भाई जन्म देलक ओके भूल गई सा नहीं जन्म से एक मरक तक मेम के कर नाम में बा ओ भाई कुमा जे हो जोन जन्म दिले बा आर ई बाहिया उ लोग के रिलेशन नहीं फिनी होएला जो रहते रहेला तब ले कुछ आज मर जाए कि का
1: यानी कि लइकवा के छाना याद दिलाते रहे कि तोर जे माँ बाप तो के पैदा कर ले बा ये लोग हवन सा,
0: हाँ।
1: और हमेशा छाना लइकवा के बताते रहे कि हाँ है तोर माँ है तोर भाई तोर बहन यानी कि उन लोग के जो रिश्ता बा वो हमेशा औस्ते रहेला,
0: हाँ टूटेला नहीं लाखो दूसर को रहे ओकर हसीन और ओकर कोटाक जो रहल उ लइकवा जो आदुपते होल बा दूसर परिवार से ओकर माँ बाप भाई बहन से ओकर हसीन रहेला देखेला नहीं कि सब आदुपते कर देला उ लइकवा के और जगह तोहर लइकवा उ तोहर लइका हो गल,
1: हाँ। तो यानी कि हमने जहाँ तक हमने जाना थे जाकि आज एगो लइका के आदुपते कर देला लइकवा तोहर लागे चलल बा, अब तोहरा चाहेला कि हम जो लइकवा बा ओके याद दिलाई के कि ओकर परिवार बा
0: को, हाँ। नहीं हो नहीं हो याद दिलाई ला एगो बोली के मैं तो कैसे बड़ा होई तो पूछे ला ना,
1: नहीं तो कबो कबो छोटा लेकर के आदुपते करे लन सा ना,
0: हाँ। नहीं नहीं तो होवे ला लइका कब बड़ा हो जाला उ तब ऐसा ऐसा केशो पूछे सवाल पूछे नहीं बात तो आगे पहुंच ऐसा के बा तू तो जाने ला मौवा रही रही ना कि जाने ए तो है तू को है तोर माँ बाप तो ऊ रहल हम तो के आदुपते कर ले हई,
1: अच्छा सवाल करत है एगो लड़का के आदुप्ति कर ले रहन से छोटा रह लड़का बड़ा होल तो लड़का बड़ा होल तो जाना ताकि माँ कोई और बाप कोई और बा लड़का के मन

0: जन्म देले रहल अब तो नाम खाली खाती नहीं कर हो गल लैकवा मैं तीन अब तो हुआ ओकर संग जाता अरे नहीं देखा तो एक बान है आदमी माँ माँ बाप बा ओकर लैका बा मैं कहाँ करेला कभी माँ हुआ बपुआ के देखेला कुमा जे सास ससुर के ज्यादा माँ बन जलन सन
1: हाँ
0: नहीं ये वो सच बात है ये बात करते हैं सर
1: जस्ती दादाजी से लोग के लगाव रहेला
0: नहीं कहाँ करी जो नौकर कुमार जी रखल हाँ दाम दादा दादी से या कुमार जी दिग्वक कुमार जी अरे ये बोली हमार माँ हाँ हमार माँ हाँ हाँ करी मेरे को सस से ज्यादा बा कुमार जी है कुमार जी ओकर नाता जस्ती कुमार जी हो जाला इत आज के दुनिया में कुमार जी आज के नहीं हमेशा भी होते जाला अपन माँ के छोड़ के दूसर होकर सास की बोली ओकर माँ है मैं नहीं मुवे चीज नहीं है मैं वो देखी वो जीज करेला हर आदमी तो बराबर जीजे नहीं करेला ना अरे अब देखेला सब ये लैकुआ जोन कुमार जी ओकर माँ बाप संगे दूसर भंग से आर हियाँ बा ओकर माँ जोन आदुपते कर ले बा तो वो का करेला दोनों बगल से हियों से हुए से एगिच एक जिगची बनेल
1: हाँ इता इता हमनी बात कर रहे सब बोले रही जाती हाँ। वो लैका जोन बा ये आदुपते करबो कर ल तो लैकवा जोन बा जे के आदुपते कर ले बा
0: हाँ।
1: काल परसों कुछ हो जायो के तो जोकर घर द्वार माटी जैसे बोला लाभ पे पैसा जितना कुछ रहला सब कुछ वो लैकवा के मिलेला
0: हाँ।
1: अब आजे लैकवा के ओकर जो असली माँ बाप लोग बा वो लोग के जिबिया वो जैसे बोलना चाहे लोग के जायदाद वो रहला तो लैकवा के पागे अधिकार है जितना ओकर हुआ भाई बहन के मिलता उकरो हक हुआ मिलेला
0: हाँ, तो देख ला यहाँ दो पार मिला था
1: हाँ?
0: एक मिला था हुआ जो ओकर माँ बाप बगल से और जो हिया जो ना दुपते कर दे बापो के लुथरी है बस सभी तो मिला कर यहाँ हुआ तो गुपार मिली यहाँ तो सब मिला था मैं दोनों में ए हुई थे करेला और तो देखिए काल तोरा कोई आदुपते करे खोज था दो बगल के पार तोरा मिल जाए नहीं देखा कानून है नहीं एगो वो है एगो झोंक नियर बतियाते हैं सर मैं कैसे कानून है करेला तो मैं यही से कुमा जा कभी सोचब जो नदमिया कुमा जा आदुपते हो गल बा एगो दूसर परिवार से और ओकर माँ बा दोनों बगल से गीते करता और हाउ भैया तो बोली न कि हाँ तू के दोनों बगल से मिलल हमके तो खाली माँ बगल से मिलल बा ये भी बोले लन सन कब हो गेला अली ये छोड़ देला सर अभी हमने देखेला सर दुआ ओतोगीते पहांताल बोले रही सब पहले एगो माँ बाप जो जन्म दिले बा ओकर लैकुआ में ओकर हक बा जो लैकुआ के ओके चाहेला देखले रही सर कि लैकुआ के ओकर माँ बाप जो जन्म दिले बा ओके खाई पियाई के दे के लेकुल बढ़ई अले जाई के बढ़ाई करे के सब चीज करे के मैं अरे तू लैकुआ के चाहेला ओ तो बीते पारंताल में ओकर माँ बाप के देखे के कुमा जा खाई पियाई के कब नहीं रही कब लाज हो जाए तो सब जा ओकर एगो दुआ बा दोनों के खुशी तब माओ बापुआ के ओकर देखे के कुमा जे हई में अले इतब तो बोल ली सर एगो ताज तो देख ले ली सर कौन सी नो के मिलल बड़ी खुश बा एसकी उ जोन बा एगो कुमा जे लैकुआ ओकर माँ जोन के बियोलॉजिक बा और हियाँ अपन साथ हई कर लेवा आदुपते उल बा एगो दूसर परिवार ओकर लैका बा सिबोजो को छुकड़ी बा
1: यानी कि जे आदुपते कर लेवा ओकर आगे से को लैका बा फिर भी एगो लैका आदुपते कर ला
0: हाँ आले सिबोजो आदुपते हाँ ये हो जे ला और सिबोजो अब ये जो आदुपते कर ला खाऊ लैकवा के ओकर बा बेटी
1: अच्छा
0: ओकर बा बेटी
1: हाँ
0: एसके ऊ छोकड़वा जोन के आदुपते कर लेबा सकी शादी करे है ओकर बेटिया से नहीं समझ ला का बात है यानी फिर से बोली जाते गुजा फैम पोता हाँ ये जोन ओके आदुपते कर ले बा हाउ सी बुझो छोकड़वा के आदुपते कर ले बा वो छोकड़वा बड़ा हो गल बा मैं सेलमा जोन भाई माँ बपुआ आदुपते कर ले रखल हाउ लैकुआ के छोकड़वा के ओकर बा है लैका और पमी एगो बा एगो छोकड़ी है हाउ छोकड़वा जोन आदुपते कर ले बा उसे की शादी करे है छोकड़िया के
1: बताओ
0: ते ई एतेजी मना
1: काहे कि तो बहिन
0: नहीं ई तो खाली रस है नाता है
1: फिर भी नाम से फिर
0: नाम भी हाँ मैं खून के तो नहीं हो अनसन ना तो हिया कानून बोले ला कि नहीं सकी ऊ जोन हब है आदुपते कर ले बा और है ओकर परिवार में

0: ओके शादी करे के या कोनो देशों दो के ओकर पलिवरवा में हई देखा नहीं हो सकी करे ओकर भाई के बहन के या कौन सी के हई में तो नहीं सकी शादी करे। शादी मना है जब ऊछो कड़वा शादी करे खो जाता जोन आदुप्ति कर ले बाद जो ओकर लड़का हो ओकर लड़का से शादी करे ऊछो कड़िया से शादी करे। अब तक दोनों घर में मवन सन ना आदुप्ति करके तो चलाल बहिया ओकर मामा हिया ओकर संगे जियता तो ओकरो तो बा एगो हो बहन घरवा एक बार तो बोला कट बहन
1: हाँ हाँ हाँ
0: अरे तो बहनिया से सकी स्टेप मजे है सिस्टर से शादी करे
1: बहन
0: ये कानून मना करे।
1: चला तो अभी हम जा रहे थे कि हमने के जो आज के जो विषय बा अदुप्शों कैसे कि गोद लेवल चला ये काफी लंबा बा हमने अगले हफ्ते भी एकरे पर बात करब चा और जो हमने के सवाल छूट गल बा हमने हमने के वकील हमने के मेहमान कपिल देव रघुनंदन जी से अगले हफ्ते फिर जानब जा। तो कपिल देव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमने के इस विषय में इतना विस्तार से बतेला अगले हफ्ते के फिर से जारी रखब जा। तो प्रिय श्रोताओं हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। अडॉप्शन जो आज का हमारा विषय है इस पर हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे और आप लोगों ने बड़े प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को सुना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी को शुभ दिन नमस्ते।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिला लीजिए इस समय शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 4 बजे के समाचारों के साथ।

सुनने वालों को नमस्कार। वर्ष 2026-2027 के बजट में लुमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 साल की अवधि में 124 मिलियन रुपए दिए गए हैं। आगंतुकों के स्वागत के लिए थोशिनी में कई संरचनाओं के निर्माण के साथ इसका पहला चरण शुरू होने की योजना है। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होने वाले ये काम लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद है। कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया और सभी संबंधित साझेदारों ने स्थल का दौरा किया। मॉरिशस सोसाइटी ऑफ वर्फर्स ने हाल ही में रॉयल्टी के भुगतान को लेकर कलाकारों को आश्वस्त किया है और कहा है कि ये सामान्य वार्षिक वितरण नहीं है, बल्कि पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान एमबीसी के प्रसारण से जुड़ा एक असाधारण भुगतान है। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए ये संस्था कॉपीराइट के संग्रह और वितरण के तौर तरीकों पर फिर से बात कर रही है। आज जिबेन के एनएसी पॉक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी

0: डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने के कारण देश भर में जंगल की आग भड़क रही है। लंबे समय से जारी गर्मी और सूखे के कारण वहां के जंगल अत्यधिक सूखे और आग के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन पर मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। जी हाँ, इस वक्त शाम के 4:07 हो चुके हैं और अगर आप काम से निकल चुके हैं तो बस आशा यही रखते हैं कि इस वक्त आप ट्यून इन करेंगे हमारे इस प्रसारण के साथ और डेफिनेटली हमारा साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर लाजवाब जज्बातों का ये कारवां हम आगे बढ़ाते हैं आप ही की बदौलत, जहां पर आप ही के भेजे हुए मैसेजेस, आप ही के भेजे हुए खत, आप ही के भेजे हुए फ़ोन कॉल्स द्वारा जो कहानियां होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कहानियां नहीं पर आप ही के ज़िंदगी पर आधारित कुछ ऐसी बातें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी का जो लोग इस कार्यक्रम में दिल से हमारा साथ देते हैं और अपने कुछ ऐसे लम्हों को हम तक आप पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बिल्कुल हिम्मत चाहिए होती है, हम तो हमेशा कहते हैं कि हिम्मत चाहिए होती है किसी के साथ दिल के उन जज्बातों को शेयर करने की। वैसे मैं हूँ रत्ना और आपका साथ दे रही हूँ और बिल्कुल आई लव यू ये जो गाना है मुझे बहुत ही पसंद है। और वैसे लव शब्द जो है वो कितना प्योर, कितना डिवाइन है, पर आजकल इस शब्द के मायने बहुत ज़्यादा हटकर चेंज हो चुके हैं। सो चलिए, आज की ये एक प्यारी सी चिट्ठी आई है और हिमांशी आप चाहती हैं कि मैं आपका नाम लूँ। सो थैंक यू हिमांशी फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपने कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर किया है एंड फॉर दिस आई मस्ट रियली अप्रिशिएट और थैंक यू कहना चाहेंगे हम आपको। आपने अपने कॉलेज के दिनों की कुछ बातें हमारे साथ शेयर की है जो कुछ सालों पहले आपके साथ हुई थी। तो चलिए आज की ये चिट्ठी हम ज़रूर शामिल करते हैं आज की हमारी इस सफ़र में इस कारवां में। बिल्कुल आपने लिखा है कि मैं हिमांशी और मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अगर आप हमारे लेटर को आपके इस कार्यक्रम में शामिल करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले से मैं आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड आपका कार्यक्रम हटकर है। थैंक यू हिमांशी। एंड आप लिखती हैं कि हिमांशी, मैं हिमांशी, मैंने एक लड़के से दोस्ती की जिसका नाम है प्रवीण, और हमारी दोस्ती की शुरुआत बहुत ही कैजुअल तरीके से हुई थी। हम दो तीन बार कैजुअली हम मिले, बातें की, और उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि प्रवीण की एक गर्लफ्रेंड थी। उसने उसका नाम तो नहीं बताया लेकिन उसके बारे में वह अक्सर बात किया करता था, बहुत कुछ मुझे बताता था। उसने कहा था कि वो बहुत ही सुंदर थी और हमारे स्कूल में ही वो पढ़ा करती थी, उनके बचपन में बातें हुआ करती थी और शायद वो उसे अच्छा लगता था। इसीलिए उसने 3-4 साल बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। अच्छा, मतलब यानी उस लड़की ने प्रवीण को मैसेज किया। ओके, हमारी फ्रेंडशिप हुई, प्रवीण और उस लड़की की फ्रेंडशिप हुई, बातें होने लगी और फिर उस लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया, यानी उस लड़की ने प्रवीण को प्रपोज कर दिया। ओके, फिर अचानक उसके एग्ज़ाम्स आ गए और उसने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका था कि प्रवीण की बात नहीं हो पाई उस लड़की से, लड़की ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। प्रवीण ने कहा कि वो लगता है उसे छोड़कर चली गई। अब वो कहता है कि मैं कोई और लड़की ढूंढ रहा हूँ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तब मैंने प्रवीण से कहा कि तुम और लड़की ट्राई कर सकते हो,

लेकिन इसके बाद हमारी भी अचानक से बात बंद हो गई और आपने एक सैड सा इमोजी भेजा है. हिमांशी, यू नीड अ हार्ट टू डू दैट. और मैं कहूंगी हैट्स ऑफ हिमांशी, जो भी आपने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं समझती हूँ आज के जमाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसा एक कदम उठाने के लिए, जहाँ पर हम किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप करते हैं पर वो आकर जब हमसे ये कहता है कि उन्हें केवल एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, जस्ट बिकॉज कहते ना फ्लेक्स करने के लिए, यानी लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए. वैसे दाद देनी पड़ेगी, आज की जो जनरेशन है वो बहुत आगे है, बहुत हिम्मत दिखाती है, जहाँ सही है वहाँ कदम आगे बढ़ाती हैं, जहाँ सही नहीं है वहाँ ना कहने की भी हिम्मत रखती हैं. हिमांशी, थैंक यू सो मच टू शेयर दिस. और आई डोंट नो अगर प्रवीण कहीं से हमें सुन रहे हैं, सो प्रवीण दैट वॉज अ बैड डिसीजन, क्योंकि सच में देखा जाए तो भाई जो हमारे ज़िंदगी में आते हैं किसी मकसद से आते हैं, पर उसे संभाल कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है. सो एनीवेज, आज के इस चिट्ठी के कारवां कार्यक्रम में, बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली में, हमारे साथ बिल्कुल शेयर की हिमांशी ने अपनी स्टोरी. डेफिनेटली अगर आप भी हमारे साथ कुछ अपनी जज्बात, कुछ ऐसी कुछ बातें जो आपके जीवन में बीती हैं, कोई आप बीती ऐसी कहानी, तो आप ज़रूर हमें कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं ऑन 4028070. जी हाँ, 4028070, रेडियो मनोरंजन का नंबर. एंड मैसेज करना चाहें तो तभी आप हमें हमारे साथ मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 5250620.

इस वक्त 4:21 रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम के साथ साथ हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं आपके खतों को आपके मैसेजेस को हम शामिल करने की पूरी कोशिश में हैं और इसी के साथ हमारी जो ये जो अगला छोटा सा मैसेज आया है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही लाजवाब सा और आप लिखते हैं कि

मेरा सप्रेम नमन स्वीकार करें। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत हमारे दिल से आपको हम दुआ देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने एक छोटा सा मैसेज, जो कहते हैं ना कि समाज की सच्चाई है, उस पर थोड़ा सा आपने बयां करने की कोशिश की है। जहां तक हम समझते हैं कि आपने, कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे, या कहते हैं कई बार कुछ ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसको लगकर आपने कुछ छोटी सी बात लिखी है यहाँ पर कि आपने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ जुड़ा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ छूटा, और फिर एक दिन बस सब्र आ गया, सब कुछ मानो ठहर गया। पता है पहले अकेले रह जाने से हमें डर लगता था, पर अब लोगों के साथ रहने से डर लगता है। पता है जब तक चीखें सुनाई दें तब तक वो अच्छी हैं। अच्छा, जब तक चीखें सुनाई दें तब तक वो अच्छी हैं, पर जब चीखें अंदर ही निकलने से पहले अपना दम तोड़ देना तो वो खतरनाक हो जाती हैं। जज्बात से भरे हुए आपके अल्फाज जो आप बयां करना चाहते हैं, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा वाकियात हुआ है या कोई ऐसी परिस्थिति आई है, कोई ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि कई बार हम इतना ज़्यादा चोट खाते हैं ज़िंदगी से कि चोट का एहसास, वो दर्द का एहसास ही हम भूलने लगते हैं। और एक समय आता है जब दिल पत्थर हो जाता है, जब हमारे जज्बात मर जाते हैं, और किसी का कुछ कहना, कुछ ना कहना, या फिर हम कह सकते हैं किसी का रहना ना रहना, किसी का आना जाना, मतलब कोई मायने नहीं रखता। और कई बार ज़िंदगी ने हमें इतनी ज़्यादा ठोकरों से निकाला होता है कि हम एक तरह से इतने ज़्यादा सख्त बन जाते हैं कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी से मिलना, किसी से बातें करना, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे घाव जब मिलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये आसान नहीं होता। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम किसी को जज कर सकते हैं, किसी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, पर इसके पीछे की जो सही कहानी होती है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने जहाँ से भी इस छोटे से मैसेज को हम तक पहुँचाया है, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बिल्कुल रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम जो हर शुक्रवार को चलता है शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच।

आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में। यहाँ पर वाकवा से शोभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मौका से सुदेवी जी भी साथ दे रही हैं, कहती हैं प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब है। और बिल्कुल शोभा जी का यही मानना है कि आज के ज़माने की जो लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए और ज़िंदगी में उनका कोई फ़ायदा ना उठा जाए इसके लिए उनको बिल्कुल सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। और बिल्कुल सही कहा शोभा जी, जैसे कि आज की जो पहली चिट्ठी आई और बिल्कुल हमारी जो पहली श्रोता हिमांशी ने जो लेटर लिखा था उस पर आपकी यही टिप्पणी।

चलिए बिल्कुल सही कहा और कहते हैं ना कि जिंदगी में कई बार हम अपनी गलतियों से सीखते हैं या दूसरों की गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जिंदगी में अगर किसी के आना है या कोई आपकी जिंदगी में आता भी है तो वो कोई मजाक बन के ना आए, इंटेंशन उसका इस्तेमाल करने वाला ना हो, क्योंकि जब हमारी नीयत अच्छी ना हो तो ये दूसरों की जिंदगी तो खराब करता ही है, पर साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि भाई हम दूसरों का इस्तेमाल करके 30 मार खान बन जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं जी। आगे चलकर हमें हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही लोगों के साथ घिर जाती है जो हमारा इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि हमने किस कदर किसी का इस्तेमाल किया था। और बिल्कुल आज के जिंदगी में, आज के इस जीवन में, जी हाँ आज के इस जीवन में किसी का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत बात है। किसी की जिंदगी में आओ तो खुशियां लेकर आओ।

भाई जैसे इस गीत में था कि आओ हम चुप बैठे, पर आज का जमाना चुप बैठने वालों में से थोड़ी है। आज तो भाई जमाना बहुत आगे निकल चुका है, और कई बार हम कहते हैं कि इतना ज्यादा, हद से ज्यादा आगे निकल चुका है जमाना कि कई बार हम खुद नहीं जानते कि भाई जमाना किस दिशा में जा रहा है। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार कहते हैं ना कि चलो बोलिए, मैं हम नहीं कहते कि ना बोलिए, पर बोलने के साथ साथ हमें ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी है कि जो भी आप बोलते हैं बिल्कुल आपको अच्छा बोलना है, ना कि ऐसा बोलें कि दिल दुखा दे। पर कई बार ऐसा होता नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हमारी बातें करता है या हमें बातें सुना देता है, क्योंकि चुप तो हमसे रहा नहीं जाता। और यहां पर भी एक छोटा सा खत आया है, एक छोटा सा मैसेज हम कहेंगे। बिल्कुल, हमें समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम आपके मैसेज को पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये मैसेज दूसरों तक जरूर पहुंचा पाएं। और आपने भी बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही गहरी बात कही है। आप लिखते हैं, वैसे बातों का तो कभी अंत नहीं होता। वो कहावत है ना कि जितने जितने मुंह उतनी बातें, उसी तरह जितने लोग उतने सोचने के अलग अलग तरीके। क्या हमें अधिकार है कि हम किसी को, किसी के भी साथ हम इस तरह का व्यवहार कर सके या इस तरह की बातें कर सके? फिर क्यों लोग अपनी टिप्पणी व्यक्त करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं? हम बिना किसी को जाने अपनी राय बताने में लग जाते हैं और बिल्कुल हम इनकार उनको रोक भी नहीं सकते, ठहर कर ये भी समझने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके समझने का ढंग ऐसा क्यों है। अक्सर हम अपनी बातों को सही करते करते दूसरों की बातों को गलत साबित कर देते हैं। कभी कभी दो पल ठहर कर दूसरों की बातें सुनकर या दूसरों को सुन लेना उतना ही हमें बुरा नहीं होता। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे कि किसी किसी की बातों को सुन लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बातों पर बात अगर छिड़ जाती है तो उसे समझने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए।

कि आप उन बातों को सुन सको, समझ सको, ना कि अपने अपनी बात रखने के लिए आप अपना क्रोध व्यक्त करो। बिल्कुल सही कहा। और क्या किसी के मन में कोई तूफान भी उठ रहा है, ये बात भी हमें समझना चाहिए। वो किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या सुख दुख बांटने का तरीका ये हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, या इतना ही नहीं, आप ये भी लिखते हैं कि अक्सर बातें बिना कहे भी छिड़ जाती है जब मन में कोई ऐसी भावना होती है, लेकिन लोग हमारी बातों को सुनने के बजाय, समझने के बजाय कई बार बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच अगेन। आपके इस कार्यक्रम में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने के लिए, और बेशक आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना आप इस कार्यक्रम में भाग जरूर ले सकते हैं। 4028070 नंबर है हमारे रेडियो मनोरंजन का, जहां पर हर शुक्रवार के दिन शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच हम जुड़ते हैं एक लाजवाब एक्सपीरियंस, एक लाजवाब भावनाओं से भरपूर कार्यक्रम में। आपकी चिट्ठी मिली और बेशक आपके मैसेजेस, आपकी चिट्ठियाँ बहुत मायने रखती हैं। 5250-6200 पर भी आपके मैसेजेस हमेशा आते रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रशंसा भरे शब्द, चाहे आप मॉरिशस में हो या मॉरिशस से कहीं दूर, इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़े रह सकते हैं। So with this, time to say goodbye. हो चुका है समय आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर स्टॉप करने का, पर आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। और चलिए हमारे बाद कलाकार के बाद कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं रोशन हरनाम, उनकी लाजवाब सी, चुलबुली सी बातें और हमारे स्थानीय कलाकार का इस कार्यक्रम में साथ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लाजवाब। तो ज़रूर आप उनका दिल से साथ दीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और बेशक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: जाने ये क्या हो गया, बहुत ही सुंदर सा गाना चल रहा था, प्रोग्राम था, आपके चिट्ठी मिली अपन सखी रत्ना जी द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा और हम तो जाने लायक फीडबैक तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बधाई हो रत्ना बहन तुहरा। और अभी शाम के 5 बज गल बा,
2: कलाकार की बात

सभी हम निकेश श्रोतागण के भाई बहन लोग के संघतियागण के हम बोलीला बहुत ही प्यार भरा नमस्ते कलाकार प्रो कलाकार

कार के बाद प्रोग्राम है जो न हर शुक्रवार के सांझ के बखत चलेला 5 से लेकर 6 बजे तक तो हर एकदम बहुत ही बढ़िया स्वागत बा रेडियो मनोरंजन के लहर पर हम त जानिला कि बहुत बड़ी संख्या में तो लोग रेडियो सेट के करीब आगल हो जा और ई जाने खतिर कि आज हमनी के जो कलाकार होवन जा ऊ के होवन

ना हमनी ओकरा भी प्रस्तुत नहीं करब जा ओकर आवाज में एगो बहुत ही बढ़िया सुन गाना सुना जा हाय गाना सुना और अनुमान लगाओ कि ई गाना जेकर आवाज में है ऊ कौन कलाकार है हमनी के तो चला गाना पहली बार के लिए सुना जा और एकर बाद में हमनी हम मेहमान से बात करब जा

0: प्यारे प्यारे साथीगण कलाकार के बात रोशन के साथ तो हर एकदम बढ़िया स्वागत बा ई रेनू मनोरंजन पर और अभी अभी सुन लो बहुत ही बढ़िया गाना राधा के सोभेला और ई जोन गाना है एकर में चर्चित हो बा राधा जी और कृष्ण जी राधा कृष्ण के जो लीला है वो तो एकदम अपरंपार है संस्कृति के और जागृत करेला और मधुर मधुर आवाज जेकर रहल तू पहचान ले ले हो जा हमेशा उनकर गाना तो चलते रहेला हमनी के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहर पर और हमनी के आज के मेहमान होवन आज के कलाकार होवन भोजपुरी जगत के महारथी श्रीमान कृष्ण धनराज ओकेज जी बहुत बहुत स्वागत बा तुम्हारा चाचा जी नमस्ते
1: नमस्ते
0: कैसे हो अच्छा चाचा जी
1: देखिए सबसे प्रथम तोरा बोलब ई हम के बहुत उत्साह देला अभी हाई उम्र में अभी जितना जितना हमार दोस्त परिवार उत्साह देवा था तम के नहीं बुझला हम हाई उम्र के हैं
0: तनको ने बुझा था कि तू ई उम्र के हो हम तो नहीं जानत है तुम्हारी उम्र हम तो देखा था
1: बहुत जाए के आगे बोलब
0: हम तो बोलीला बहुत ही फिट एंड फाइन हुआ
1: तो इस संगीत के थी माध्यम
0: हाँ तो चाचा जी तुहर बहुत ही बढ़िया स्वागत बा हमने के श्रोतागण के बतावा कि चाचा धनराज ओखेज जी कहाँ रहेलन और जिंदगी में का करेलन
1: जिंदगी में देखा जस्ती बोलबा कृष्ण न तो सब कोई जानी
0: हाँ
1: धनराजवा से उतना
0: उतना कोई परिचित नहीं हुआ
1: परिचित नहीं बा
0: हाँ हाँ बोला कृष्ण जी
1: हम 13 साल से हमर एगो जीजा रहल तो एगो समाज बनेलक संगीत समाज
0: संगीत समाज
1: हाँ तो संगीत समझवा में तो हमनी के उत्साह बढ़ेलन से जनता लोग और जितना समाज में रहल हारमोनियम ताबल सब इकट्ठा करके हमनी के दिलन जा सीखे के तो जे सीखलक ते सीखलक मैं हमर जीजा जी जो का नाम रहल सोनालाल बीरबल वो हमके खूब अच्छा से मन से सिखैलक कैसे स्वामी दयानंद
0: हाँ।
1: के 3 गो चेला रहल
0: हाँ।
1: लेकिन उ में एगो अथी जब गुरुवीर जानन
0: हाँ।
1: चेला के लेवल अलग पढ़ाई के तो एक गो के खाली ले ले रहल गुरुजीवा जान गेल ई बस की 3 गो कबूतर देलक बोले जहाँ कोई नहीं लौकी जाके मार के चलावा तो दू जना जाके मार के चल
0: हाँ।
1: लेकिन गुरु अथी स्वामी दयानंद
0: हाँ।
1: मूल शंकर
0: हाँ।
1: वो बोले चाहे गुरु हम के अपना या नहीं हम कबूतरवा के नहीं मारब जाके लौटा दिलक जिंदा तब गुरु बोले क्या हुआ बोले नहीं नहीं सकब हमके कोई देखा था कोई ना कोई आप नहीं देखा हुआ कोई

0: ना कोई देखा था हमके ऐसे बुझा था तो अब दुगो के बोलक जाके घरे बोले तू सगबा हमर चेला बने
1: बहुत अच्छा चाचा
0: जी धारणवा काय बोलत हैं कि से हमर सब कोई सीख ले बामनी के गांव में सब कोई आवे मैं दिलचस्पी नहीं रखलन जा मैं हम हमर माता जी के आशीर्वाद से वो गीत गवाई में जाता लगावे घरे गाए तो के सुनते सुनते जब अब तब हम गावत नहीं मैं मुँह यहाँ रहल गावत नहीं तो बहुत खुशी रहे और हमार जब शादी करनी हमार बुढ़िया भी हमके साहस दिलक हमार सारा परिवार हमके साहस दिलक खास करके हमार बेटा लोग हमार सब तैयार कर दे सबके कुछ नहीं चाहिए करेगी आई जोन अभी बजल है राधा के सोभेला
1: राधा के सोभेला हाँ
0: तो वो कैसे कैलन सस्ती जो मैं बनैलन जा हम कुछ नहीं जानी ला
1: अच्छा
0: सब वो लोग करेलन अभी तक जोन चीज करी ला अभी जोन गीत बनाई ला वो लोग सब करी ला
1: अच्छा बहुत चाहे
0: अच्छा। यूके में हम जा और हमारे दुगो बेटा मॉरिशस में बा वो हमके कुछ करे के नहीं
1: सब जिम्मेदारी लोगे के
0: बा हाँ आज ये हम हैं वो लोग के धरला
1: हाँ, लोग के बलबूते हाँ, पर
0: बलबूते पर बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलीला ऐसन नशन बेटा सब माँ बाप के दे लेकिन
1: हाँ,
0: एगो बात बोलब
1: हाँ,
0: हम लोग के मोटो कार कार हाँ, इत्यादि नहीं देनी हाँ, उन लोग के खाली संस्कार देनी
1: बहुत अच्छा जैसे तू अपन माता श्री से संस्कार पहला
0: हाँ,
1: वही संस्कार तू अपन बेटा में डला जा
0: हाँ,
1: और देखो ऐसन जमाना गरबा जहाँ पर लड़का लोग माता पिता के गदाने नहीं हाँ, सर परंतु तुहरा चार चार गो बेटा बा इतना हाँ, सहयोग देवत हुआ जा हाँ, काहे कि जाने लन जा कि अपन पिताजी जो इंक्रेशन जी हुआ बहुत ही बढ़िया कलाकार हुआ और कला के क्षेत्र में तुहरा आगे बढ़ाई में लोग के एकदम बड़ा योगदान
0: बहुत धन्यवाद
1: हाँ बहुत बढ़िया चाचा कृष्ण जी और है जो राधा के सुभेला इमें राधा और कृष्णा भी बा हम तुहरा प्रोग्राम से पूर्व तुहरा से बात कर रहे जा त हमके बुझा कि तू एगो धार्मिक पुरुष हुआ और हिंदू धर्म चाहे वैदिक धर्म हो अभी तू स्वामी दयानंद जी के चर्चा कर ला अभी तक श्रावण मास बा और सगरो वेद के प्रचार प्रसार होते बा श्रावण मास में पूरा एक महीना तक सभी लोग यज हवन कर जा और स्वामी दयानंद जी के नाम ले ला और राधा कृष्णा जी के नाम ले ला तो जो धार्मिक शिक्षा है तुहरा कैसे तुहर प्राप्त कर ला
0: देखा बोली ना मर जीजा के ओकर बलबूते से तो हम आज ले प्रेसिडेंट रहनी समाज के
1: अच्छा
0: अति चाहे आर्य चाहे पुराणिक
1: हाँ।
0: हम दोनों में चली बस हमने कलाकार ही हाँ। हमने के में भेदभाव नहीं हाँ।
1: वैदिक या पुराने की कोई ना
0: मान नहीं नहीं नहीं सब हाँ। सब हम एक समान मान
1: एक समान
0: तू जा जैसे चलब
1: हाँ।
0: हम जहाँ हम के बोलबा गीत गाय के हम गाव
1: बजा हाँ। सनातन धर्म तो यही है सनातन का मतलब इटर्नल
0: देखा हम कीर्तन करीला
1: हाँ।
0: यहाँ से तू डेडू से हम कहाँ उन्हें जहाँ एयरपोर्ट बा
1: हाँ।
0: हुआ हम के बुलावे लन जा तम हाँ। देखा हुआ परी बा एगो टोली हुई ना हुआ
1: हाँ,
0: बोले नहीं चाचा जी तोरा हम बोलते हैं अभी लेस पेगा जब अभी
1: हाँ।
0: सामदी के
1: अच्छा
0: नहीं दिमास के वहाँ सूर्य पूजा हुई
1: सूर्य पूजन
0: हाँ, हाँ। अब ओकर में भजन ओकर आरती सब तैयार करे के चाहिए हमके
1: तो सूर्य पूजन काहे होला चाचा जी बोला हमने
0: चाहिए ना सूर्य पूजन जे आदमी करी
1: हाँ।
0: तभी तो सूर्य उड़ गल बाबू तो सुतले बा
1: हाँ।
0: तो कहा हाँ। नहीं, नहीं
1: समझ गया तो हरा समझ गया हाँ।
0: तो सूर्य से पहले जे उठेला
1: हाँ।
0: चमक जन ओकर किरण है हाँ।
1: जो पहला किरण धरती पर गिरे
0: जे देख लेला हाथ जोड़ लेला
1: तोहर एकदम कल्याण हो जाए
0: एकदम कितनो बीमार अब तोहर स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो पूछे से तू कैसे ऐसे रह ले तो हम हमर में एगो चार चीज है चोरी नहीं करीला कोई के झूठ नहीं बतियाला
1: कहा बोले
0: और कोई के धन पर हम लुभायला नहीं
1: बहुत पराया धन पर नजर नहीं
0: डालेला और हम ज्यादा दान खुशी रहा करेंगे
1: बहुत बढ़िया तो इतना बात बोल दे हमने कि जैसे हमने बोलब जा ट्रेजर जैसे बोली राजा बहुत ही स्वर्ण जैसन बात करत हुआ हमने संगे इतना चीज बोलत हुआ हम तो असमंजस में पर गए इतना ज्ञान बात तुहर में चाचा जी तुहर अनुभव अथाह अद्भुत है तो हमनी के श्रोतागण के बता दे रजा कि तोहरों मौका मिली चाचा जी से बात करे के

0: और हमने के प्रश्न के जवाब देके इतना चीज हमने के चाचा जी बतायलन त 4028070 में 4028070 में हमने के प्रोग्राम में भाग ले सकब बात कर सकब हमने के आज के जो कलाकार हो अंजा श्रीमान कृष्ण जी और ओकर एगो गाना भी सुन ल राधा के सोभेरा और कृष्णा के बांसुरिया तमनी के बतावा ओकरे गाना से गो प्रश्न निकालत है त कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज जोन रलन ओकर जन्म कहाँ हो रहल हमनी के जल्दी जल्दी बतावा योगीराज श्री कृष्ण जी के जन्म कहाँ हो रहल चचा जी तो हंसत हुआ न ओके हम नहीं बोला था जवाब दे के तोहरा जवाब छना दे के तब तक हमने चचा जी से बात करी ल जा तब बातों बातों में चचा जी बोले रल के गो भोजपुरी एसोसिएशन बा जेकर में तू सदस्य हुआ जा एकर बारे में तेनी चर्चा कर
1: दिखा हम इकला एक व्यक्ति नाम नहीं बोले बोकर हमने के घरे आल बा दिखे हमके दो व्यक्ति बोले हमने भोजपुरी के वो अथी करती सर तो हम गई नहीं मिली अच्छा काम करे था पूछा दे गई नहीं जाऊँ वहाँ हुआ जब गल है तो कलाकार लोग आल बा हम जो जानी ना होके बोले सर जब हुआ गई नहीं तो कलाकार देर आल बा अब तबला बजावे ला कोई नहीं बा
0: देखा था
1: तो हम बोली जन जनवा हमके ले गल हमरी तो कैसे आयोजन कर ले जा तब हुआ से हम निकल करके हमारे गो दोस्त बा उ देश रहल ओकर नाम है विक्रम
0: अच्छा
1: कोलाचन
0: अच्छा तो चला एकर बारे में बात कर सभी तुरंत लेकिन एगो श्रोता चला बा चाचा जी तुहर अनुमति से ओके से बात करी रहा हां अच्छा चला दुगो श्रोता अगर बा तो चला दोनों से हमनी बात करब सा पहला श्रोता से बात करी ला जा पहले तब हेलो
2: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते जी लेकिन पहला श्रोता किरलन हेलो जोन बोलन हेलो
2: हाँ हेलो नमस्ते रोशन जी हम कतर से आशा जानू बोलते
0: हैं अच्छा आशा जानू जी तो कैसे हुआ जा आशा जी
2: हम ठीक है रोशन जी और आज के दिन हम के चाचा जी आल हवन हाँ। उनका हम सादर प्रणाम बोलते हैं उनका तो पहलावे जो गीत सुने राधा नाथ कृष्ण के बाद सुन गया इत हमी के एगो लोक गीत है जे सब दिल में भक्ति के जोत जला देवेला
0: बहुत अच्छा
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: तो चाचा जी के ऐसा ढेर सारा गाना बा आशा जी बाद में चला आपसे तो ओकर में कृष्ण के चर्चा हो रहल हमनी के बताओ कृष्ण जी के जो जन्म कहाँ हो रहल
2: मथुरा में
0: तो चला हम तुम्हारा जवाब नोट कर ले रहे हैं आशा जी दूसरा श्रोता से बात करी ला जा धन्यवाद आशा जी
2: नमस्ते
0: हेलो
3: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते तो शोभा जी ओवन हमेशा भाग ले रहे हो आशा जी
3: जा रहे हैं चाचा जी को भी नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते बेटी
0: बाकवा से हमने से बात करत हुआ शोभा जी
3: हाँ।
0: और बहुत धन्यवाद भाग लेवत हुआ पहला गाना सुन ले चाचा जी के
3: हाँ ये तो मन मोह ले रखी गाना हम तो बहुत खुशी लगी गाना
0: हाँ सुनने हुआ जा
3: के सो भेला बांसुरी
0: हाँ आज चाचा जी की आवाज कैसे लगा चाचा जी की आवाज कैसे लगा
3: आवाज भी एकदम सुंदर आवाज
0: हाँ
3: गीत हम हमेशा सुनीला
0: हाँ
3: बहुत खुशी लगी सुने की
0: तो आप जो हुआ राधा कृष्ण के बहुत ही पसंद करेला ना
3: जी हाँ जी हाँ
0: तो बोला शोभा जी कौन जवाब दे बजा
3: हमारा जवाब है मथुरा में जन्म के
0: तो हमने के चाचा जी से पूछी ला जा सही है कि नहीं चाचा जी मथुरा वे है
1: हाँ मथुरा निवासी
0: हाँ
1: लेकिन कारागार में
0: हाँ कारागार में लेकिन मथुरा में उकर जो ना जगह है ना
3: हाँ
0: जगह मथुरा में रह है ना हाँ तो तोहरा का बोली तोहरा शोभा जी तोहरा जवाब रॉन्ग नहीं है बल्कि तोहर जवाब एकदम सही है
3: हाँ
0: बहुत ही बढ़िया आशा जी और शोभा जी दोनों के बधाई धन्यवाद तो देखला बहुत श्रोता तोहर पान हो गल बा तोहरा सुनते रहे लंजा चाचा जी है ना
1: देखिए ना जन जोन साल में है गीत हुआ बजता
0: हाँ
1: तो गाँव बासे कर नियम
0: गाँव बासे कर
1: पूजा कर रही
0: हाँ
1: परी तलाव
0: हाँ
1: तो सकेले को 50 से जस्ती आदमी ए भैया तू ये गीत गा गेले हुआ ए भैया हे चाचा हे दादाजी ऐसे तो उ दिन में बोली का ही पूछा तो उनसे कौन सी भाई गीतवा में तो हम अपन महसूस करनी कि नहीं ई हम नहीं

0: भगवान और जे है गीत हुआ गा ले हमने के पुरनिया जोग उ लोग गा के तब हम के दूसर भाव में गई नी धन्य हो और एकदम हमर नाम कृष्णा है
1: तो नाम कृष्णा हाँ बिल्कुल
0: तई भेजे लाई ऊपर वाला
1: हाँ
0: भेजे लाई
1: जितना तोहरा एकर से पॉपुलैरिटी हाँ, लोकप्रियता प्राप्त होल बा हाँ, फिर भी एकर श्रेय तू ईश्वर के देवत हुआ जा
0: तो है एमबीसी द्वारा हमके पहला पुरस्कार मिलल हाँ एमबीसी द्वारा बहुत बधाई देवत है
1: बहुत
0: हमर हमर एल्बम पहला कर ले रहा
1: हाँ बहुत अच्छा हाँ
0: प्राइस मिलल चैलेंज कैप क्या चैलेंज नहीं कैप मिला रहल
1: अच्छा
0: हाँ
1: ट्रॉफी वो सब मिला
0: ट्रॉफी सब मिला और एगो प्रमाण पत्र भी मिला रहल
1: बहुत अच्छा तई माता सरस्वती के कृपा है
0: हाँ
1: ओकर तू पुजारी हो जा
0: वो बोले ला एक कदम बढ़ाओ तुम मैं हाँ, 10 कदम बढ़ूंगा
1: क्या बात है बहुत ही बढ़िया बात बोलत हुआ तू तो ई जो गाना अभी हमने चला जा कृष्ण जी के ई गाना हई साल में तब बहुत ही हलचल में चले रहल नारी के जहां गिरल बा पसीनुआ ये
0: हाँ।
1: बहुत सुंदर गाना है तो चल है गाना पहले सुनब सा तो बातचीत जारी रखब जा ये गाना के बाद का बोलत हुआ कृष्ण जी
0: हाँ, एकदम
1: अरे अच्छा तो चल हमनी के साथ जुड़ल हुआ जा कलाकार के बात में जोन चलेला है जा हर शुक्रवार के सांझ 5 से लेकर 6 बजे तक याद रखिया 5:50 पर हमारी धरोहर प्रोग्राम तोहर कहते रखल गलबा तो चला ई गाना सुना पहले
2: You're listening to RM3 Radio Man

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: कलाकार की बात, कार की बात।
3: कलाकार के बाद कृष्ण धनराज ओकेज जी के साथ बहुत ही सुंदर सा गाना भी चला दिखला सुनला इतना बहुत ही तहलका मचेलक चौट बस्तर गाना रहल गत साल के एकर जो न शब्दावली बा बहुत ही बढ़िया नारी के चर्चा हुल बा जहाँ पर उकर पसीना बहल बा तो चला हमनी तो से को प्रश्न पूछब जा पहले हमनी चाचा जी से पूछी ला जा कि है जोन गाना है कोची है ये सोच के तू है गाना निकल रहा चाचा जी बोला
4: देखिए ना जब सोचबा ना तो बहुत तरह तरह के बात तोरा दिमाग में आवेला तो कैसे अभी वो नारी पर लिखनी अभी हमार बेटा केतन से बोलत हैं कि है गीतवा पर काम करब सभी
3: अच्छा तो केतन जी जो गत सप्ताह रहलन है जा
4: हाँ बोले हाँ चाचा है तनी थोड़ा प्रोग्राम बा भी है महीनवा है हो जाए ना तो है जो बनेले हैं वो बनल बा भी तैयार हो गल बा कि घर घर में माई बाप शराब पिएला लड़का देख देख के वो भी पिए लगेला शराब के नदिया घर घर में बहेला लेका देख देख के वो भी डुबकी लगावेला
3: अच्छा ये तो बहुत ही
4: हम जानी ला कोई नहीं खुशी रही
3: नहीं कहीं नहीं बहुत ही जैसे बोली ला जा संगीन विषय में बात करत हुआ हाँ बहुत ही सीरियस मात्र है ये तो और सच्ची बात बोल रहा जो आदत है शराब के एकदम है खराब है ना एकर से सिगरेट्स अल्कोहल और ड्रग से रह दूर तो हमेशा तो हर जीवन में छाल रहे
4: जीवन में बेटा बहुत पीले आई
3: अच्छा
4: मैं एक दिन अपने से बचिए नहीं हम
3: हाँ
4: अपने आप से
3: अच्छा
4: बताइए हम इतना उपदेश देला हम काहे पीला सिगरेट भी जरावत नहीं
3: अच्छा
4: तो ढेर कोई शराब खाती संगीत
3: छोड़ दे
4: विलन सा हम संगीत खाती शराब छोड़ देनी
3: क्या बात भाई तो बहुत ही बढ़िया तू बात कर ला ये तो तालियों के गूंज से तुहर अभिनंदन चाहना करेगी बहुत ही बढ़िया था तू जोन हुआ सिगरेट और शराब जोन है संगीत के खातिर त्याग दिला
4: हाँ
3: बहुत ही बढ़िया
4: यहाँ बहुत जो निशा मिले ला है मैं
3: हाँ संगीत
4: हाँ,
3: में
4: निशा नहीं बाबू मैं
3: नहीं बाबू मैं हाँ
4: रसातल के ओर है
3: सच्चे
4: तोरा सब आज ही बोल लेका
3: हाँ
4: बोला था कि दादा हम सुधार गए हैं हम तो संगीत आओ बब
3: हाँ
4: तमली हाँ अच्छा बा
3: हाँ
4: है बस की सुधर जी बताओ तोहर लिए बहुत अच्छा रही
3: हाँ कहे नहीं
4: तब बोले नहीं देखा अब तोहर चर्चा सगरो वेला
3: हाँ
4: तमली बेटा चर्चा से नहीं कर्म से चांला काम कर
3: कर्म से बिल्कुल है? बिल्कुल तो बहुत कोई बोलेला कि सिगरेट और अल्कोहल छोड़े के एकदम कठिन है नामुमकिन है
4: नहीं नहीं, नहीं। जाने ला कैसे है मन को वश में करवा हो ही बेमिसाल है वरना जिंदगानी में कंगालों से कंगाल है
3: अरे वाह क्या बात है बेमिसाल और कंगाल ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहा शराब के बिना तो हर जीवन बेमिसाल रही

0: शराब के साथ तो हर तू कंगाल बन जाए बा।
1: हाँ, कंगाल
0: बहुत अच्छा तो ऐसा नहीं सन बात जो बोला थो अच्छा ना नोट करेगे
1: कैसे के बोले थे जब था सामदी के कमट करे थी सा यानी का मजाकिया मजाकिया भजन
0: हाँ।
1: एगो आपा ही जब ओकर नाती लेके नतिया के बोलता हमके नचाओ खड़ा उगल तब हम बोली हे भगवान सचमुच संगीत में ऐसा शक्ति
0: हाँ हाँ
1: कि तब न कवि लोग लिख के गलबा बोले पंचम रस से गुंगा बोले लगेला है
0: पंचम रस से गुंगा बोले
1: गुंगा भी बोलेला और ओकर रस से पत्थर भी बिगल जला
0: हाँ संगीत में इतना जादू बा
1: इतना जादू इतना हाँ, शक्ति
0: है इतना शक्ति है
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा तो चाचा जी के हर एगो बात जो बोलत हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलत हुआ तो हमने के श्रोतागण इ प्रोग्राम के एकदम पसंद करेलन जा काहे कि हर सप्ताह एगो नया कलाकार आवेलन और उसे सीखे उकर अनुभव जाने खातिर तो लोग उत्सुक रहेला जा तो चलो 402-8070 पर हमने के जवाब देगो और प्रश्न तैयार हो गल बा पहली बार जब कृष्ण जी बोलन कि स्वामी दयानंद जी के वो गुरु रहल बोलन चर्चा करलन इ प्रोग्राम के दौरान अब तो कर जवाब सब दे दे दे रहलन हम नहीं जानत है खोजत है सर कि तो लोग अच्छा से सुन ल हुआ जा कि नहीं तो चल आज कल श्रावणी मास चलता और सगरो वेद पाठ हवन होते रहता और यज हवन हुआ था तो हमने के बतावा कि देव दयानंद श्री सरस्वती जी महाराज के जो गुरु रलन जो गुरु ललन जे नेत्रहीन रलन तो ओकर नाम का है जल्दी जल्दी जवाब दे हमने के 402-8070 पर कि देव दयानंद श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी के नाम का रहल वो बोले रलन तोहरा कि तीन गो कबूतर दिले रलन ये कहानी तो खूब अच्छा से सुनैलन चाचा जी तो जल्दी जल्दी हमने के जवाब दे तो हमने के बताओ तोहर जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है कृष्ण जी कोची तोहरा भविष्य में कौन कौन प्रोग्राम करे के तुहरा मन करता कौन सी सोचले हुआ जा नई पीढ़ी करे खातिर और अपन भोजपुरी एसोसिएशन के आगे बढ़ाए खातिर कोची चाहना करे के भविष्य में बोला
1: हमर अथीबा लक्ष्य कि हम चाहे हम गाली सुनब कोई बात नहीं लेकिन हम घरे घर जाब हमार अभी एक जना से बोलनी है घरे घरे जाब सर तोहर लैका के विदा कर मंदिर शिवाला विदा कर कुछ ना कुछ सुखाव से जो जानी ला
0: अच्छा
1: तो 10 गो में जे 2 गो मिल जाए तो हमनी के
0: लक्ष्य पूरा हो जाए
1: तो कैसे है भोजपुरी कलाकार जन कर ले अभी हमनी के 2 गो लौकता पारित करता जवान में हमारे भाई केतन अरे भाई बेटा आदेश
0: बहुत अच्छा
1: वो लोग सीखियन
0: सा
1: सामे बसंत भाई नहीं मरी हाँ। सोना भाई हमेशा जिंदा
0: रही बिल्कुल लोग की आवाज के अमर कर दिया
1: अमर कर दिया
0: एक श्रोता भी हमने हाँ। संगे बात चला ओके सुन ले ला जा हेलो
2: हाँ नमस्ते रोशन जी भाई जी को मेरा प्रणाम
1: प्रणाम
0: श्यामा जी हुआ जा हाँ गाँव गोप से इतना जाना
2: हाँ, पहचान बदल गया नहीं ना
0: नहीं बिल्कुल नहीं तुम्हारा आवाज पहचान ले ली हम तो है आवाज सकब से भुलाई
2: अच्छा हमार पहचान है ही ना
0: हाँ बिल्कुल तो प्रोग्राम कैसे लगा था तुम्हारा
2: अच्छा लगा था बहुत सुंदर था प्रोग्राम
0: हाँ तो बोला कौन जवाब देब
2: हम बोला वीरजानंद गुरु वीरजानंद डंडी जी
1: बहुत धन्यवाद
0: हाँ चाचा जी बोले थोड़ा एकदम सही जवाब दे रहा जा बहुत धन्यवाद
2: हम जब से जानीला ये जानीला
0: हाँ
2: दूसर को के नहीं जाना स्वामी दयानंद के जानीला गुरु वीरजानंद डंडी जी के जानीला
0: हाँ बहुत अच्छा
2: को सब तो हम बोल दे लिया
0: धन्यवाद श्यामा जी ऐसे ही भाग लेते रहिए चलो
2: हमने कमुआ छोड़ के सुन लिया
0: नहीं कोई बात नहीं जब जब समय मिली तभी आप जवाब दिया और अब भाग लिया ओके
2: बहुत धन्यवाद हाँ चलो
0: शुभ संध्या चलो दूसरा श्रोता के सुनी ला जा हेलो
3: हाँ रोशन जी फिर से शोभा
0: हाँ शोभा जी तो स्वागत बा एक बार फिर है प्रोग्राम हुआ में तो कौन जवाब दे तोहरो जवाब वही है
3: हाँ स्वामी दयानंद जी के गुरु जी रलन स्वामी वीरजानंद दासी हाँ, दिशा
0: हाँ वीरजानंद जी
3: हाँ,
0: नेत्रहीन रलन हाँ, और बहुत ही सुंदर जवाब देला
1: पूरा नाम बता लन पूरा नाम
0: पूरा नाम बता देला तू तो हाँ पूरी हिस्ट्री बता देला
3: ओके ओके
0: तो चलो शोभा जी खातिर और श्यामा जी खातिर जोरदार ताली हो जाए बहुत धन्यवाद। देखा तो

0: कृष्ण जी तोहरे जो बात करल पर तोहरे गाना पर हमने प्रश्न निकाल के पूछा था जा हर एक बात जो बोलत हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलत हुआ ता बोला भी कि सग्रो जेब 10 लड़का में से 2 लड़का के सक्र तू फोमाशो दे तही बस बा
1: देखिए अभी कैसे बुधवार 12 तारीख के
0: 12 तारीख के हाँ
1: थोड़ा लड़का दिखाई भैया मर संगेवा
0: हाँ
1: चिमटा बजावेलन
0: अच्छा हाँ
1: लगभग 6-7-8 महीना लोग के सिखावत है जा हम अकेले नहीं बहन जी लोग बाबू हाँ, साथ
0: सब मिलजुल के
1: हाँ मिलजुल के हाँ। और लेकिन के अभी आनब सा लोबिन बहन
0: अच्छा
1: मौका देले बा हाँ। बुधवार के 9 बजे यहाँ जा
0: अच्छा
1: तो लेकिन के प्रस्तुत करे सा उलोग के उत्साह बढ़ा सा
0: अच्छा
1: उ लोग देखियन सा टेलीविजन में और संगतिया बोली ए अति लिकोल के संगतिया लोग बोली ए तो के देखनी टेलीविजन में तो उनका उत्साह बढ़ी
0: बहुत अच्छा हाँ
1: ता आर सीखे के लड़का लोग मिली
0: हाँ
1: पाकिस्तान में बधाई दिला लोग के
0: हाँ
1: और समाज के
0: हाँ
1: और साथ धला वहाँ फ्लैग के इगुआया के
0: हाँ सब
1: बेलमा के लड़का लोग सब आवेला
0: आवे रंजा
1: ता अच्छा लगे हम के
0: हाँ जो माता पिता है अब बहुत सतर्क हो गलो अंजा काहे कि सगरो देखत हुआ बहुत ही समस्या बा ता लेका के अच्छा रामे डाले खतिर संगीत हम पढ़ाई लिखाई
1: तो हर बात काट के बोलते हैं
0: बोला
1: हम घर यानी सितार सीखे
0: सितार भी सीख ले हुआ
1: तो हर गांव में त्रियोले
0: त्रियोले में
1: एडेन लगे
0: हाँ एडेन
1: एडेन
0: हाँ,
1: गुरुजी लगे
0: हाँ
1: भगवान करे जहाँ होए
0: हाँ
1: अच्छी सही सही सलामत रही
0: हाँ
1: ता वहाँ हम घर नहीं देख वहाँ परी डॉक्टर चाहे बायरिस्टर सब अपन अपन लड़का लेके आलवा हुआ
0: देखा
1: था लड़कवान के एक घंटा कुछ ना कुछ चाहे सितार सीखी चाहे तबला सीखी चाहे
0: हाँ।
1: और गुरुजी वह सब चीज जाने लगा बजाई
0: हाँ
1: भगवान के वरदान
0: हाँ। हो हाँ वरदान हो के मिलल बा
1: मिलल बा
0: सच्चे के हाँ
1: हाँ तो तंबली दिखा ना और हमने के मामूली मामूली इंसान बोले ना मैं लड़कवा जे पढ़ी भोजपुरी हिंदी तब फेल हो जाए
0: कैसे ऐसे सके
1: एगो दूसर उदाहरण दिला
0: बोला
1: हमारे गो तबला वादक रहल सैंपिया
0: हाँ
1: हमके जाए के बा कॉम्पिटिशन में
0: हाँ
1: हवे दिन बोला था नहीं सकी आई तो हमार बेटा काल जाए कॉम्पोजे करे
0: हाँ
1: एच एस सी तो हम अपन मन में बोली बेटा जे फेल हो गई तो फेल हो जेबी मैं चल तू हुआ गई नहीं सा पहला करनी सा वो अपन एग्जाम में पास हो गल 5-6 को काम मिलल होने जाता कहाँ कौन
0: कहाँ कहाँ जाए इतना ऑफर हाँ। मिलल करो कर
1: इतना ऑफर मिलल तो धन्य हो भगवान
0: हाँ।
1: माता सरस्वती
0: बिल्कुल हाँ। देखा तो जो संगीत में रुचि रखे हाँ। आगे बढ़े के
1: बोले सर हाउ पढ़ी तो है नहीं का है बोले
0: का है नहीं सब
1: जितना जो जो हाउ पहले के चीना जाति लोग उन लोग के लिए का कुछ ना कुछ बजावत लन सा
0: काहे नहीं
1: जब पढ़त पढ़त भोर हो गए लन सा
0: हाँ
1: हाँ बजाए लगे तो लोग के बुद्धि स्थिर होला
0: स्थिर होला सच्चे
1: के तभी नहीं समझेला
0: अरे को बुद्धि के रिलैक्सेशन हो जाला
1: हाँ
0: चले को श्रोता से बात करी ले जा देखी ले जा के हो वन फोन पर हेलो
2: हेलो हम केतन महाराज जी हैं कलकत्ता के सुपुत्र
0: अच्छा
2: हाँ
1: हमर करेजा हाउ
0: आ तो है पिताजी आज बात करत हो हन ये तो बहुत ही बढ़िया
1: बोल दिले हम के जे शादी करी तब
2: आ के रली
1: चाचा तू ही हमर पिताजी था रही
0: बोला तो कौन नाम बात है कौन नाम है
2: केतन महाराज केतन केतन
0: ऐ केतन जी तू ही तार गत सप्ताह के हाँ
1: देखा जहाँ जाए हम के शुरू करेगा
2: हाँ गीतवा सुने चाहत है
0: कौन गीत
2: जय जयकार करो
1: तो भजन है बेटा
2: सत्य नारायण नारायण हाय गीतवा जब गावेला तो हमर जय छनछना जाला
0: हां तोहरा तोहरा गेटे जो न खरी हो जाला
2: हां
0: हां तो चला तू
2: उनकर मुखारविंद से दो दो दो लाइन केवल
0: अच्छा तो केतन जी लाइन में रहिया फोन नहीं कटिया तोहरा अभी लाइव एंड डायरेक्ट सुना वो से चाचा जी की आवाज में हो गाना जो नबी फरमाइश कर ल
2: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

0: की सत्य नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण दिल भगल बेटा
1: जय हो मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद केतन जी प्रोग्राम में तोहर उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके बहुत तभी अभी मॉरिशस में ओकर चर्चा होता जहाँ जायला ऐसी ऐसे तब बेटा बढ़ते रहिए मलाल हमर तुम्हारा आशीर्वाद तो सर बढ़वा।
1: अच्छा केतन जी तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया बैठे बैठे तुम्हारा आशीर्वाद सब मिल जाता। अच्छा केतन जी धन्यवाद आपको
2: ठीक बा
1: ओके। तो चलो हमनी के आज के कलाकार होवन श्रीमान कृष्ण धनराज ओखेज जी जेकर पास एकदम बढ़िया अनुभव बा और भोजपुरी जगत के एगो बहुत ही चमकीला सितारा होवन और कितना दिन से गावेलन भोजपुरी क्षेत्र में बहुत कुछ करत होवन और आज बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमने के रेडियो मनोरंजन के स्टूडियो में आल होवन और इतना गुड रेस्पॉन्स मिलता बहुत श्रोता लोग भाग लेते हुए हमने के क्विज में और चाचा जी से बात भी करत हुआ जा तो हमने के बोला चाचा जी अभी केतन जी से बात कर ल और बोला था कि लड़का लोग के तू शिक्षा प्रदान करत हुआ तो तुहरा बुझाता कि मॉरिशस में भोजपुरी के जो भविष्य बा उज्ज्वल बा
0: देखा को बात बुलीला।
1: हाँ
0: जब से हमने भोजपुरी कलाकार उत्पन्न कर ले जा तम के लौका था ही नहीं मरी हमने नहीं मरे देव से के चाहे हमर प्राण चल जाए मैं लेकिन हमने के समाज मिल के हाई उठान करब सर
1: भोजपुरी के जो मशाल है ओके जलेते रह बजा
0: जाने ला काहे एकर में अइला गइला जाइब अइब जाने कितना मीठा बहु में
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलो एगो बहुत ही बढ़िया गाना सुनब जा हमनी तो एकर में एगो शब्द अवेला कापुक ये
0: मेडक चिलाए मेडक हाँ
1: तो हाई गाना कैसे निकले रला
0: देखा हम घर पर रनी
1: हाँ
0: एक जाना दरवाजा ठक ठक लाए
1: हाँ
0: तो देखी तो एक वो जाना राम जोगाना नाम होकर
1: हाँ
0: तो वो बहुत सज्जन पुरुष है वो
1: सज्जन पुरुष
0: हाँ। देखा हम के बोले एनएन सौते अला थी मैं बतिया था
1: हाँ
0: हम बोली हुई मुमेम सा
1: हाँ।
0: तो छोटा कलाकार है ढेर बड़ा नहीं है बस की जाने लेना हमेशा
1: अपन के नहीं चला महान माने कितना हाँ।
0: जाने ला हमेशा हम बोली ला केतन की भी बोले हैं
1: हाँ।
0: जब दरवाजा छोटा रही तू लंबा हुए झुक हाँ। जाइए बेटा हाँ। तो कपार फूट जाए
1: का बात
0: एक उदाहरण भाई में
1: बहुत बढ़िया
0: चाहे हाँ। तो वो बोला तब वो गीत गाए के तब
1: हाँ।
0: खास हमार गुरु महन गमट के हमार सब गीत वैसे साकुआ रख दे हमारा गीत देख पाई कैसन कौन चीज लेवे भगवानों के हमेशा अच्छा स्वास्थ्य दे
1: हाँ।
0: आर हमनी के साथ बाबू ओकर बिना हमनी नहीं रह सऊ
1: ओके
0: ले हमनी संगे संगे
1: बिल्कुल
0: तो ऊ जोन आज हई अभी गावत हई से ओकर बदलत गमट के अति में
1: अच्छा
0: तो एगो बनेली रहल कितने लरे कितने मरे बुद्धि के तीर है खड़े
1: अरे बा
0: ताई गीतवा गईनी राम जोगाना बोली मिसा नू नू बन सौते हम लीन पू में सा साइमन सा सा लाकोज मन तूला तो बोले थोड़ा दूर जाके फिर लौट के आल बोले भाई कृष्ण है गीतवा नहीं सकब तू उतारे
1: भोजपुरी में भोजपुरी में
0: तो हमली जे मौका दीब तो तोहर साहस से हमने कर देव सा
1: अच्छा
0: हमके थोड़ा दिन दिया पू बेचारा आल अपन सब साहित्य लपा गए लेके तब भैया काम करल तब गवैलक हमके तब हमके बोले अब हमारी स्टूडियो में यह हुआ ओकर स्टूडियो में गई नहीं
1: राम जोगाना जी के
0: हुआ सब अपन कलाकार के जितना ला म्यूजिक रहल सब डाललक डाल के हमर मोटर के पैसा दिलक
1: अच्छा।
0: हमरो बोले है हाँ थोड़ा पैसवा तोहर हम भी नहीं तोहर खातिर बोले नहीं खुशी है हम
1: आज बहुत खुशी के साथ तोहरा देलन
0: देलन तो भगवानों के हमेशा
1: हाँ जहाँ पर भी बा हाँ। के शांति होकर
0: कोई ऐसे नहीं करेला
1: बिल्कुल हाँ तो वो कलाकार के जो मोल है
0: वो असली कलाकार है ओके बोला सिया
1: असली कलाकार
0: बांटेला वो असली कलाकार
1: बिल्कुल
0: अपन ने चोरी चोरी अपन लुका के गावेला वो कलाकार नहीं बनल बाबी ओके जाना बहुत सीखे के अभी
1: सीखे के काहे नहीं।

0: के सागर में जितना डुबकी लगे समुन्दर
1: जितना दान कर वो उतना प्रदान मिले
0: उतना बिल्कुल और कर गहराई कैसे सक बना पे संगीत के नहीं सक बना पे कला के जो गहराई है एगो पूरा जिंदगी बीत जाला संगीत नहीं सक सीखे
1: एगो दोहा में बोले है
0: हाँ
1: कि दो चिंद गीत गा के गवैया नहीं बनबा
0: हाँ।
1: समुन्दर है संगीत ओकर था कोई नहीं आदमी जनबा लता जी से पूछबा के महान बा बोली मुकेश मुकेश बोली रफीक रफीक अपन से पीठी
0: देखिए ना
1: एगो उदाहरण देला तोहर आगे इसे छाती ठोकबा तो ये अभिमान है
0: अभिमान
1: आइए हाथ को पाछे से आशीर्वाद है
0: हाँ ये तो कबो नहीं सुने हैं हम तो
1: पीठ ऐके शरीर है आगे से ठोकब अभिमान है
0: कोई तो पीठ ठोकी
1: पीठी से ठोकी तो आशीर्वाद
0: एक पटन दो बक जैसे बोल जाला ही इंग्लिश में हाँ कोई तो हर पीठ ठोक ठोकाए तो तू सब कुछ पा लेला
1: पा लेला
0: अगर अपन से अपन छाती ठोकब
1: हमता है
0: ये अहंकार है अहंकार से दूर चला रहे के काहे की है जो जिंदगी में है ये जो जिंदगी है तोहरा अपन से नहीं मिलल बा तोहर माता पिता के बदौलत से मिलल बा
1: अरे को बात बोला मगर दू गो महान कलाकार के
0: हाँ
1: बसंत भाई
0: हाँ
1: मुझे हौ जन अति सालवा में गुजरी
0: हाँ
1: जांवी मैम के भेटाल
0: हाँ
1: एक जगह में एगो ललना करे थे निजा
0: हाँ
1: तो वो जैसे हम के दिल के बोले अब भाई कैसा हम जाते ही घरे
0: हाँ
1: तब नहीं हम बोली नहीं संगे रब सा संगे गई नहीं सा संगे गई नहीं ओके घरे छोड़े ओकर आशीर्वाद मिल बा हमके बोले तू एक दिन सगवे नचाई आदमी के बस एक इतने और भाई सोना भी हमके आशीर्वाद दिले बा
0: तो बहुत ही बढ़िया
1: तो जब ओसन ओसन कलाकार के
0: तोहर आशीर्वाद दिले हो जा
1: शायद जब जिंदा रहन से लोग के मान मोल नहीं रहा अभी देखा तो ना
0: हाँ अभी तो सगरो लोग के बोल बाला
1: बा संगीत कलाकार कभी नहीं मरे
0: कभी नहीं मरे ओकर आवाज
1: जब तक सूर्य चांद रही धरती रही तब तक कलाकार के नाम अमर रही
0: बहुत बढ़िया तो चाचा जी बहुत धन्यवाद है जा ऐला बहुत बात बात वैसे सीखे के हमने के लेकिन का करब अभी तो समय हो गल बा 5:50 पर तू सुनब जा किरण जानकी जी द्वारा प्रोग्राम हमारी धरोहर अरे कर उपरांत चाचा जी के हो गाना चलब जा खापुक ये नहीं सुनिया जा बहुत ही बढ़िया तरीके से और एक बाद में देश विदेश के समाचार सुनिया जा तोहर से अनुमति लेके समय आ गल बात चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर तोहर रक्षा करे
1: एमबीसी के खास खास के तू हमके फोन कर ला
0: धन्यवाद
1: तोहरा धन्यवाद देवत है बहुत दिन पहले हमके फोन कर ला नहीं सकनी आई मैं आज माता सरस्वती बोले जाओ वहाँ
0: ओकर बदौलत
1: एमबीसी के हम हमेशा बड़ाई करी ला हमनी तन जान के कर पहचान से हमनी एमबीसी हमनी के प्लेटफॉर्म देवेला के पहचान हो जाला
0: बहुत धन्यवाद कलाकार के शान बढ़ाई खातिर तोहर पहचान बढ़ाई खातिर यही कार्यक्रम के निर्धारित कर गल बा कलाकार के बाद 5:50 हो गल बा श्रोतागण के हमने बोली ला जा नमस्कार और शुभ रात्रि
1: सभी के हम नमस्ते बोली ला हमार जितना जितना मॉरिशस में जितना जाने ला हमके या नहीं जाने ला भी
0: धन्यवाद
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
3: नमस्ते हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा गल हला बात करत रली जा हैंडलूम साड़ी के त आज देखी जा कैसे हमने के देश में ई धरोहर के उतना ही सराहल जाला जितना कि भारत में साड़ी हमने के एगो महत्वपूर्ण धरोहर है 1834 से जब से हमने के पूर्वज लोग मॉरिशस आइलैंड जा तब से मॉरिशस में साड़ी पहने की परंपरा कायम बा और भारत के विभिन्न राज्य से आयल हमने के परदादी लोग के ई परंपरा ई धरोहर आज भी कायम बा और ई कायम रही कहे कि हर परंपरा में हर हिंदू रीति रिवाज विधि में साड़ी आंचरा सिर पर साड़ी के पहलू रखे के रिवाज चल ले आवता और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाला भले ही साड़ी पहने के स्टाइल अलग बा और साड़ी के जो मटेरियल है ओकर में भी बहुत दिखबत वेरिएशन बा

0: अलग अलग हवन स और हर एक सारी मटेरियल के अपन अपन एगो स्थान है, अपन अपन एगो विशेषता है। हर एगो मौका पर चुन के एगो विशेष सारी मटेरियल पहनल जाला। भारत में हैंडलूम साड़ी एगो जाना माना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। मानल जाला कि 8वीं सदी से ये परंपरा कायम बा। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विशेषता है हैंडलूम के साड़ी। हैंडलूम साड़ी हाथ से बनावल जाला और भारत में हाथ के इस साड़ी के बुनाई और कढ़ाई पुराना जमाना आदि काल से चल ले आवता। अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, सूर्य नारायण, तुलसी के पत्ता, पान के पत्ता, हाथी के पाँव जैसन परंपरागत डिजाइन हैंडलूम के विशेषता है। हैंडलूम के ये भी विशेषता है कि उस साड़ी के ब्लाउज भी संगे आवेला, ओकर में जुड़ल रहेला। दूसरा साड़ी में भले ही अलग मटेरियल के ब्लाउज पहन लेबा, लेकिन हैंडलूम साड़ी के ब्लाउज हैंडलूम के ही चाही। अब तो अलग से खाली हैंडलूम के ब्लाउज भी कढ़ाई बुनाई ओकर होवेला और बाजार में उपलब्ध बा। साड़ी भारतीय औरत के सुंदरता ओकर पहचान से जुड़ल है और जितना भी भारतीय डायस्पोरा देश बा जैसे मॉरिशस, उ तो एगो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हियाँ पर भी साड़ी के महत्व उतना ही है जितना कि भारत में, और सब डायस्पोरा देश में भी साड़ी के महत्व उतना ही बा जितना कि भारत में। भारत के पुराना मंदिर में जोन मूर्ति बा हुआ पर भी भारतीय पहनावा साड़ी के अलग अलग स्टाइल और डिजाइन बा, और हुआ भी देखबा कि साड़ी पहने के प्रथा और मैचिंग ब्लाउज पुराना समय से चल ले आवता। भारत में हैंडलूम उद्योग कृषि उद्योग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। एकदम परंपरागत, मजदूरी से भरपूर और गांव के इलाका से भारी संख्या में लोक कला गुण और ज्ञान से निपुण औरत लोग के भर्ती करल जाला। भारत के डिसेंट्रलाइज्ड उद्योग सेक्टर में हैंडलूम उद्योग के एगो महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आज कितने मॉडर्न साड़ी और साड़ी स्टाइल चला बा, फिर भी हैंडलूम साड़ी हर एगो औरत के अलमारी में जरूर चाही रहेगी और विशेष विधि में ये पहनल जाला। हैंडलूम के परंपरागत डिजाइन शुभ मानल जाला और आज भी भारतीय महिला एकर पर पूरा विश्वास करेला, और कोनो भी खास मौका पर कितना भी पुराना हैंडलूम साड़ी पहनला वो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होवेला, वो कभी भी फैशन के पीछे नहीं छोड़ेला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: नमस्कार, शुक्रवार 7 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। साइकिलिंग में टू डे फ्रांस फार्म के छठे चरण में मॉशस की किम्बर्ली लोकोपियनो ने शानदार जीत दर्ज की है। ये ग्रां बुकल में उनकी दूसरी जीत है। कठिन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए रोमांचक स्प्रिंट में जीत हासिल की। विपक्ष नेता बनने के अगले दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राज्यसभा में जनता की आवाज बनेंगे। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने अपने प्राथमिक मुद्दे तय कर लिए हैं। ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। लुबुशों के तट पर 3 दिनों में ब्लेनविल्स बीक्ड वेल्स के एक नर, उसके बच्चे और फिर उसकी मां की लाशें मिली। विशेषज्ञ इसे इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना मान रहे हैं। पोटली के सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता बाजार के आसपास मौजूद सड़क विक्रेताओं के खिलाफ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अवैध प्रतिस्पर्धा उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। इस पर नगर पालिका ने पुलिस गश्त और नियंत्रण सख्त करने का फैसला किया है। और विदेश में अमेरिका के न्यू मेक्सिको में मेटा पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के मामले में $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। ये इस मामले में कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। पेशाब समाचार विस्तार से। साइकिलिंग में टू डे फ्रांस फार्म और हमारी देशवासी किम्बर्ली लोकोपियनो के नाम एक और जीत दर्ज हो गई है। उन्होंने कल 2026 के संस्करण के छठे चरण में जीत हासिल की, जो ग्रां बुकल में उनकी दूसरी जीत है। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद किम्बर्ली ने एक शानदार स्प्रिंट के अंत में जीत हासिल करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ताकतों का बखूबी इस्तेमाल किया। विकास बागेची, गीता सुनारान।
1: खुशी का ठिकाना नहीं है और इसकी वजह भी खास है।

0: वेब्स को, जिन्हें बड़े स्प्रिंट मुकाबले में लगभग अजेय माना जाता था। इस शानदार जीत के बाद उनका पहला संदेश मॉरिशस में मौजूद अपने सभी समर्थकों और खासकर मौके पर मौजूद प्रशंसकों के लिए था। अनुनो के नारों से माहौल गूंज उठा। मॉरिशस के समर्थकों ने किम्बर्ली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जोरदार जश्न मनाया। कल शाम छठे चरण की फिनिश लाइन पर ये यादगार दृश्य देखने को मिला।
1: Deline Maurice qui lance, ça y est, Kim Lecourt qui lance le sprint et Célia Géry qui est en position idéale. Attention à Puck Peeters, Puck Peeters qui fait l'extérieur.
2: Ah ouais,
1: la néerlandaise, Puck Peeters en première position.
2: Elle a pas les jambes, Géry.
1: Mais attention, Puck Peeters qui est toujours devant, Puck Peeters, Kim Lecourt. Cédric Carvalho et la victoire de Kim Lecourt ici à Tournon-sur-Rhône.
0: Ye uplabdhi Kimberley Lecourt Pienaar ke liye kisi bade karname se kam nahi. Tour de Flandre ke dauran कलाई में फ्रैक्चर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका ये सीजन शायद कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन लियेज बास्टोन लियेज 2025 की विजेता ने हार नहीं मानी और जीत हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। उनका कहना है कि किसी चरण में जीत हासिल करने का आनंद सामान्य क्लासिफिकेशन में अच्छा स्थान पाने से भी कहीं ज्यादा खास होता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम के शानदार सहयोग को भी दिया। ये प्रदर्शन उनके अब तक फीके रहे सीजन में नई चमक लेकर आया है। तीस साल की उम्र में किम्बर्ली लेकोर्ट पिनॉ ने टूर डी फ्रांस महिला वर्ग में अपने करियर की दूसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे विश्व साइकिलिंग की पहली खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं।
3: पोर्टली की ओर रुख करते हैं। सेंट्रल मार्केट के सब्जी विक्रेता अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार के आसपास स्ट्रीट विक्रेता मौजूद हैं। उनका मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा, जिसे वे अवैध मानते हैं, सीधे तौर पर उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। नगर पालिका द्वारा पुलिस गश्त और नियंत्रण को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। दासापाला सोमी गीता सुनारान।
0: ये तस्वीरें बुधवार की हैं। पोर्टलिस के सेंट्रल मार्केट के सब्जी वालों ने बाजार के आसपास सड़क किनारे कारोबार करने वाले फेरी वालों की मौजूदगी के खिलाफ विरोध किया था। उनका ये भी कहना है कि ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और इससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। वे कहते हैं कि फेरी वाले कानून के दायरे से बाहर कारोबार कर रहे हैं और खासकर 500 मीटर की निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। इस शुक्रवार को दिन के 12 बजे बाजार के आसपास की सड़कें पहले की तुलना में कम व्यस्त दिखाई दीं। कुछ फेरी वाले अभी भी मौजूद थे। हमारी कैमरा की टीम को देखते ही कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने स्थान खाली करने को कहा। लॉर्ड मेयर क्रिस्टेल पोंडो कहती हैं, लेकिन ये सवाल अब भी है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। नगर पालिका का कहना है कि फेरी वाले विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में पूरी तरह कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं।
4: Nous avons beaucoup d'états qui libre plus de 200. Le loyer à la Ben Victoria est 4 000 roupies mensuellement. À n'importe quel moment, nous sommes dans la municipalité, nous demandons une place, nous donnons une. Et aussi, il y a une place qui est aménagée à la gare du Nord. Et là aussi, la majorité de l'état est vide. C'est une place qui nous mettait, qui à la disposition, qui nous permet de faire payer les autres gains courants, les autres gains, les autres cartables.
0: अब ये देखना होगा कि क्या ये कदम कई वर्षों से व्यापारियों और फेरी वालों के बीच चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान

0: निकाल पाएंगे या नहीं।
1: विपक्ष नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज बनकर काम करेंगे। हालांकि उनका कार्यभार संभालना संसदीय अवकाश के दौरान हुआ है, फिर भी नए विपक्षी नेता ने पहले से ही कुछ प्राथमिक मुद्दों को तय कर लिया है।
2: अपने नए दायित्व की जिम्मेदारी संभालते ही चेतन बाबूलाल ने इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, ताकि वे सदन में जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठा
3: सकें। Travail de leader de l'opposition, les poupées, check and balances, le tout bonne décision qu'ils ont prend, le tout bonne mesure qu'ils ont peut prendre.
2: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से निर्वाचित चेतन बाबूलाल का कहना है कि वे पूरी विनम्रता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
3: Beaucoup de dossiers qui prioritaires. Quand on get par exemple coup de la vie même, coup de la vie vient bien sûr qui bonne mesure nous capable amener pour soulager la population. Quand nous get l'inflation, nous get des lots. Problème des lots, CIB, courant, électricité peut monter puis aller même. Donc, nous avons beaucoup de dossiers, nous avons l'éducation.
2: 48 वर्षीय फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सांसद इस पद को संभालने वाले 17वें नेता हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
3: En consultation, et nous organisons nous-mêmes dans l'opposition. Nous avons un grand leader de l'opposition et camarade pour nous-mêmes, si un des plus grands leaders de l'opposition, donc à son côté, vous pensez. Exo aide, exo guidance, vous pensez, vous pourrez faire mon travail, comment vous allez faire?
2: अपना पहला पीएनक्यू पूछने से पहले नए विपक्ष के नेता संसदीय छुट्टियों का उपयोग पूरी तैयारी करने और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में करेंगे।
1: ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जिसे विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रजाति के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना माना जा रहा है। लुबुशों के तट पर 3 दिनों के भीतर ब्लेनवेल्स बीक्ड वेल्स की 3 लाशें तट पर बहकर आईं। एक वयस्क नर, 1 साल के से कम उम्र का उसका बच्चा और फिर 2 दिन बाद उसकी माँ। इस परिवार की मौत की क्या वजह थी, चलिए जानते हैं अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में। विवरण अशिता रखू का है।
4: मंगलवार को पहली खबरें सामने आईं। एक वयस्क नर वेल यानी पिता और उसका बैलिनो बच्चा समुद्र तट पर लुबुशों में मृत पाए गए।
5: पापा ए पिची बालन, बेबी बालन, दी ट्रो विल्नेराब।
4: पिता और बच्चा वेल बहुत कमजोर होते हैं। यदि शॉक या अन्य खतरनाक जल जंतुओं से वे टकरा जाते हैं। वे घबरा गए थे और ये गहरे समुद्र में रहने वाले होते हैं, और यदि ये हमारे लगून में पहुंचे हैं तो 80 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर गहरा है, मतलब ये राह से भटक गए होंगे और बाहर नहीं निकल पाए थे। ये बहुत ही मिलनसार और सामाजिक स्वभाव वाले जानवर हैं। शायद माता वेल आसपास ही हैं, क्योंकि वह अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद गुरुवार को उसी इलाके में एक तीसरा शव भी मिला। विशेषज्ञों के अनुसार ये बहुत संभवतः वयस्क मादा वेल यानी माँ का शव है। उसका शरीर काफी सड़ गल चुका था, जिसे मौशिकुज में दफनाया गया है। पिता वेल और उसके बच्चे के शवों को लावानी नेचर पार्क की शव गृह में ले जाया गया। भावनाओं से परे ये खोज वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रिफिथ के संपर्क में आए वेल विशेषज्ञ पोलैंड के विशेषज्ञ वोजटेक बशा के अनुसार अब तक 550 ब्लेनविल बीक वाले वेल तट पर आकर फंसने के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी मामला पूरे परिवार से जुड़ा नहीं था, इसलिए ये दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है। विशेषज्ञ अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन जानवरों को किन परिस्थितियों में किनारे तक आना पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मौत का कारण क्या हो सकता है।
6: Peu probable que c'est une maladie. On aurait pu comprendre ça si c'était un seul.
4: यदि 3 ऐसे जानवर साथ मरे हैं, तो ये संभव नहीं है कि ये बीमारी से ग्रस्त हो। पर यदि 1 होता है, तो संभव है बीक वेल 1000 मीटर की गहराई में तैर

0: कर खाना ढूंढने के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि कुछ उसे डराता है तो वह जल्द ही खाता है और वह घबराहट में मर भी सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यही हुआ होगा। स्वाभाविक कारण हो सकता है कि शौक मछलियों ने इन्हें गहराई में डराया होगा। जो ध्यान देने योग्य है वह ये है कि इस तरह के व्हेल को कुकी कैथर शौक भी कहती है। वे आते हैं और केवल व्हेल को काट कर चले जाते हैं और इस प्रजाति के शौक हमेशा इस तरह के व्हेल मछलियों का शिकार करती हैं। अगर माँ व्हेल, पिता और बच्चा अपने आखिरी पलों में एक दूसरे से अलग हो गए थे तो हम ये कल्पना करना पसंद करेंगे कि अब वे फिर से एक साथ हैं और समुद्री जीवों के स्वर्ग में तैर रहे हैं।
1: वर्ष 2026-2027 के बजट में लुमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 साल की अवधि में 124 मिलियन रुपए प्रदान किए गए हैं। आगंतुकों के स्वागत के लिए त्रिशूनी में कई संरचनाओं के निर्माण के साथ इसका पहला चरण शुरू होने की योजना है। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होने वाले ये काम लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री माहिन गुंदिया और सभी संबंधित साझेदारों ने स्थल का दौरा किया। सिंचा मुत्तु, गीता सुनारान।
2: लोगों के स्वागत के लिए एक प्रशासनिक कार्यालय, एक कियोस्क, हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए एक दुकान और शौचालय। लुमोन पर्वत के नीचे स्थित थ्रुशेनी स्थल के विकास की परियोजना अब आकार ले रही है। इमारतों की वास्तुकला इस तरह तैयार की गई है कि वे प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह मेल खाएं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी पर्यावरण के अनुरूप होगी। लुमोन हेरिटेज ट्रस्ट फंड की अध्यक्षा जाना बाबली कहती हैं, हर महीने 6,000 से 7,000 लोग यहां आते हैं। यहां प्रवेश करने का मार्ग बहुत खराब हो गया है, इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। इन झोपड़ियों की भी मरम्मत की जाएगी। ये एक विश्व विरासत स्थल है और ये परियोजना यूनेस्को को सुपुर्द की जाएगी, ये देखने के लिए कि ये मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। यूनेस्को की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जो लगभग 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंजिया कहते हैं, सरकार ने यहाँ 124 मिलियन रुपए लगाए हैं 3 वर्षों के लिए, ताकि इस जगह को पूरी तरह से बेहतर किया जा सके। यूनेस्को की मांगों को पूरा करते हुए ऐसा किया जाएगा। सांसद गाविन जगन्नाथ कहते हैं, मुझे खुशी है, दक्षिणी इलाके के लिए ये एक अमूल्य स्थल है। इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी। दिसंबर 2027 से इसे फिर से खोलने की उम्मीद है। इस परियोजना में एक नए पार्किंग स्थल का निर्माण भी शामिल है। साथ ही इस जगह को व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी पूरी तरह सुलभ बनाया जाएगा।
1: एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। ड्रग्स तस्करी, विदेशी मुद्रा की कमी, आयात पर निर्भरता और फाइनेंस बिल चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। होशिबादे ने आगामी ग्राम चुनावों में अपनी पार्टी के भाग लेने की भी घोषणा की। सहाउनो अशिता रघु।
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के नेता ने नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल पर हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फाइनेंस बिल में कहा गया है कि यदि एक गाड़ी का बीमा 2 मिलियन रुपए से अधिक है तो इंश्योरर को एमओरे को इसके बारे में सूचित करना होगा। यही कदम बिजली उपभोग पर भी लागू है। यदि एक व्यक्ति 8,000 से 9,000 रुपए पार करता है, यानी वर्ष का लगभग 1,00,000 रुपए, सीबी को जांच के वास्ते एमओरे को सूचित करना होगा। सीडब्ल्यूए के लिए भी ये लागू होता है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें विदेशी मुद्रा की कमी, देश की आयात पर अत्यधिक निर्भरता और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या शामिल थी। रिफॉर्म पार्टी ने ये भी मांग की है कि वेरोनिक लुगोविन अपनी सांसद पद से इस्तीफा दें, जब तक कि गुलशन गोविन से जुड़े कथित ड्रग तस्करी मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी ने ये भी पुष्टि की है कि वह आगामी ग्राम परिषद चुनावों में हिस्सा लेगी।
1: न्यू मेक्सिको अमेरिका ने के एक न्यायाधीश ने मेटा को जनता को उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने के लिए $567 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। बाल सुरक्षा को लेकर कंपनी के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। थाईलैंड में एक किशोर लड़के द्वारा कथित तौर पर अपने दादा दादी और स्कूल के शिक्षकों को गोली मारने के बाद कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। विस्तार सुमेरा अकबर अली के साथ।

0: आयरलैंड में बैंकॉक के पास स्थित स्कूल में ही गोलियां चलाई गई हैं। 8 मौतों की पुष्टि की गई, जिनमें 5 अध्यापक शामिल रहे। अधिकारियों के मुताबिक 14 साल का संदिग्ध हमलावर भी जान से गया है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला पहले से अच्छी तरह योजित था और इसके साफ कदम और साफ लक्ष्य थे। एक छात्र ने बताया कि उसने एक अध्यापक को गोली लगते देखा, जबकि दूसरी छात्रा ने कहा कि वो और उसके दोस्त जान बचाने के लिए स्कूल की दीवार पार करके भाग गए। अधिकारियों ने लोगों से डेप्सिरिन स्कूल के पास वाले इलाके से दूर रहने की अपील की। ये इस साल थाईलैंड में दूसरे स्कूल में गोलीबारी की घटना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस हादसे के चलते नया फायर आर्म्स कंट्रोल लॉ लाने का वादा किया। प्रस्तावित कानून के तहत आम लोगों के बंदूक लेकर चलने पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालांकि उन्होंने अभी इस कानून के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नए नियम बंदूक की मालिकियत यानी गन ओनरशिप के नियमों को और सख्त बनाएंगे या नहीं।
1: और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल अशिता रघु के साथ।
2: आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है कि रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कल सुबह भी बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होती रहेगी, विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश होगी पूर्व और ऊंचाई वाले इलाकों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:54 और कल सुबह सूर्योदय 6:36 मिनट पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। राय रोड बिल विधेयक में 32 साल के 32 years old के जनाब अली अजहर मुईदीन, जो अजहर नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात पौने नौ बजे उनकी मां बीबी अमीना मुईदीन के घर रॉय रोड बेलवेडियर से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलवेडियर की अलहे बैत मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए बोबाल आलमाटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:45। रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिवियासेश में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंदुमती भवन, पैदाइशी नाम भी देसी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्मदेव भवन के घर रेलवे रोड सेंट मिशेल बेलेरिवियासेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड के श्री पुबाला सुंदरन अनासाला पातेया, जो बाला बिल पातेया नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कटरबोन से उठाकर पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रारोड और सिनाल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उषा जुगिया, पैदाइशी नाम इसेरहिया और जो नानी गातो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे वीरू जुगिया के घर रारोड और सिनाल से उठाकर बुआ मौसम की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। एस एस ओ रोड मोसलमो सैतौंद्रे में 66 साल के

36 years old के श्री सुरेश नंदलाल चुनी, जो कंट्रोलर TBS नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर SSO रोड मोसेलमा सेंट एंड्रे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: RM3 Radio.
1: नमस्कार, इस समय शाम के 6:23 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मनोरंजन पर। रेडियो मनोरंजन पर आपका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही है कि हर पल आपका बहुत मंगलमय रहे, हर पल आपका बहुत ही खुशगवार रहे, शांति आपके मन में रहे और आपका मन शांत भाव से हर कार्य को सफल बनाए। आज का दिन आप लोगों के मंगल आप लोगों के लिए मंगलमय रहा होगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी उम्मीद है। बस आगे के पल भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सफलता सुकून के साथ चले, ये हमारी प्रार्थना है भगवान से। शाम के 6:24 हुए हैं, लेकर आए हैं आपके लिए हम नई सोच प्रोग्राम।
2: नई सोच
1: कार्यक्रम में हम आप लोगों के लिए ऐसे कुछ गाने प्रस्तुत करेंगे जिन गानों को सुन के मन आपका बहुत ही धैर्य पा जाएगा, मन आपका बहुत ही हिम्मत पा जाएगा। कभी भी किसी भी कार्य को करते हुए आप अपने मन को मचलने मत दीजिए, अपने मन को शांत भाव से हर कार्य के बारे में सोचने पर आप उसको एंकरेज कीजिएगा, आप उसको प्रोत्साहित कीजिएगा। चलिए हाथ बढ़ाते हैं साथ मिलकर, और साथ मिलकर एक दूसरे के दर्द को हम बांटते हैं।

हर किसी के लिए एक सुबह ज़रूर आती है और इस सुबह को का स्वागत करना हमारे बस की बात है। इस सुबह का स्वागत कीजिएगा, अपनी मुट्ठी खोलकर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा एक ऐसा आसमां जिस आसमां में आपको हर खुशी नज़र आएगी।

चलिए इस जहां में जो चलना है तो हमें साथ साथ चलना होगा, हाथ से हाथ मिला के चलना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसी से तो हमारे इस जीवन में अपना

और अब चलिए गीत गाता जाता है जो उसके बारे में सुनते हैं, उसकी आवाज़, उसके दिल की बात सुनते हैं, जो गीत गाता चलता है सब

ये दिल को मेलोडियस बनाता जाता है और सबको खुशी बांटता जाता है। ऐसे ही आप भी चलिएगा खुशी खुशी औरों की ज़िंदगी में, खुशियाँ बांटने की, खुशियाँ डालने की, खुशियों से भरने की औरों की ज़िंदगी को आप अपना मकसद ज़रूर बनाइएगा।

के लिए हमें हिम्मत का सहारा लेना है और जीवन से हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर किसी को असफलता कहीं ना कहीं मिलती है। असफलता हमारे जीवन को ख़त्म करने के लिए नहीं आती, असफलता हमारे जीवन में आती है तो हमें और भी आगे बढ़ाने के लिए आती है, और भी हिम्मत से छलांग लगाने के लिए आती है। असफलता कभी अंतिम शरण नहीं होता, असफलता हमेशा आगे बढ़ने का बहाना होता है।

इस समय 6:50 हुए हैं और हमारा आपका साथ नई सोच कार्यक्रम में है। चलिए पैगाम की बात सुनते हैं। हर किसी के मन में एक पैगाम होता है। चलिए हम मनाड़ी जी के स्वर में सुनते हैं।

0: जो हम मान लेते हैं कि गुलशन में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, इसका सौंदर्य इन्हीं से होता है, तो क्यों हम नहीं मानेंगे कि गमों से भी और खुशियों से भी हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी ही होती है। इस ज़िंदगी को संवारना हो तो फूलों और कांटों से, गमों और खुशियों दोनों से हमें संवारना होगा। बस जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ इस गज़ल के साथ ही समाप्त होता है नई सोच कार्यक्रम। इस समय शाम के 7 बजे हैं। नई सोच कार्यक्रम के बाद लेकर आएंगे आप लोगों के लिए हम आपकी आवाज़, आपके दिलों की आवाज़, दिलों की आवाज़ शो।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज में जरूर अपने दिल की आवाज मिला लीजिएगा। आपके दिलों की आवाज के लिए ही बना है ये शो। और जो मन में हो कोई गाना सुनने की इच्छा, तो आप बेशक इस इच्छा को हमारे सामने रखिएगा। और इच्छा को हमारे सामने रखने के लिए ये मीडियम है 5250-6200। इस नंबर पर आप हमें मैसेजेस भेजिएगा 4028070। इस पर आप हमें कॉल कीजिएगा। आपकी पसंद के गाने, आपकी फरमाइशों वाले गाने आप तक पहुंचाने में हम भरपूर कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी। ये है दिलों की आवाज़, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप लोगों का हम दिल खोल कर स्वागत करते हैं। बस यही उम्मीद रखते हैं कि आपकी शाम बहुत प्यारी हो जाए इस शो के साथ। ये महफिल सजी है आपके लिए। इस महफिल में एक शमा आप भी जलाए रखिएगा। हमारी इस महफिल में हमसे फरमाइश, पहली फरमाइश करने वाले हैं सूरज शर्मा सजादा जी, त्रियोले से। त्रियोले से उन्होंने फिल्म आमने सामने के गाने की फरमाइश की है, और उनकी तरफ से ये गाना हम पेश करते हैं उनके बेटे निशाल के लिए। हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी बिसेसर फैमिली के लिए। तो चलिए आमने सामने का ये गाना हम अमित कुमार की आवाज़ में सुनें।

और चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। हम पेश करेंगे इस बार कल्याणी जी की तरफ से ये गाना जिसे हमने लिया है प्यार का साया मूवी से। इस गाने की फरमाइश करने वाली तो कल्याणी जी हैं, उन्होंने थियोरे से ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के लिए मांगा है और अपने पूरे परिवार के लिए और थैंक यू वेरी मच हमारी पूरी टीम के लिए जो मांगा है आपने।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: मनोरंजन का ये सिलसिला आप लोगों के लिए है, ये है रेडियो मनोरंजन आप लोगों के लिए, ये है दिलों की आवाज़ आपके लिए, और आपके दिलों की आवाज़ जो गूंजती है इस शो में तो ही इस शो का मतलब बनता है। और याद दिला दें आपको नंबर हमारा 5250-6200, ये है मैसेजेस वाला नंबर, और 4028070 ये है कॉल्स वाला नंबर। तो चलिए ज़रा हम मैसेज पढ़ते हैं श्वेनल जी का। श्वेनल जी ने सभी शिव भक्तों को, सभी श्रावण मास मनाने वाले भक्तों को मंगल कामनाएं भेजी हैं श्रावण मास की, और उन्होंने सभी भक्तों को मंगल कामनाओं के साथ इस मास में बहुत प्रगति हो उनकी ये दुआ भेजी है, ये प्रार्थना भेजी है। और श्वेनल जी ने घूंघट मूवी का ये गाना शिव जी के नाम पर मांगा है अपने भैया श्रवण के लिए, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाव्या और तिलक फैमिली के लिए, और हमारी सखी हंसिनी के लिए।

तो मंगल कामनाएं सावन के इस महीने की, इस श्रावण मास की। इस समय 7:20 जो हुए हैं, आप लोगों के नाम जो गाना करेंगे वो भी सावन पे आधारित, पतझड़ पे भी आधारित, बस इन सभी मौसमों पे आधारित, और एक पांचवा मौसम जो प्रेम का होता है उस मौसम पर भी आधारित। लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना सिंदूर मूवी से लिया गया और गौ गुप की श्यामा रघुनंदन जी की पसंद है।

तो चलिए जरा हम जीत मूवी का ये गाना सुनते हैं। जहाँ पतझड़ हो, जहाँ सावन हो, बसंत हो, बहार हो, प्रेम का मौसम हो, वहाँ तो हमें रहना ही रहना है। पर धरती पे चाहे जहाँ भी रहेंगे, बस अपनों का नाम हम लेते रहेंगे। ये होगा जीत मूवी का गाना और ये गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में है। ये गाना हम पेश करते हैं पालमा के महेंद्र जी के लिए, उनकी दीदी मान के लिए।

चलिए जरा हम बढ़ बढ़ के चलते हैं और आपकी फरमाइशें पढ़ पढ़ के चलते हैं। आपकी फरमाइशों में शामिल है इस बार उदित नारायण की आवाज़ साया मूवी का गाना। और गेस किन किन हमारे श्रोता ने इस गाने की फरमाइश की है। इनफैक्ट इस गाने की फरमाइश हमसे अनीता जी ने की है एफ्लिकॉम फ्लैग से। उन्होंने ये गाना मांगा है अपने पति राज जी के लिए, बेटे आंतिश अंकुश, बहू अमनी शाह अमी अशीमा के लिए, पोती हिबेशा और आध्या के लिए, पोते अंश के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। आप एंजॉय कीजिए अपनी फरमाइश का गाना और एंटरटेन होते रहिए हमारे पूरे शो में।

गाने वाले जो महफिल में होते हैं हर महफिल का दिल जीत लेते हैं और दिल जीत कर न जाने उनके दिल में खुशी किस तरह से आ जाती है चाहे दिल उदास हो पर महफिल में खुशी बांट कर दिल बेशक खुश हो जाता है। दिल का क्या कसूर मूवी का ये गाना है और महफिल में गाने वाला ये दीवाना कुमार सानू की आवाज़ का सहारा ले रहा है और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं गिरीश अहलोल जी।

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम में गुलशन जी के दिल की आवाज पहुंची हम तक। गुलशन जी सभी टोलियों के लिए शिव भक्ति का ये गीत मांग रहे हैं, जिसे हमने लिया है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। सभी टोलियों के लिए जो कांधे पर कांवर लेकर, हृदय में भक्ति लेकर, शिव जी की शरण में गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं, उनके नाम किया है गुलशन जी ने ये गीत। और उन्होंने आदि कांवड़ी मनाने वाले भक्तों के लिए जो मुर्गा जी के शरण में अपनी भक्ति के फूल अर्पण कर रहे हैं, उनके लिए मांगा है उन्होंने ये गाना। और यही भक्ति गीत गुलशन जी ने मामा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए, आयशा जी के लिए, भोला परिवार के लिए और हमारी सखी हंसिनी जी के लिए भी मांगा है।

चलिए, हमारा ये सफ़र जो है ये बहुत प्यारा चल रहा है। हमारे श्रोताओं के कॉल्स भी आ रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। और कॉल किया है धनी जी ने। धनी जी का कहना है कि उनको सुनना है एक रिश्ता मूवी का बहुत ही लाजवाब गाना, उनको बहुत पसंद है ये गाना। कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज़ों का ये गीत है। बहुत शखी से धनी जी ने ये गाना यश और हेमेश के नाम किया है।

अगर आप भी अजय मूवी का गाना पसंद करते हैं, कुमार सानू की आवाज पसंद करते हैं, तो बेशक ये गाना हम आपके नाम भी करते हैं। कुमार सानू की आवाज है, अलका याग्निक की आवाज भी पसंद करते हैं, तो चलिए आपके नाम भी ये गाना करते हैं। अजय मूवी का ये गाना अपने जमाने के बहुत बहुत मशहूर गाना है, और इस गाने की फरमाइश मालिनी जी ने खुशनुआ से की है। दागन के लिए श्वेता, रवीश, प्रिशा और अलक्षा के लिए, और पूरे अपारू परिवार के लिए जो खुशनुआ के रहने वाले हैं।

चले चलते हैं हम किशोर कुमार की आवाज लेकर. किशोर कुमार की आवाज का ये गाना है फिल्म प्रेम नगर से लिया गया और प्रेम नगर मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए और खास तौर पर अनीता जी के लिए जो क्यूपीप की रहने वाली हैं. तो आप इस गाने को जरूर एंजॉय कीजिएगा. किशोर कुमार की आवाज है ये.

यही गाना चलिए हम पेश करते हैं ज्योति जी की तरफ से, शातो बिनागस की ज्योति जी की तरफ से, आशनी, रेखा, सुरेखा और पूरे मंथप फैमिली के लिए।

और इस समय 8:18 हुए हैं। ललिता जी ने अगले गाने की फरमाइश की है। ललिता जी ने ये गाना मांगा है, मिलन मूवी से लिया गया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। सावन का महीना है, इस सावन के महीने वाला गाना उन्होंने मांगा है। और ललिता कुशल जी ने थयोले से इस गाने की फरमाइश अपनी बहनों के लिए की है, सुदेवी, देवीना और ज्ञानी के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, आत्माराम जी के लिए, शुक्लाल मौसी के लिए। और ललिता जी के परिवार में दो बर्थडेज हैं, एक तो आरती, उनकी बेटी का जन्मदिन है, उनकी बेटी आरती को वे बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं। आरती जी को उनके पति विकास, बेटी विधि और बेटे विशेष की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। और ललिता जी अपने भाई सोन को भी जन्मदिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया सोन, कह रही है ललिता जी। और सोन जी को उनकी पत्नी बिंदु जी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से और पूरे

है गाना फिल्म आया सावन झूमके से लिया गया और जे के सुकन जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी माँ सोना के लिए, मौसी सेवंती और पोतपिमों के पूरे सुकन परिवार के लिए और उन सभी भक्तों के लिए जो गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं।

और माझी के साथ चलते हुए बढ़ते हैं हम संगम मूवी के गाने की ओर. संगम मूवी का ये गाना हम पाई की नंदी नंदा जी के नाम करते हैं. नंदा जी ने बड़े प्यार से बड़े दुलार के साथ इस गाने की फरमाइश की है.

बातें चुभ जाती हैं और कई बातें दिल में उतर जाती हैं, बस हमें बोलते समय इस बात का ख्याल रखना है कि चुभने वाली बातों को हम ज़ाया कर दें और मिठास से भरी बातों को हम अपने सामने वाले तक पहुंचा दें। यही मीठी बातें दिल में उतर जाती हैं और दिल में उतर कर इस जहां में बहुत बहुत सारा कल्याण कर जाती हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के सहारे जो गाना बना है किशोर कुमार की आवाज़ में, मजबूर मूवी से लिया गया ये गाना, हम इब्राहिम जी के नाम करते हैं, पोर्ट्रीज के इब्राहिम जी ने मजबूर मूवी का ये गाना सुनना चाहा है।

अपनी सदाओं को बड़ा मीठा बना लीजिए ताकि जो पीछा करे वो सदाएं मीठी मीठी कहलाएं। चलिए जरा हम रफीक मोहित जी की पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं। तायक से रफीक मोहित जी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज़, तेरे घर के सामने मूवी का ये गाना है।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
4: आपके दिलों की आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है, आपके दिलों की आवाज़ हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा चुके हैं और कई ऐसी आवाज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके पहुंचाने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसी फरमाइशें हैं जो हम और आगे बढ़ाएंगे उनको लेकर. तो चलिए ज़रा हम फिनिक्स की रेहाना जी की पसंद का गाना आप तक पहुँचाते हैं. ये होगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, अमर मूवी का गाना.

ये है जो पसंदों की महफिल, तो क्यों न हम अबू जी की पसंद भी आप तक पहुंचाएं। अबू जी ने वक्वा से सुनना चाहा है तलत महमूद की आवाज़, और ये गाना है बरादरी मूवी से लिया गया। बरादरी मूवी का ये गीत अबू जी सुनवाना चाह रहे हैं आफेज जी को, असलम, आयाज, जायान, जाहिरा, रईस, कलाचोती और अपने दोस्त अपी को, उनकी पत्नी को और रकीबा को।

चांद से पर्दा करने की ये गुजारिश है, कुमार सानू की ये आवाज़ है, आओ प्यार करें मूवी का ये गाना है, सिमरन जी की पसंद। तो ये लिखी सिमरन जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पूरे परिवार के लिए और विशेष तौर पर अपने भाई अरविंद के लिए।

तो आपने हमारा साथ दिलों की आवाज शो में दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका साथ रहा तो ये शो लाजवाब बना, आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों की फरमाइशें रही, और ये लम्हा जो हमने बिताया आपके साथ दिलों की आवाज में, ये लम्हा हम तो भूल नहीं सकते। आप लोगों के नाम हमने वो गाने किए जो आपने चुने थे, सो आप लोगों की बदौलत ये शो इतना लाजवाब रहा। 9:02 पर हमारा ये शो समाप्त हो जाएगा और लेकर आएंगे हम आपके लिए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। तो फिर मिलते हैं हम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में, और इतना याद रखिएगा, अगर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहेंगे तो हमारा नंबर बदला हुआ होगा, नंबर रहेगा 5251700 के लिए, 4028085 आपके कॉल्स के लिए। तो मिलते हैं हम भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तड़का तोहर स्वागत करते हैं जय भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर स्वागत करके हमार दिल कितना खुश हो जाता। चलो ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो लोग भाग लिया जा अपन पसंद के गाना सुने खातिर हमी के टेलीफोन करिया जा 5251700055 पर मैसेज भेजे जा और 4028085 पर हमी के कॉल करिया जा तो हर पसंद के गाना तो हम तो हर तक पहुँचेबे करब। चलो अभी सुनवाई ला जाता के वीरमती दीनू यानी कि मीरा दीनू जी के गावल गीत हमने ललिता जी के फरमाइश पर प्रस्तुत करे थे जा। ललिता जी अपन बहिन सुदेवी देवीना और ज्ञानी खातिर गाना मंगले हवन और अपन संगति आलू खातिर छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर मंगले हवन गाना सुखलाल मौसी खातिर अपन बेटी आरती के जन्मदिन के बधाई देवत हवन और उनकर पति विकास बेटी विधि और बेटा विशेष बगल से ये गाना उनका नाम करत हवन और जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन और ललिता जी अपन भाई सोन के भी जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन। सोन जी के पत्नी बिंदु उनका लयका लोग और पूरा राम रतन परिवार बगल से जन्मदिन के मंगल कामना।

लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावाली गाना चले हमने महादेव जी पर आधारित सुनी जा और महादेव जी के जटा में कितना पवित्र गंगा बहेलाई तो हमने जानी ला जा ये पवित्र गंगा ये पवित्रता के दर्शन करे खातिर कितना टोली लोग जाता वन जा गंगा तालाब की ओर तो गुलशन भोला जी अपन संगतिया लोग के नाम करत हवन लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावाली ये गीत प्रीतम अश्विन सुंदर सूरज खातिर और भिकारी परिवार खातिर प्लेंडी पापाई के प्रीतम अश्विन सुंदर सूरज अपन टोली में अभी गंगा तालाब पहुँचे ही होला हवन उनकर उनकरा बहुत शक्ति मिली उनकर भक्ति तो उनकर मन में है ये बा भक्ति लेके शक्ति लेके गुलशन जी बगल से बहुत बहुत मंगल कामना श्रावण मास के और ये हमने प्रस्तुत करते जाए गाना हमने के इस सब श्रोता लोग के उस सब भक्त लोग के जे जे अभी शिव जी के भक्ति में मगन हवन जा लगन लगाव हवन जा भक्ति में और शिव

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का और चली जा हमने सुनी जा दीपक जी के गावल गाना ई गाना दीपक सितर प्रसाद जी के गावल भोजपुरी पर तो चलो भोजपुरी पर ही गाना हमने नाम करी जा सुनीता जी के तरफ से सुनीता जी रहलन गोगो अपन बहिन विमाला खातिर मंगले हवन ई गाना कुंगुमा के उनकर बहिन विमाला खातिर और ये अपन बहिन अमृता खातिर तो चलो सुनी जा भोजपुरी के मिठास पर ही गाना गायक हवन दीपक सितर प्रसाद

गायत्री जी अभी रहलन हमने संगे टेलीफोन पर और मंगलन हमने से गाना अगला होला ये गाना चटनी होला है चटनी खाई के खुश रहलन गायत्री जी शायद तो चला गायत्री जी के पसीन के चटकार गाना हमने चला सुनवाइला जत हल के अभिदानंद बीजन जी के गावल और ये गाना कल्याण गायत्री जी मंगल हवन अपन बेटा अजय खातिर मामी कल्याणी मोहन खातिर मायबू के और लॉन्ग माउंटेन के बाबी शकुंतला खातिर नोवेल फ्रांस के अपन संगतिया गीता बाई खातिर मंगल हवन गायत्री जी गीत तो चला सुनी जाए गाना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़कवा लगिए गलमा त चल चटकार ले जाला जा। अभी तो मरमिट में गरम पानी चढ़ल बा और ये मरमिट के गरम पनिया में कौन सी दलिया न। अनीता जी चलो देखिए जा मोदालबे से। अनीता जी गरम मरमिट के गरम पनिया हो लगन गीतवा सुनि खोजत हवन। अनीता जी मंगल हवन गाना करुणा खातिर और अमृता खातिर और पूरा परिवार खातिर। तो चल संतोष महादेव जी के गावल ये गीत सुनी जा।

बिसोनी दीपा जी के गावरी गमठ वाला गाना, ये गमठ वाला गाना हमने बजाया था जहाँ अर्चना जी के पसंद पर अर्चना जी अभी तक गमठ में हवन गीत गवाई में हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी के गमटवा चला सुनी जा हमनी विद्या जी के पसीन पर, विद्या जी मंगले हुआ गाना सैंपल से, और विद्या जी गाना अपन पति आनंद जी के नाम कर ले हुआ, और अपन माता जी सुनीता के नाम, और गाना तो सुना था वजह रोशन सदा सिंह जी के गावा, रोशन सदा सिंह जी के आवाज सूरज नियन है वो का दिया का दिखावब जा, तो लोग के का बलब जा, तो लोग तो सुन के पहचान गल रही वजह रोशन सदा सिंह की आवाज़।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी गीत चलिए और सुना नो यंजी की आवाज़ ना गूंजी कहाँ से हुएला चला हमने साजिद जी क्या पसंद के गाना सुनी जा सुना नो यंजी की आवाज़ में साजिद जी रजिल से गाना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में अब चले संवाद लगाए ला जा। हमने अगला गाना संगी गिरीश रूपचंद जी की आवाज संगे और सुदेवी जी के फरमाइश संगे वाकवा से सुदेवी जी मंगले हवन ई गीत गिरीश रूपचंद जी के गावल प्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी नाम माला खातिर मालेका के राम रतन परिवार खातिर और ही हमने के सब सुने वाला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी।

सुनीता जी गाना सुने खोजत मोहन कौफ क्रोसे मीरा मोहन जी के गावल ई गाना लापेल पर जाना और ई गाना कितना दिल दहला देवेला। चलो सुनिए जा हमनी के पूर्वज लोग कितना पीड़ा से गुजरल हवन जा।

नीरज गुप्त मधु जी के गावल गाना, जय हो दुल्हा के जय हो दुल्हिन के गाना हमने रूमा जी के पसंद पर बजवाओ थे जा बेलवेदिया से रूमा जी गाना अपन पति आनंद अपन बेटी गुड़िया खातिर और ये अपन बेटा वंश खातिर मंगले हवन।

0: तनी संदी सेल्फी मा कितना मजा लगेला।
1: खाली दिसेल पीमा नहीं, दिसेल कलोरिया भी बाय कर में बहल गौरी जी के गावली गाना न्यू गोव के विष्णु जी खातिर चलावत हैं जा।

जी आवाज महेश विश्वजीत जी के सुना था वा। और महेश विश्वजीत जी के गावली गाना हमने बजाओ थे जा लाल माटी के वासु जी के फरमाइश पर। वासु जी मंगले हवनी गाना अपन संगत यालो खातिर विमल संजय दयानंद और विनेश खातिर सबको संगे मिल के अभी एक अच्छा समय बितावत हवन जा।

और अब चला मुकेश चेदी जी के गावाली गाना सुनी जा। बाप बोले बेटा तू पहन धोती कुर्ता, और बेटा बोले नहीं पिताजी हम पहना तरब बोलता। ये गाना हमने बजवा थे जब वृंदा जी के पसंद पर पिछली हफ्ते की, वृंदा जी मंगलावनी गाना पन दादा और दादी खातिर।

देखा था ना वृंदा जी हेर फेर हो गल बाप बोले बेटा हमनी थोड़ा घड़ी में सुनवाई ला जा ई भी तो बड़ा चौचक गाना बा मुकेश चेदी जी के गावल चला ई गाना के बाद उनकरे आवाज़ में यानी कि मुकेश चेदी जी के ही आवाज़ में तोहर पसीन के गाना चला जा हमनी

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चल सुने जाबरी कुथमनी अयोध्या के राज अभिमन्यु हरपाल जी के गावल महिन हरपाल जी गाना गई ले हवन सीता मांगे अयोध्या के राज और एकरा पसंद कर ले हवन राजन लक्ष्मण जी लाफलोगा से अपन पत्नी माला जी खातिर बजवाए खोजत हवन बेटी प्रगति खातिर प्रार्थना खातिर और बहिन मानती खातिर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर।

काबरे लजा सुना सुनरवा के बारे में सुनी जा दगा देवे होलाई सुनरवा हा विनोद सिवदा जी के काम वाली गाना हा और ये गाना हमने बजवाई लजा नजीरा जी खातिर दगोचा के नजीरा जी के नाम करते हैं जाए गाना

ये है गाना ज्ञान महिपत लाल जी के गावल और ये गाना हमने से मंगले हवन बेले ऐसे आत्माराम जी गाना मंगले हवन बहिन सुदेवी खातिर बहिन ललिता और बहिन छोटी खातिर और बेले के इस्तु परिवार खातिर

कुन दिन दाल खाके कुन दिल भाजी खाके चल देखी जा कैसे जीवन बिताओलन। यह गाना निर्मला फौदार जी के गावल। निर्मला फौदार जी गाना गाना गैले होन और ये गाना मंगले होवन महेन जी पालमा से दीदी मान खातिर और ये सब भोजपुरी प्रेमी लोग खातिर।

निर्मला फाउदर जी के गावली गाना रहलब चलब जय सुदिला जी के गावली गीत सुनी जा त्रियो लेके बिस्तुपवा में मलिनिया के पहिया में कितना जली जली फूल बा चलाई गाना हमने बजवाए ला जा उषा जी खतीर रहते खुश के उषा जी गाना सुनी खोजत हवन।

वी भाचिंता मनी के गावल इप्पो पूरी गाना सुनी जा गीत गवाई वाला पूरी गाना है चला ही गाना हमने विजय जी के नाम करे थे जा पोटली के पोटली पाई में रहे विजय जी और ही गाना मांगते वन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का के सवाल तोहरा मिलता ही तो हम दावे के साथ बोलब। अभी आगे बढ़ते जाम चंद्रदेव चुबोधन जी के गावली गाना संगे भक्ते रहेला आदमी और कैसे भक्ते भक्ते आदमी अपन जीवन में प्रगति करे के चाह रखेला। तो चला अपन प्रगति करे के चाह में अपन सुख अपन शांति ना भुलाइया, बस अपन शांति के बरकरार रखिया।

तो हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तड़का तो होलोगे लगाई ला जा अपने फरमाइश से ई कार्यक्रम के खड़ा कर ला जा एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात के 11 बजे में 3 मिनट बाकी बा एगो अंतिम गाना तो लोग के सुनवाओ अब जा सुनीता ननकू जी के गावल ई गाना संगे संगे गुनगुनाते रहिए 11 बजते ही सुनिए जा आज के हमने के कार्यक्रम सुनहरे पल और पुराना गीत के कार्यक्रम गिनीशा लिखे यहाँ तोर खातिर खूब जोड़ी जोड़ी गाना चुन के अनियन तो जरूर साथ है दिया जा आवत हला फिर मिलब जा काल सामदी के आपकी पसंद कार्यक्रम में 2:15 पर शुरू करब जा संगे संगे रहब जा और ये आपकी पसंद कार्यक्रम संगे प्रस्तुत करब जा तो आवत हला तक यानी कि आपकी पसंद तक नमस्कार शुभरात्रि।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रेडियो मॉरिशस के इस खास प्रोग्राम में सुनहरे पल में आप सभी का दिल से स्वागत है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन खूबसूरत लम्हों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे दुनिया हुआ करती थी। बिल्कुल, जो कभी हमारी दुनिया हुआ करती थी। आज हम उन्हीं यादों के पन्नों को फिर से पलटने वाले हैं। वो पुराने बॉलीवुड गीत, वो बचपन की शरारतें और अपनों के साथ बिताए हुए पल, सब कुछ फिर से ताज़ा होंगे। तो तैयार हो जाइए एक हसीन सफ़र के लिए, हमारा साथ देने के लिए सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। किसी गीत में पहली मोहब्बत छुपी होती है तो किसी में दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो आपको एक बार फिर उन हसीन यादों से मिला देंगे। तो बने रहे हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। किनिशा का साथ देने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कुछ भी नहीं।
1: वैसे आज की इस महफिल में हम बात करेंगे उन गीतों की जो वक्त के साथ पुराने तो हो जाते हैं लेकिन उनकी मिठास आज भी बरकरार है। शायद आज का कोई गीत आपको आपके स्कूल के दिन, कॉलेज की मस्ती या किसी खास इंसान की याद दिला दे, तो दिल खोल कर आप सफर का आनंद लीजिए और अपनी यादों में बस खोते चले जाइए।

वैसे पुराने बॉलीवुड गीतों का जादू ही कुछ और होता है। जैसे ही कोई पुराना नगमा बजता है, आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें घूमने लगती हैं। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही खूबसूरत एहसास। तो चाय की प्याली के साथ आप बैठ जाइए और चलिए वक्त की घड़ी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

तो दोस्तों रेडियो की जो दुनिया है ना, रेडियो की दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं और सुनहरे पल उन्हीं लम्हों का नाम है। यहाँ हर गीत एक कहानी सुनाता है, हर सुर एक याद को जिंदा करता है। तो आज की शाम, आज की रात पुराने बॉलीवुड के अनमोल गीतों के नाम हम कर देते हैं और खासकर आपके लिए आपके नाम भी हम जरूर डेडिकेट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सा नगमा।

Well, it's time for me to say goodbye. जी हाँ, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आज यूजुअल वादे के मुताबिक एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से शो में. तब तक के लिए गिनीशा को इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि और शब्बा खैर. अपना खेर.

0: 119 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

भाभी अब तुम ही समझौता कर दो, अगर जुड़वा बच्चे हो जाए तो।